एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आज बुधवार है,

क्षमा कीजिएगा, आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 24वीं तिथि। तदनुसार दिनांक 15 सितंबर वर्ष 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यही प्रारंभ होती है। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। सुबह के 6 बजे है। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉ जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगलमैन ने कहा कि यह घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज

0: गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का संयुक्त उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल करेंगे। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढाल के बार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है।
1: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच गरीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि पार्टी की जीत झूठ की गूंज पर सच्चाई की जीत का साक्ष्य है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र मजबूत, सक्रिय और समयबद्ध है। उन्होंने न्यायपालिका में लगातार सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में कल आयोजित 6वें राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान में मुख्य भाषण देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुधार को नियमित प्रक्रिया का होना चाहिए। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वादा कर पैसे वसूले थे। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह अमीर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज। तो श्रोताओं, अब आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम चिंतन, और विषय रहेगा नैतिकता।

नैतिकता मनुष्य का एक ऐसा गुण है जिससे हमारा व्यक्तित्व चमकदार बन जाता है। यूं तो कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं है, लेकिन ईमानदारी और नैतिक गुणों के सहारे हम साफ और सरल जीवन जी सकते हैं। यदि हम गहराई से देखें तो महसूस होगा कि ईमानदारी और नैतिकता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों एक समान ही दिखाई देते हैं। नैतिक गुण हमें भ्रष्ट होने से बचाते हैं। जब मनुष्य पर लालच हावी होता है तब नैतिक मूल्य उसे बाधा जैसे लगते हैं। वास्तव में लालची व्यक्ति अपने छोटे छोटे फायदों के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। जब बुराई हावी हो, क्रोध का उफान हो, तब नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है। रास्ते में पड़ी हुई कोई वस्तु या पैसा लौटाकर हम नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं। जो हमारा नहीं है उसे हम कैसे अपने पास रख सकते हैं? जब पड़ोसी भूखा हो और हम स्वादिष्ट व्यंजनों की दावत उड़ाएं, ये उचित नहीं। एक दूसरे का सम्मान करना, बड़ों को चरण स्पर्श या आदर देना, झूठ नहीं बोलना, भ्रष्ट आचरण और बुरी आदतों से

दूर रहना उच्च नैतिक आदर्श हैं। इनका अभ्यास समाज व परिवार में आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। बच्चों में संस्कार परिवार से ही आते हैं, इसलिए परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे का आदर व सम्मान करते हुए सदैव अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए, तभी परिवार के छोटे सदस्य ऊंचे नैतिक मूल्यों का पालन कर सकेंगे। इसके लिए माता पिता के साथ साथ विद्यालयों में भी नैतिक मूल्यों के पाठ नियमित पढ़ाने चाहिए।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यामेज चैनल है। लीजिए, प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

0: इस समूह गान के साथ ही भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह आमेर चैनल है। लीजिए, प्रस्तुत है रामचरितमानस गान। आज इसमें आप सुनेंगे कड़ी संख्या 182।
1: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग।

सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहउ मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजसु विधि हाथ। श्री रामचरित मानस का ये दोहा भारतीय जीवन दर्शन का मानो एक आधार स्तंभ है। राजा

दशरथ की अंत्येष्टि तथा दशगात्र विधान संपन्न हो जाने के पश्चात मुनि वशिष्ठ ने राजसभा में भरत को धीरज बंधाते हुए ये वचन कहे थे। राजा दशरथ के निधन पर सोच करने का औचित्य नहीं है। सोच उस राजा के बारे में करना चाहिए जो नीति निपुण नहीं होता और जिसे प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं होती।

सब प्रकार से बड़भागी थे, अतः उनके कारण विषाद व्यर्थ है। उन्होंने भरत को राज दिया है तो भरत को पिता के वचन को साकार करना चाहिए।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। ये प्रसंग यहीं पर संपन्न हुआ। सुबह के 6:40 हुए। लीजिए प्रस्तुत है आज की सभा में शेष रहे कार्यक्रमों एवं प्रसारणों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी ही देर में यानी ठीक 6:45 पर हमारे किसान श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम खेती नी बात। 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत। प्रातः 7:20 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम वातायन। प्रातः 7:30 पर पुनः 10 बजे और दोपहर 12 बजे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे समाचार प्रभात प्रातः 8 बजे। 8:15 पर प्रस्तुत होगा दिल के जज्बातों पर आधारित कार्यक्रम कुछ दिल से।

राजस्थानी लोक संगीत आप सुनेंगे प्रातः 8:45 पर। वहीं हिंदी में प्रादेशिक समाचारों को आप सुनेंगे प्रातः 9 बजे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।

प्रातः 9:10 पर और पुनः 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का समय रहेगा प्रातः 9:30। प्रातः 11:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत।

हमारी सायंकालीन सभा में शाम 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नारी लोक। सायंकालीन सभा में विविध भारती के कार्यक्रमों को आप सुन सकेंगे शाम 5:30 पर और पुनः रात्रि 9:00। प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया आप सुनेंगे शाम 6:15 पर।

हिंदी में प्रादेशिक समाचार और कार्यक्रम जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे शाम 6:30 पर आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। राजस्थानी में प्रादेशिक समाचारों को आप सुन सकेंगे शाम 6:45 पर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी का समय रहेगा शाम 7:00, जिसे आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।

रात्रि 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार संध्या। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। वहीं 11 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत।

राम राम रटत रहो जब तगढ़ में प्राण, कबहु नदी न दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम किसी को मार नहीं।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
4: कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत में आज आप सुन रहे हैं कमजी भाई व नाथू भाई द्वारा गाए कुछ लोक भजन।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत। ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। प्रातः के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है वातायन। वातायन के अंतर्गत आज आपको सुना रहे हैं वागड़ के तीर्थ मां त्रिपुरा सुंदरी के बारे में वार्ता। वार्ताकार हैं डॉक्टर राजेश जोशी।
1: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का ऐतिहासिक भगवती त्रिपुरा सुंदरी मंदिर भी उनमें से एक है। बांसवाड़ा से 20 किलोमीटर दूर तलवाड़ा के निकट उमराई गांव के पास वन्य क्षेत्र में स्थित यह देवी तीर्थ आज बांसवाड़ा जिले की पहचान बन चुका है। श्री त्रिपुरा सुंदरी का यह मंदिर कितना प्राचीन है, इस संबंध में कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, परंतु वर्तमान में मंदिर के उत्तरी भाग में सम्राट कनिष्क के समय का एक शिवलिंग होने की मान्यता है। अतः लोगों का विश्वास है कि यह स्थान कनिष्क के पूर्व काल से ही प्रतिष्ठित रहा होगा। कुछ विद्वान 3री शताब्दी के पूर्व से इसका अस्तित्व मानते हैं, क्योंकि पहले यहाँ गढ़पौली नामक ऐतिहासिक नगर था। गढ़पौली शब्द का एक अर्थ है दुर्गापुर। इस समय यहाँ उमराई नामक गांव है। शिलालेखों के अनुसार श्री त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का जीर्णोद्धार लगभग 900 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 1157 तदनुसार ईस्वी सन की 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में पाताभाई चांदाभाई नामक लुहार ने कराया था। देवी मंदिर के पास भागी खान नामक स्थान है, जहां किसी समय लोहे की खदान थी। स्थानीय लुहारों द्वारा लोहा निकालने की यह बात विक्रम संवत 1102 अर्थात 1045 ईस्वी के आसपास की है। जनश्रुति के अनुसार देवी प्रकोप से एक बार वह खदान धस गई और अनेक लोग उसमें दबकर मर गए। यह फटी हुई खदान आज भी मंदिर के पास दिखाई देती है। देवी प्रसन्नार्थ पाताभाई नामक लुहार ने वहां स्थित मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और एक तालाब बनवाया, जिसे आज पातेला कहा जाता है। वर्तमान मंदिर का जीर्णोद्धार सर्वप्रथम 12वीं शताब्दी में होने के कुछ उल्लेख मिलते हैं। 16वीं शताब्दी में पुनः इस देवालय का जीर्णोद्धार कराया गया। 1873 ईस्वी में मंदिर प्रतिष्ठा समारोह हुआ। 20वीं शताब्दी में पुनः लुहार समाज के सौजन्य से मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। शास्त्रों में त्रिपुरोपासना गोपनीय विद्या के रूप में वर्णित है, अतः स्थानीय देवी तीर्थ के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, परंतु बांसवाड़ा विधायक स्वर्गीय हरिदेव जोशी के राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के बाद यहां आते जाते रहने के कारण यह देवी

महान प्रकाश में आ गया। मंदिर को वर्तमान भव्य स्वरूप देने का कार्य 1977 ईस्वी में किया गया। इससे पूर्व यह देवी तीर्थ सामान्य झोपड़ी नुमा मंदिर के रूप में उमराई के बीहड़ वन्य प्रदेश में अवस्थित था, जिसके दीर्घकालिक संरक्षण में स्थानीय आदिवासी समाज की सहभागिता को भी विस्मृत नहीं किया जा सकता। वर्तमान मंदिर में मुख्य द्वार और उसका परिकर चांदी से निर्मित है। गर्भगृह में काले पत्थर पर परम्बा की अष्टादश भुजाओं वाली भव्य प्रतिमा प्रतिष्ठित है। सिंहवाहिनी राजराजेश्वरी त्रिपुरा की 18 भुजाओं में दिव्य आयुध हैं। भगवती की प्रतिमा के पृष्ठ भाग के प्रभा मंडल में 9 छोटी छोटी देवी मूर्तियां हैं, जो सायुध स्ववाहनों पर आसीन है। मध्य में षोडशी त्रिपुरा और चारों ओर 9 देवियों का यह प्रभा मंडल तंत्र शास्त्रीय दश महाविद्याओं से संबद्ध प्रतीत होता है। माँ के पृष्ठ भाग में 52 भैरवों और 64 योगिनियों की बहुत ही सुंदर मूर्तियां अंकित हैं। मूर्ति के नीचे पेड़ी पर श्री चक्र अंकित है, जो त्रिपुरोपासना के बाह्य तथा अंतः पूजा का प्रतीक यंत्र है। श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया त्रिपुरा सुंदरी की अनन्य उपासक हैं और उनके राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने के बाद इस शक्तिपीठ का कायाकल्प हुआ है। लौड़ी काशी बांसवाड़ा ही नहीं, संपूर्ण प्रदेश में शक्ति की भक्ति का एक नया दौर प्रारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री ने त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ को पर्यटन के मानचित्र पर उभारने के लिए सौंदर्यीकरण की पहल की है। वर्तमान में मंदिर परिसर के भौतिक उन्नयन का कार्य प्रगति पर है और निश्चित ही आने वाले दिनों में यह क्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष में शाक्तवाद का परचम लहराएगा। सार्वभौमिक माँ के रूप में श्री त्रिपुरा सुंदरी की उपासना से मनुष्य के अभ्युदय और निःश्रेयस का मार्ग प्रशस्त होगा। त्रिपुरा मतोपासना वैदिक काल के समकक्ष मानी जाती है और संपूर्ण भारत में इसका प्रसार था। आद्य जगत गुरु श्री शंकराचार्य की दिग्विजय के अनंतर संपूर्ण भारतवर्ष में शाक्तवाद की जो लहर उठी, उसी के परिणाम स्वरूप परम्बा शक्ति का महत्व बढ़ा। इसका स्पष्ट प्रमाण आद्य शंकराचार्य प्रवर्तित विभिन्न मठों में आज भी उसी परंपरा से त्रिपुर सुंदरी की श्री चक्र के रूप में उपासना होना है। आद्य शंकराचार्य के गुहा प्रवेश करने के बाद शक्ति उपासना का अधिक प्रसार हुआ और इसी क्रम में स्थानीय शक्तिपीठ भी त्रिपुरा सुंदरी के नाम से प्रख्यात हुआ। वैदिक पंथ का अनुसरण करने वाले ब्राह्मणों के कारण लघुकाशी कहे जाने वाले संपूर्ण वागड़ में यह देवी तीर्थ तरतई माता के नाम से जाना जाता है। वागड़ी के अनेक शब्द संस्कृत के मूल शब्दों के रूप में सुरक्षित हैं। तरतई शब्द त्रितई का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ है त्रित्व, तीन से युक्त। सर्वम त्रयम त्रयम यस्मात् तस्मात् तु त्रिपुरा मता, अर्थात जिसमें सब कुछ तीन तीन की संख्या में विद्यमान हो, यथा वेदत्रयी, गुणत्रय, देवत्रय, तीन कूट, इच्छा, ज्ञान, क्रिया, तीन शक्तियां, कालत्रय आदि, वे ही भगवती त्रिपुरा हैं। लघुस्तव के चतुर्थ पटल के एक श्लोक में कहा गया है, देवानां त्रितयं त्रयी हुत भुजां।

अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश यह तीन देव अग्नि सूर्य चंद्र ये तीनों तेज मंत्र उत्साह और प्रभुता अथवा महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती यह तीनों शक्तियां उदात्त अनुदात्त और स्वरित तीन स्वर स्वर्ग मृत्यु और पाताल तीन लोक जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीन पद सुवर्ण रजत आदि तीन पुष्कर ऋक यजु साम तीन वेद अउम तीन वर्ण धर्म अर्थ काम तीन पुरुषार्थ आदि जहाँ भी तीन रूपों का समन्वित रूप हो वह सभी त्रिपुरा के नाम से अन्वित हो जाता है। त्रिपुरा सुंदरी की उपासना योग का उच्चतम स्वरूप है। यह साधना विशुद्ध आध्यात्मिक प्रेम और गंभीर एवं रहस्यात्मक परज्ञान का मूर्तिमान रूप है। शाक्त ग्रंथों में श्री महा त्रिपुर सुंदरी को जगत का बीज और परम शिव का दर्पण कहा गया है। शास्त्रों में कहीं त्रिपुर सुंदरी तो कहीं त्रिपुरा सुंदरी शब्दों का प्रयोग हुआ है, परंतु तत्वतः इनमें कोई अंतर नहीं है। त्रिपुरा शब्द तीन पुरों की शासिका की आख्या है और षोडशी के रूप में सौंदर्य की पराकाष्ठा ही भगवती आद्याशक्ति को त्रिपुरा सुंदरी के नाम से

विभूषित करती है। त्रिपुरा शब्द की अनेक प्रकार से व्याख्या की गई है। शक्ति महिम्न स्तोत्र में त्रिपुरा का अर्थ बताते हुए कहा गया है, तिस्रिभ्यो मूर्तिभ्यः पुरातनत्वात् त्रिपुरा, अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों से भी पुरातन हो वही त्रिपुरा है। मन बुद्धि और चित्त रूपी तीन पुरों में निवास करने वाली शक्ति ही त्रिपुरा है। मनोबुद्धि तथा चित्तम पूरत्रयम उदाह्यतम। तात्विक दृष्टि से त्रिपुर अर्थात जागृत स्वप्न सुषुप्ति के स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर रूप तीन पुरों की जो साक्षिणी है वह निर्विशेषा नियति ही त्रिपुरा सुंदरी है। अनंत ब्रह्मांड जननी करुणामयी श्री राज राजेश्वरी ललिता त्रिपुरा सुंदरी की आराधना सभी के लिए कल्याणकारी है। मोक्ष और भोग यह दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, परंतु त्रिपुरा सुंदरी के उपासकों को यह दोनों सुलभ हैं। राज राजेश्वरी त्रिपुराम्बा सेवकों को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती हैं। लघुस्तव में कहा गया है, यत्

ललिता राजराजेश्वरी षोडशी श्री विद्यादि नाम भगवती त्रिपुरा सुंदरी के ही हैं। 51 शक्तिपीठों में त्रिपुर सुंदरी का आविर्भाव एक कथानक से जुड़ा हुआ है। दक्ष की यज्ञाग्नि में दग्धा सती के पार्थिव शरीर को उन्मत्त शिव यहां वहां आकाश में लेकर भटक रहे थे। विष्णु ने बाण चलाकर उसके अनेक टुकड़े कर दिए। सती के शरीरांग जिन स्थानों पर गिरे वे स्थान कालांतर में शक्तिपीठ हुए। सती का दायां पैर जहां गिरा वह स्थान त्रिपुरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह स्थान त्रिपुरा राज्य के राधा किशोरपुर गांव के पास पहाड़ी पर स्थित है। त्रिपुरा की आनुषंगिक पीठ के रूप में बांसवाड़ा का त्रिपुरा सुंदरी मंदिर चमत्कारिक प्रख्यात देवी तीर्थ है। त्रिपुरा रहस्य आदि ग्रंथों में त्रिपुर सुंदरी की कथा उल्लिखित है। तदनुसार एक बार भंडासुर के उत्पात से जब जगत संतृष्ट हो गया तब देवताओं के आग्रह पर भगवती आद्याशक्ति त्रिपुरा सुंदरी के रूप में प्रकट हुई। समस्त आसुरी शक्तियों के साथ युद्ध करने आए भंड दैत्य के साथ उनका भयंकर युद्ध हुआ और अंत में कामेश्वरास्त्र से भगवती त्रिपुरेश्वरी ने उसे भस्म कर दिया। भगवान शिव, दत्तात्रेय, परशुराम, दुर्वासा, गौड़पादाचार्य और श्री शंकराचार्य प्रभृति शाक्त उपासकों द्वारा प्रारंभ की गई त्रिपुरोपासना समस्त साधनाओं का मूलभूत है। यह साधना पूर्णतः वैज्ञानिक और अद्वैत दर्शन पर आधारित है। भगवती त्रिपुरा की उपासना श्री चक्र पर की जाती है। श्री चक्रम शिवयोर वपुः, यह श्री चक्र शिव और शक्ति दोनों का शरीर है। भौतिक यंत्रों के समान यह श्री चक्र भी अध्यात्म विज्ञान के विद्वानों की आध्यात्मिक खोज का फल है। त्रिपुरा सुंदरी की बाह्य पूजा श्री चक्र पर और अंत पूजा देह में ही श्री चक्र की भावना करते हुए कुंडलिनी के जागरण द्वारा शरीरस्थ 6 चक्रों का वेधन करने से संबद्ध है, जिससे अपार शांति, अपूर्व तेज और ओज का दिव्य समावेश होता है। अंत में जगत जननी माँ त्रिपुरा के श्री चरणों में अपराध क्षमापना के साथ यह निवेदन है। पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी।

0: कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वातायन। ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। प्रातः के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं। सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
3: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
4: पागल है, दिल दीवाना है।
5: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
6: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: श्रोताओ, हमारी अगली पेशकश लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में तुमसे अच्छा कौन है। इस फिल्म से हजरत जयपुरी हैं, गीतकार और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

लीजिए अब सुनिए मनहर उदास और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में गुलशन बावरा का लिखा और कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम है विश्वास।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी। हमने लिखा
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार।

सके। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में एक फूल दो माली फिल्म का गाना। प्रेम धवन है गीतकार और संगीतकार हैं रवि।

0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
1: मेरा साया साथ होगा।
2: अब आज का हमेरा ही प्यार के कार्यक्रम संपन्न हुआ, आगे दीजिए नमस्कार।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने कहा 2000 रुपए तक के यूपीआई भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ। भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की। और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई लेनदेन और रूपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेनदेन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले यूपीआई लेनदेन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेनदेन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। हालांकि ये शुल्क भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेनदेन पर लागू MDR से काफी कम होंगे। सरकार का यह स्पष्टीकरण भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में हालिया संशोधन के बाद यूपीआई लेनदेन पर शुल्क की आशंकाओं के बीच आया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल संयुक्त रूप से करेंगे।
3: पुरानी सामग्रियों और उत्पादों के पुनरुपयोग, रिसाइकिलिंग और पुनर्चक्रण के माध्यम से सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग, हरित ऊर्जा, रोजगार, वित्त और स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 4 प्लेनरी और 16 विषय आधारित सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में 125 से अधिक प्रदर्शक अपने व्यावहारिक सर्कुलर समाधानों का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद 17 और 18 सितम्बर को दुनिया भर में 80 विशेष एक्सीलेटर सत्र आयोजित किए जाएंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार

0: को 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के प्रयास में है। 5 दिन की ये वार्ता कल से शुरू हुई जो 18 सितंबर तक चलेगी। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, मूल स्थान के नियम तथा तकनीकी व्यापार बाधाओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
1: दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024-25 में 8 अरब 66 करोड़ डॉलर से घटकर वर्ष 2025-26 में 7 अरब 95 करोड़ डॉलर रह गया, जो 8.22% कम है। भारत से कनाडा को प्रमुख निर्यात में दवाइयां, लोहा और इस्पात, समुद्री खाद्य, सूती परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन शामिल हैं, जबकि कनाडा से भारत के प्रमुख आयात में दालें, मोती और अर्धकीमती पत्थर, कोयला, उर्वरक, कागज और कच्चा तेल शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेतकिन ने भारत और दक्षिण अमरीका के प्रमुख व्यापार समूह मरकोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को सुदृढ़, सक्रिय, समयबद्ध और बेहद कारगर बताया है। कल नई दिल्ली में राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान के 6वें संस्करण में उन्होंने ये बात कही।
4: Given a choice, a judicial officer,
5: अगर किसी न्यायिक अधिकारी को अंतरिम आदेश देने पर, मामले की सुनवाई टालने पर या अंतिम आदेश पारित करने पर शिकायत का सामना करना पड़े तो हर चरण में उसके खिलाफ शिकायत आ सकती है। यह गंभीर बहस का विषय है कि क्या ऐसी हर शिकायत को किसी सार्वजनिक मंच या वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए या फिर इसके लिए न्यायपालिका के भीतर ही एक मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था में पूरी निष्पक्षता और बिना किसी पूर्वाग्रह के शिकायतों पर विचार किया जाना चाहिए।
0: मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में निरंतर सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के अंतर्गत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों के बीच प्रेम और सद्भावना बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हृदय में प्रेम, सौहार्द और सद्भावना का विकास हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उनके

0: सुरक्षाकर्मी डिनो मौर्या, रोहन रॉय, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और पुलिस अधिकारियों सचिन वाजे तथा परमवीर सिंह सहित कई लोगों के नाम हैं। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वायदा कर पैसे वसूले थे। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर गहरा गया है। यमन के ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने दक्षिणी सऊदी अरब के एक सैन्य हवाई अड्डे पर कई मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। सऊदी गठबंधन के अनुसार इस हमले में 13 नागरिक घायल हुए हैं, जिसके बाद 4 पड़ोसी शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के पास देश के पश्चिमी तट पर अपनी स्थिति मजबूत करना शुरू कर दिया है। इस बढ़ते तनाव के कारण खाड़ी देशों ने ईरान के साथ होने वाली बातचीत को फिलहाल टाल दिया है। जानकारों का मानना है कि यदि ये टकराव और बढ़ा तो लाल सागर के रास्ते होने वाली दुनिया की तेल आपूर्ति बड़ी मुसीबत में पड़ सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं। हालांकि उन्होंने इसे लागू कराने से जुड़ी जानकारी नहीं दी। सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करने और रूस भी ऐसा ही करने पर सहमत हुआ है। हालांकि पोस्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन ऊर्जा प्रतिष्ठानों को इस समझौते के दायरे में रखा जाएगा या क्या दोनों पक्षों ने कोई शर्त रखी है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले डाक से मतदान प्रतिबंधित करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना को खारिज कर दिया है। न्यायाधीशों ने संघीय न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें डाक सेवा को डाक मतपत्रों से जुड़े नए नियमों को लागू करने से अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। न्यायाधीश सैमुअल एलिटो और क्लेरेंस थॉमस ने संक्षिप्त आदेश से असहमति जताई। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी दिनभर ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में बिजली चमकने की आशंका है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। तीसरा और अंतिम मुकाबला दिल्ली में ही बृहस्पतिवार को होगा। भारत ने पहले T20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। एशियाई ट्रैप चैंपियन निशानेबाज सबीरा हारिस के नेतृत्व में 20 सदस्यीय भारतीय दल आज से इटली में ISSF जूनियर विश्व कप शॉटगन में भाग लेगा। प्रतियोगिता का समापन 19 सितंबर को होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद प्रियंका। आज अधिकांश अखबारों ने रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट को प्रमुखता से दिया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन ने घटाई सैन्य तैनाती, देश फिर से चौकस। दैनिक भास्कर ने लिखा है, रिपोर्ट में तकनीकी बदलाव का रोड मैप बताया गया। ऑपरेशन सिंदूर से सबक, ड्रोन के 9 फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट शुरू होंगे। अमर उजाला ने भारत चीन में भरोसा और बढ़ा शीर्षक से चीन के विदेश मंत्री का बयान दिया है, सुधार और नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे रिश्ते। नवभारत टाइम्स की खबर है, साइबर ठगी के आरोप पर बैंक खाते से लेन देन पर 60 दिन तक लग सकेगी रोक। आरबीआई ला रहा नियम। हिन्दुस्तान के आर्थिक पन्ने की खबर है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने करोड़ों अंशधारकों को दी बड़ी राहत, पीएफ की सूचनाएं अब व्हाट्सएप पर मिलेंगी। ईपीएफओ पोर्टल या उमंग ऐप पर बार बार लॉग इन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को आसान हिन्दी में समझ सकेंगे लोग, कल हिन्दी दिवस पर

0: न्यायालय की नई पहल को दैनिक जागरण सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने लिखा है, जन सूचना सेवा में सरल हिंदी सारांश के साथ ऑडियो वीडियो बुलेटिन भी मिलेंगे। जनसत्ता की ये खबर ध्यान खींचती है, लंदन में टेम्स नदी के तट पर पहली बार हुई गंगा आरती, हजारों लोग शामिल हुए, वाराणसी के घाटों जैसी दिखी झलक।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार ने कहा 2000 रूपये तक के UPI भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ, भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की। और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM बैंड 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। सुबह के 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ दिल से।

कार्यक्रम कुछ दिल से को लेकर उपस्थित हूं आपके समक्ष आपकी रेडियो होस्ट अपूर्वा श्रीमाली। आज का यह खास दिन है हम सबके लिए बहुत ही भावुक, खूबसूरत और यादों से भरा दिन। आज श्रोताओं 15 सितंबर है यानी दूरदर्शन दिवस। सोचिए एक जमाना था जब शाम के 7:30 बजते ही मोहल्ले की सड़कें सुनी हो जाया करती थी। किसी एक घर के ड्राइंग रूम में या आंगन में पूरा मोहल्ला सिमट आता था। टीवी सेट के ऊपर लगा लकड़ी का शटर खुलता था, एंटीना को छत पर जाकर घुमाया जाता था और नीचे से आवाज आती थी, आ गया, थोड़ा और मोड़ो, पिक्चर अब साफ हो गई। और फिर स्क्रीन पर घूमता हुआ वह नीले रंग का गोल लोगो और साथ में गूंजती वो सुरीली धुन। जी हां, यही तो जादू था हमारे अपने दूरदर्शन का।

दोस्तों, आज जब हम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल स्क्रीन के जमाने में जी रहे हैं, जहां उंगलियों के एक स्वाइप पर हजारों विकल्प मौजूद हैं, तब दूरदर्शन की यादें हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। वह दौर सिर्फ टीवी देखने का नहीं था, वह दौर अपनों को साथ जोड़ने का था। जैसे रविवार की सुबह का नाश्ता करते समय सुबह 9 बजे रामायण और महाभारत के शुरू होते ही लगता था जैसे पूरे देश में कर्फ्यू लग गया हो। लोग चप्पलें उतार कर हाथ जोड़कर टीवी के आगे बैठते थे और श्रोताओं रंगोली चित्रहार, उनकी यादें आज भी ताजा होती हैं जब कोई दूरदर्शन का नाम लेता है।

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, सौ बात की एक बात है सही। सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: कार्यक्रम कुछ दिल से में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, हम बात कर रहे थे दूरदर्शन की। दूरदर्शन ने हमें सिर्फ मनोरंजन नहीं दिया, उसने हमें संस्कार दिए, संस्कृति सिखाई और पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, यह केवल एक गीत नहीं था, यह भारत की विविधता में एकता का राष्ट्रगान बन गया था। दूरदर्शन ने भारत के ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच के फासले को भी मिटाया। कृषि दर्शन के जरिए किसानों को नई तकनीक सिखाई तो वहीं शैक्षिक कार्यक्रमों से बच्चों की पढ़ाई में मदद की। दूरदर्शन ने समाज को जोड़ने का काम किया। वो भारत की जीत पर सबका एक साथ तालियां बजाना, वो अपनापन आज के पर्सनल स्क्रीन्स के जमाने में कहीं खो सा गया है।

श्रोताओं, आज तकनीक बदल गई है। स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन हुई, फिर एलसीडी, एलईडी और अब हमारे हाथों में सिमटकर स्मार्टफोन बन गई है। कंटेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो आत्मीयता, जो ठहराव और जो सामूहिक आनंद दूरदर्शन के दौर में था, वह शायद कहीं खो गया है। यह सिर्फ एक टीवी चैनल नहीं था श्रोताओं, यह हमारी बचपन की यादों का बहुत बड़ा हिस्सा था। उसने हमें इंतजार करना सिखाया, साथ बैठकर देखना और खुशियां बांटना सिखाया। आज इस दूरदर्शन दिवस के मौके पर हम सलाम करते हैं उन सभी कलाकारों को, टेक्नीशियनों को, समाचार वाचकों और निर्माताओं को

0: नादान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, सौ बात की एक बात है सही।
1: सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
2: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
3: आज दूरदर्शन दिवस पर मेरी आप सभी से इतनी सी गुजारिश है कि आज की शाम अपने घर के स्मार्ट टीवी के आगे पूरे परिवार को बैठाकर कोई पुरानी क्लासिक फिल्म या शो चलाइए। OTT के इस दौर में अपने अपने कमरों में मोबाइल देखने की बजाय एक बार फिर ड्राइंग रूम वाले प्यार को जिंदा कर दीजिए। उस जादुई डिब्बे यानी टीवी और हमारी आपकी बचपन की यादों के साथ ही दीजिए मुझे इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ दिल से। इसी नगमे के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। प्रातः के 8:45 हुए हैं। समय चला है कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत का। इस कार्यक्रम में आज आपको सुना रहे हैं सीमा मिश्रा व साथियों द्वारा गाए कुछ राजस्थानी गीत। पहला गीत सुनने से पूर्व आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत। इसी गीत के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 9 बजे हैं। आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा को प्रचंड जीत दिलाने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। भुवनेश्वर में आज प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन, निवेश, व्यापारिक सहयोग और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। जैसलमेर की पोकरण रेंज में हो रहे भारतीय वायुसेना के ड्रोनाथॉन 2026 में स्वदेशी ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन। और प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बरसात हुई, उदयपुर संभाग में आज कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा को प्रचंड जीत दिलाने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस जनादेश से साफ हो गया है कि जनता डबल इंजन सरकार की सुशासन और विकास नीतियों का पूरा समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य सरकार की हर वर्ग की सेवा और खुशहाली के इरादे को मजबूती मिलेगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनावों के तहत जयपुर, जोधपुर, कोटा और सुकेत के कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण पुनर्मतदान करवाने के निर्देश दिए हैं। आयोग को इन मतदान केंद्रों पर ईवीएम खराबी की शिकायतें मिली थी। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पुनर्मतदान करवाया जाएगा। 17 सितम्बर को वोटों की गिनती की जाएगी। इस बीच जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम तथा सुकेत नगर पालिका को छोड़कर शेष सभी 305 नगरीय निकायों के अध्यक्ष पद के चुनाव की लोक सूचना आज जारी हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सुबह 7 बजे अधिसूचना जारी की। इसके अनुसार अध्यक्ष पद के लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 21 और 22 सितंबर को चुनाव होगा। आज और कल अध्यक्ष पदों के लिए नामांकन भरे जाएंगे। स्थगित अध्यक्षीय चुनाव वाले 4 निकायों में वोटों की गिनती के बाद अध्यक्ष पद के चुनाव की लोक सूचना जारी कर दी जाएगी। निकाय चुनाव परिणामों पर और ब्यौरा दे रही हैं न्यूज डेस्क से हमारी सहयोगी सालेहा गाजी।
1: वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत 2 चरणों में हुए इन निकाय चुनावों के परिणामों के साथ ही प्रदेश में शहरी राजनीतिक तस्वीर साफ हो गई है। 309 में से 85 निकायों में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है। 46 निकायों में कांग्रेस बहुमत के साथ बोर्ड बनाने की स्थिति में है। 12 नगर परिषद में आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ है। बाकी 177 निकायों में किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला है, जिससे बोर्ड गठन में निर्दलियों और अन्य दलों के पार्षदों की अहम भूमिका रहेगी। इन नतीजों में कई प्रमुख राजनीतिक चेहरों को हार का सामना करना पड़ा। जयपुर में पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल और बीकानेर की पूर्व महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित चुनाव हार गईं।
0: भुवनेश्वर में आज प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में निवेश, व्यापारिक सहयोग और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए इस मीट का आयोजन किया गया है। उद्योग और वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल मीट की अगुवाई करेंगे। राजस्थान फाउंडेशन की आयुक्त मनीषा अरोड़ा भी वीआईपी और रीको के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीट में शामिल होंगी। इसके तहत विभिन्न प्रवासी राजस्थानियों के साथ संवाद, सहयोग और सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए चर्चा की जाएगी। इस दौरान ओडिशा के प्रमुख उद्योग समूह

0: उद्यमों और व्यावसायिक प्रतिनिधियों के साथ खनन, धातु प्रसंस्करण, हरित ऊर्जा, वस्त्र और परिधान तथा पर्यटन सहित अन्य क्षेत्रों में साझेदारी के लिए बैठकें होंगी। गौरतलब है कि प्रवासी राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि से जोड़ने के उद्देश्य से पिछले साल से 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाता है। इसी पहल के तहत राज्य सरकार विभिन्न शहरों में उद्योग जगत से सतत संपर्क और संवाद को प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में गौवंश को लंपी बीमारी से सुरक्षित रखने और इसकी रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य और जिला स्तर पर नियंत्रण कक्षों की स्थापना की गई है। वहीं गौवंश में संक्रमण की रोकथाम के लिए आवागमन को सीमित करने के उद्देश्य से पशु मेलों और हाटों के आयोजन पर रोक लगाई गई है। पशुपालन विभाग के प्रमुख शासन सचिव विकास सीताराम भाले ने कल जयपुर में पशुधन भवन में इस संबंध में समीक्षा बैठक की। उन्होंने प्रदेश में लंपी रोग की वर्तमान स्थिति, टीकाकरण और घर घर चलाए जा रहे सर्वेक्षण अभियानों की जानकारी ली। श्री भाले ने अधिकारियों को जिला स्तर पर रोजाना स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना की पहली ड्रोनोथॉन की जैसलमेर के पोखरण में कल से शुरुआत हुई। मानव रहित युद्धक क्षमताओं को नई धार देने के उद्देश्य से 3 दिन के इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वायुसेना के उप प्रमुख वाइस एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने इसका औपचारिक उद्घाटन किया। ड्रोनोथॉन 2026 का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को गति देना है। ड्रोनोथॉन पर और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: 16 सितंबर तक चलने वाले इस आयोजन के तहत पोखरण रेंज में युवा और काउंटर यूएएस तकनीकों का लाइव प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन में लाइटरी म्यूनिशन, लॉजिस्टिक ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम, एआई आधारित तकनीक, स्वायत्त नेविगेशन और उन्नत पैलोड जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को शामिल किया गया है। इन तकनीकों के जरिए निगरानी, लक्ष्य भेदन, लॉजिस्टिक और ड्रोन से उत्पन्न खतरों से निपटने की क्षमताओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। यह आयोजन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ कर रहा है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: उदयपुर संभाग और आसपास के जिलों में आज कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के बाकी हिस्सों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। बीकानेर संभाग के कुछ भागों में हल्की बारिश के आसार हैं। इस बीच कल राजधानी जयपुर सहित 15 शहरों में पानी बरसा। झालावाड़ के रायपुर में सबसे ज्यादा 3 इंच बारिश दर्ज की गई। उदयपुर के कोटड़ा में भी करीब 7 सेंटीमीटर बरसात हुई। इसके अलावा अजमेर, चित्तौड़गढ़, पाली, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, जालौर और राजसमंद में भी बरसात का दौर चला। बाड़मेर जिले के सेड़वा और धनौ इलाके में कल शाम कुछ देर तेज बारिश हुई। वहीं 40 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म रहा। हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज गर्मी और उमस का असर बना हुआ है।
2: मॉनसून के दौरान कम बारिश के चलते भीषण गर्मी और उमस का दौर बना हुआ है। खेतों में समय पर फसलों को पानी नहीं मिलने के कारण अधिकांश फसलें भी झुलस रही हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से फसलों में हुए खराबे की विशेष गिरदावरी के निर्देश दिए गए हैं। बरसात नहीं होने के कारण जिले में सिंचित करने वाली नहरों में भी पानी काफी कम है। ऐसे में सिंचाई विभाग की ओर से भी आगामी सीजन में किसानों से कम पानी की पैदावार वाली फसलों की बिजाई करने की अपील की गई है। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर।
0: भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी इलाके के मनसा गांव में बिजली गिरने से 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। इन्हें इलाज के लिए कोटड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। राजधानी जयपुर सहित विभिन्न स्थानों पर आज गणेश चतुर्थी के उपलक्ष में शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। जयपुर में मोतीडूंगरी गणेश मंदिर से गाजे बाजे और लवाजमे के साथ ये शोभा यात्रा निकलेगी, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए गढ़ गणेश मंदिर पहुंचेगी। यातायात पुलिस की ओर से शोभा यात्रा को देखते हुए विशेष ट्रैफिक व्यवस्था और बदलाव प्लान जारी किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी, विवादित लेन देन और मनी म्यूल खातों से निपटने के लिए नया ड्राफ्ट जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तैयार किए गए इस मसौदे के तहत साइबर ठगी की जांच के नाम पर पूरे खाते को अनिश्चितकाल के लिए फ्रीज करने के बजाय संदिग्ध राशि को ही

0: रोका जाएगा। बैंकों की ओर से लगाया गया ये अस्थायी डेबिट होल्ड अधिकतम 60 दिनों के लिए वैध होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा को प्रचंड जीत दिलाने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया है। भुवनेश्वर में आज प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन, निवेश, व्यापारिक सहयोग और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। जैसलमेर की पोकरण रेंज में हो रहे भारतीय वायुसेना के ड्रोनाथन 2026 में स्वदेशी ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन। और प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बरसात हुई। उदयपुर संभाग में आज कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 9:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं चंदन दास द्वारा गाई कुछ गजलें।

0: सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

आप सुन रहे थे गजल गायक चंदन दास की गाई कुछ गजलें, कार्यक्रम सुगम संगीत में। इसी नगमे के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 9:30 हुए हैं। लीजिए

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। आप सबका उमंग कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आइए हमेशा की तरह पहले सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। लिखा है, किसी का भी उदय अचानक नहीं होता, उसमें समय, धैर्य और तपस्या की जरूरत होती है। धन्यवाद आप दोनों का। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। छत्तीसगढ़ सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुली चंद साहू, सतीबाई साहू और सत्यम साहू जी ने लिखा है, प्रिय उद्घोषक जी मन से नमस्कार, आप दोनों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और ज्ञानवर्धक बात बताई। आपका संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद। करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर। छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू ने लिखा है, उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से हमें भरपूर मनोरंजन तो होता ही है और इससे हमें सीख व प्रेरणा भी मिलती है। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए पूरी टीम को हार्दिक बधाई और धन्यवाद। आपका भी संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में अब आप सबका स्वागत है। इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी कुछ घटनाएं और कुछ लोक कथाएं। ये लोक कथाएं कुछ ऐसी हैं जिन्हें सुनकर यदि आप कभी किसी पेड़ के पास से गुजरे तो आप उसे सिर्फ एक पेड़ नहीं समझेंगे, आपके देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। आपने अक्सर उत्तराखंड के चिपकू आंदोलन और उससे जुड़ी गौरा देवी के बारे में जरूर सुना होगा। इस पर हमारा कार्यक्रम भी है, लेकिन आज हम बात करेंगे चिपकू आंदोलन मूल रूप से कब शुरू हुआ। आज की कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव खेजड़ली की और एक ऐसी महिला की जिसने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया। कहानी लगभग 300 साल पुरानी है। सन 1730 की बात है। राजस्थान की गर्म और रेगिस्तानी धरती, चारों ओर रेत और उस धरती पर जीवन का सहारा बने हुए थे खेजड़ी के पेड़। एक दिन गांव में कुछ लोग पहुंचे, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां थीं। उन्हें वहां के राजा अभय सिंह के द्वारा पेड़ों को काटने का आदेश मिला था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। गांव की एक महिला उनके सामने आ खड़ी हुई। उसका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। उन्होंने पेड़ को अपनी बाहों में भर लिया और पेड़ काटने वालों से कहा, पेड़ को काटना है तो पहले मुझे काटना होगा। जरा सोचिए श्रोताओ, क्या दृश्य रहा होगा। सामने कुल्हाड़ी लिए लोग और दूसरी ओर एक निहत्थी महिला। पेड़ काटने वालों ने उसे धमकाया, लेकिन अमृता देवी पीछे नहीं हटी। उनकी तीन बेटियां भी अपनी माँ के साथ खड़ी हो गईं और फिर जो हुआ वो भारतीय पर्यावरण इतिहास की अमर घटना बन गया। अमृता देवी का दृढ़ संकल्प देखकर गांव के लोग भी आने लगे और एक एक करके पेड़ों से चिपकने लगे। किसी ने कहा, ये पेड़ हमारे पशुओं का चारा है। किसी ने कहा, ये हमारे जीवन का सहारा है। और किसी ने शायद ये महसूस किया कि पेड़ कटेंगे तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी कट जाएगा। श्रोताओ, इसके बाद शुरू हुआ क्रूर संहार। इस बेहद दुखद आंदोलन में 363 बिश्नोई लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। जब ये समाचार महाराजा तक पहुंचा तो वे सन्न रह गए और शोक में डूब गए। अंततः खेजड़ली क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई। साथियों, आज से लगभग 300 साल पहले, जब पर्यावरण संरक्षण जैसे शब्द आम बातचीत का हिस्सा भी नहीं थे, तब इन लोगों ने प्रकृति के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। हम आज कहते हैं पेड़ बचाओ, पानी बचाओ। सोशल मीडिया पर, अखबारों में ये संदेश भरे पड़े हैं। बड़ी बड़ी कार्यशालाएं होती हैं, उपदेश होते हैं जिसमें लोग कहते हैं पर्यावरण बचाओ, लेकिन अमृता देवी ने केवल कहा ही नहीं था, उन्होंने करके दिखाया।

आया था। अंग्रेजी की एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, यानी हमारे शब्दों से ज्यादा हमारी खामोशी में किए गए कार्य बोलते हैं। तो श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम के द्वारा आज हम विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि अगली बार जब आप किसी पेड़ की छाया में बैठें, उसके फल खाएं, उसकी ठंडी हवा को महसूस करें, तो एक पल के लिए राजस्थान की खेजड़ली गांव की उस महिला अमृता देवी बिश्नोई को जरूर याद कीजिए।

0: छोटा सा संकल्प क्यों न लें। एक पेड़ को केवल लगाएंगे नहीं, उसे बड़ा भी करेंगे और उसे बचाएंगे भी। एक नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी तर्ज पर आज हम उमंग कार्यक्रम की ओर से एक नया नारा देना चाहेंगे, पेड़ लगाओ पेड़ बढ़ाओ पेड़ बचाओ। और शायद ही यही चिपको आंदोलन की मूल माता अमृता देवी बिश्नोई को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अमृता देवी की कहानी पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में पेड़ बचाने के लिए अपना जीवन देने का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। बता दें, देश ने उनके अतुल्य बलिदान को नहीं भुलाया। आज भारत सरकार का अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, विशेषकर वन और वन्य जीवन संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी प्रस्तुति जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा फेसबुक एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है द क्रो। कक्षा 2 की अंग्रेजी के पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में संदेश दिया गया है कि हम अपने मूल स्वरूप में ही अच्छे हैं, किसी और से हमें अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए।
1: हेलो चिल्ड्रन।
2: हेलो मैम।
3: हेलो मैम।
1: हेलो हेलो, हाउ आर यू ऑल?
2: वी आर फाइन मैम।
3: आई एम फाइन मैम, हाउ आर यू मैम?
1: आई एम गुड, थैंक यू सो मच वान्या। ऑल राइट, सो चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग विथ यू। आर यू रेडी?
2: यस मैम।
1: ऑल राइट, you all know that pets are special members of our family, isn't it?
2: Yes, pets are so lovely.
1: Right, Soham.
4: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
1: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
4: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
1: Wow, that's good. And what about you, Navya?
5: Ma'am, my dog shakes its tail at me.
1: Oh, that's lovely. You have a very nice dog. I'm very happy that you love pets. All right. What about you, Lavish?
6: Ma'am, when I come home, my cat jumps and sits on my lap.
1: Oh, that's so exciting, isn't it?
2: Yes, ma'am.
1: All right. So, we spoke about our animals. What about birds? Do you like birds?
2: Yes, ma'am.
1: Can you name some birds?
3: Sparrow.
1: Okay, Vanya. Good. That's a beautiful small bird. Okay, Soham, you tell.
7: Peacock. It dances so well. It looks so pretty.
1: Yes, peacock is a colorful bird.
8: Ma'am, parrot.
1: Oh, yes. Parrot is a mimic bird. But, children, you have missed a bird. Do you know which bird is missing?
9: Any guesses?
1: Okay, I'll give you a clue. It calls... Absolutely right. Children, I remember a lovely story of a crow. Would you like to listen?
3: Will be fun.
1: So, I'll narrate the poem. Repeat after me. There once was a crow. He was black.
2: As you know.
1: How to be beautiful. He wanted to know. Colorful feathers. He wanted to grow. He found one peacock feather.

0: bird is parrot. Tell me the color. Right. Now, Soham will tell.
1: Green.
2: Yes, very green.
0: Right. Now, listen to the sound of parrot. The next bird is sparrow. Now, tell me the color. Who will tell?
2: Me.
0: Navya, Vanya, Soham.
3: Me.
0: Lavish.
4: I'm brown.
0: You're right. Sparrow has mostly three colors. Brown, white and
2: black.
0: Right.
5: Crow is also black, ma'am.
0: Yes, black is a beautiful color. And now listen to how crow sounds.
2: Ah!
0: Now you all know about the sounds of birds.
2: Great. Yes, ma'am.
0: So children, did you like the poem?
2: Yes, ma'am.
3: We loved it.
0: Okay. And the song and the little game of birds?
2: Yes, ma'am.
0: Then let's clap for each other. Yay!
6: और अब सुनते हैं कार्यक्रम सिस्टर निवेदिता। ये कार्यक्रम बंगाल की उल्लेखनीय शिक्षाविद भगिनी निवेदिता के जीवन और उनके योगदान के बारे में जानकारी देता है। कार्यक्रम बताता है कि किस प्रकार वे श्रीमती मार्गरेट नोबल के रूप में भारत में आईं और स्वामी विवेकानंद की शिष्या बनकर भगिनी निवेदिता कहलाईं।
7: उत्तरी कलकत्ता के बाग बाजार मोहल्ले में एक विद्यालय है। श्री रामकृष्ण शारदा मिशन सिस्टर निवेदिता गर्ल्स स्कूल। वैसे तो हमारे देश में दूसरे विद्यालयों की ही तरह ये भी एक साधारण सा विद्यालय है, लेकिन कुछ अर्थों में ये बड़ा असाधारण भी है। जानते हो क्यों? क्योंकि इस विद्यालय का प्रारंभ कुछ असाधारण लोगों के द्वारा बड़ी ही असाधारण परिस्थितियों में किया गया था। सुनना चाहते हो इसकी कहानी? तो सुनो।
8: बाबू, स्वामी विवेकानंद आए हैं, उनके साथ एक अंग्रेज मेम साहब भी है।
9: अरे तू उन्हें बाहर क्यों खड़ा करके आया? जरा मेरी शॉल तो दे लो।
8: अच्छा बाबू।
9: और सुन
8: जी,
9: मालकिन से कह देना कि तैयार रहेगी। हैं? भगिनी निवेदिता
8: हैं?
9: अरे वही अंग्रेज नेम साहब, शायद तेरी मालकिन और चुन्नी दीदी से मिलना चाहें।
8: क्या कह रहे हैं बाबू? मालकिन भला नेम साहब से कैसे बात करेंगी? वो क्या अंग्रेजी पढ़ी लिखी है?
9: इसकी चिंता मत कर माधो, ये मेम साहब दूसरी मेमो जैसी नहीं है।
8: अच्छा?
9: हाँ, बंगला बोल लेती है। बड़ी नेम धर्म वाली है, स्वामी विवेकानंद की खास शिष्या है।
8: अच्छा?
9: अपना घर बार छोड़कर 100 समुंदर पार से यहाँ आई है, हमारी लड़कियों को पढ़ाएंगी, यहाँ कलकत्ते में एक कन्या पाठशाला खोलेंगी।
8: वो तो ठीक है, पर बाबू।
9: अरे दुष्ट, स्वामी जी को दरवाजे पर खड़ा कर रखा है और यहाँ पर कर रहा है। जा, भाग यहाँ से। पहले मैं उन्हें भीतर ले आऊं। आइए आइए स्वामी जी, भीतर आइए। धन्य भाग है हमारे जो आपकी चरण रज से मेरा घर पवित्र हुआ।
10: अरे अरे, ये क्या करते हैं बोस बाबू? उठिए उठिए, माँ काली आपका कल्याण करे, इनसे मिलिए। यही वो आयरिश महिला है मिस मार्गरेट नोबल, जिनके विषय में मैंने आपसे चर्चा की थी।
9: कुटिया में आपका हार्दिक स्वागत है मिस नोबल।
11: धन्यवाद बोस बाबू, किंतु आप यदि मुझे स्वामी जी के दिए हुए नाम से पुकारे तो मुझे अधिक प्रसन्नता होगी।
9: यदि ऐसा है तब मैं आपको सिस्टर निवेदिता ही कहूँगा। आइए स्वामी जी, यहाँ बैठिए। आप भी बैठिए सिस्टर।
11: धन्यवाद।
10: अब बताइए बोस बाबू
9: जी,
10: क्या सलाह है? इधर बाग बाजार में स्कूल खोलने पर यहाँ

0: कि लोग अपनी लड़कियों को पढ़ने भेजेंगे या नहीं?
1: देखिए स्वामी जी, मैंने इस बारे में कई लोगों से बात की है। जो लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाना भी चाहते हैं, वो भी समाज के डर से उन्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है।
2: अरे, अगर कोई आदमी अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना चाहता है तो इसमें समाज का क्या नुकसान है?
1: नुकसान तो है सिस्टर, पुराने लोगों को डर है कि यदि लड़कियां पढ़ गईं तो फिर अपनी बुद्धि से सोच सकेंगी, अपना भला बुरा समझ सकेंगी, तब वे समाज से अपनी दुर्दशा का कारण पूछने लगेंगी, समाज की हर गलत सही और उल्टी सीधी प्रथा को मानने से इनकार करने लगेगी, तब फिर इस अंधे समाज का क्या होगा? समाज में तो हाहाकार मच जाएगा ना।
2: कैसी बातें कर रहे हैं आप बोस बाबू? जब परिवार की बहू बेटियां पढ़ी लिखी होंगी तो उससे तो पूरे समाज का लाभ होगा ना?
1: देखिए सिस्टर, ये बात मैं समझता हूँ, कुछ और पढ़े लिखे लोग भी समझते हैं, लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग न तो इस बात को समझता है और न मानने को तैयार है।
2: तब क्या ये स्कूल नहीं खुल सकेगा?
0: खुल सकेगा और खुलेगा। जिस कार्य के लिए तुमने इतना बड़ा त्याग किया है, माँ बहन भाई मित्र सहयोगी सब छोड़ छाड़ कर यहाँ आई हो, तुम्हारा वो कार्य अवश्य सिद्ध होगा, तुम्हारा विद्यालय अवश्य खुलेगा।
2: लेकिन वो शुभ दिन कब आएगा स्वामी जी?
0: उतावली न हो निवेदिता, हर काम का समय निश्चित होता है। हाँ तो बोस बाबू
1: जी,
0: यही बोसपाड़ा में अगर कोई छोटा मोटा मकान किराए पर मिल जाए तो उसमें निवेदिता अपना विद्यालय खोल सकेंगी।
1: मकान की व्यवस्था आप मेरे जिम्मे छोड़ दीजिए स्वामी जी, किंतु मेम साहब के पास घर का कामकाज करने के लिए कोई स्त्री तैयार होगी या नहीं, इस विषय
0: वो व्यवस्था हो गई है। माँ शारदा मणि के पास एक वृद्धा ब्राह्मणी आती थी, गोपाल की माँ, उससे माँ ने कहा तो वो निवेदिता का खाना बनाने और घर द्वार संभालने के लिए राजी हो गई।
1: चलिए, तब तो ये चिंता भी दूर हुई, अब केवल आपके लिए छात्राओं की व्यवस्था कर दी है। वैसे एक छात्रा तो मेरे घर में भी है, मेरी छोटी लड़की चुन्नी। मैं चाहता हूँ कि वो भी कुछ पढ़ना लिखना सीख ले, पर उसकी माँ किसी भी तरह तैयार नहीं होती, कहती है कि अगर चुन्नी पढ़ लिख गई तो फिर कोई उससे शादी नहीं करेगा।
2: अरे वाह, ये तो उल्टी बात हुई। आजकल के पढ़े लिखे युवक तो चाहते हैं कि उनकी पत्नी भी पढ़ी हो। बोस बाबू, आप मुझे एक बार मिसेस बोस से मिलवा सकते हैं? शायद मैं उन्हें चुन्नी को स्कूल भेजने के लिए राजी कर सकूं।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए मैं आपको भीतर ले चलता हूँ।
0: जाओ निवेदिता, शायद ये चुन्नी ही तुम्हारी पहली शिष्या हो।
3: इस तरह स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से और बलराम बोस जैसे कुछ और समझदार लोगों के सहयोग से 13 नवंबर 1898 को बाग बाजार के बोसपाड़ा लेन के एक छोटे से मकान में निवेदिता ने अपनी कन्या पाठशाला का शुभारंभ किया। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी मां शारदा मणि भी इस अवसर पर उपस्थित थी। निवेदिता अपनी थोड़ी सी छात्राओं को केवल लिखना पढ़ना ही नहीं अपितु चित्र बनाना, सीना पिरोना, हिसाब किताब रखना, सभी कुछ सिखाकर उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना चाहती थी। लेकिन परंपरागत शिक्षा के आदि लड़कियों के माता पिता शिक्षा के इस ढंग को बिल्कुल समझ नहीं पाए।
4: गुड मॉर्निंग गर्ल्स।
5: गुड मॉर्निंग दीदी।
2: ये सुभाषिनी आज फिर नहीं आई, क्या बात है, बीमार तो नहीं पड़ गई? चारू, तुम गई थी उसके घर?
6: हाँ दीदी, आज मैं उसके घर गई थी। उसकी माँ कहने लगी, इश, ये कैसा स्कूल है जी तुम्हारा, वहाँ हम लड़की को पढ़ने भेजते हैं या खिलौनों से खेलने?
2: फिर तुमने क्या कहा?
6: मैंने कहा कि हमारी निवेदिता दीदी खिलौनों से खेलने को कहती हैं, और फिर ना जाने कैसे खेल खेल में हमें बहुत सारी बातें सिखा देती हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता। इस पर वो बोली कि आज वो स्वयं आपसे मिलने आएंगी।
2: अच्छा ठीक है, तुम तो आज हमें अल्पना बनाकर दिखाने वाली थी ना चारू?
6: हाँ दीदी।
2: ये लो कागज और रंगीन पेंसिल, एक सुंदर सी अल्पना बनाकर उस पर अपना नाम लिखो। और चुन्नी, तुम मुझे कल वाली कविता सुनाओ तो।
7: क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?
6: दीदी, ये माशी माँ है, सुभाषिनी की माँ।
2: आइए आइए ना माँ।
6: वहाँ

0: द्वार पर ही क्यों खड़े हैं? भीतर आइए ना। जाते चारू, मासी माँ के लिए एक आसन तो ले आ।
1: अच्छा दीदी।
0: नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ।
2: नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप हमारे विद्यालय की पहली अतिथि हैं, हम आपको ऐसे खड़े खड़े थोड़ी लौट जाने देंगे।
1: दीदी ये लीजिए आसन।
2: बैठिए ना माँ। सुभाषिनी कहती है आप बहुत सुंदर गाती हैं, आप हमारी लड़कियों को चंडीदास के एक दो गीत जरूर सुना कर जाइएगा।
0: किंतु मेरे गाने से इनकी पढ़ाई का हर्ज नहीं होगा।
2: क्या कहती है माँ, आप गीता भागवत का पाठ करती हैं तो उनसे आपको कुछ नहीं मिलता।
0: क्यों नहीं मिलता? जो गीता का उपदेश समझ ले उसका तो जीवन ही सुधर जाए।
2: वही तो मैं भी कहती हूँ, शिक्षा का मतलब केवल अक्षर ज्ञान थोड़ी है, शिक्षा का मतलब है व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। आप जो घर में सुभाषिनी को अल्पना बनाना सिखाती हैं, उसे पहनने ओढ़ने का सलीका सिखाती हैं, वो भी तो शिक्षा ही है ना माँ?
0: हाँ वो तो है।
2: मेरी लड़कियाँ जीवन के हर पक्ष से, हर रंग से शिक्षा प्राप्त करती हैं। मैंने इसीलिए ये स्कूल खोला है माँ।
0: अच्छा आजकल सुभाषिनी नहीं आ रही, तबीयत तो ठीक है ना उसकी?
1: तबीयत तो ठीक है।
0: अच्छा मीन दीदी, अब मैं चलूंगी, कल से सुभाषिनी स्कूल आएगी और मैं देखूंगी आस पड़ोस की और लड़कियां भी राजी हो जाएं तो।
2: ये तो बड़ा उपकार होगा मुझ पर।
3: निवेदिता के सौम्य सहज और स्नेहपूर्ण व्यवहार से उनके विद्यालय की छात्राएं और आस पड़ोस की स्त्रियां बड़ी प्रभावित हुई।

उन्होंने कलकत्ता में स्त्री शिक्षा का जो नन्हा सा दीप जलाया था वो बढ़कर एक अखंड ज्योति में परिवर्तित हो गया। पर निवेदिता सिर्फ इतने से ही संतुष्ट नहीं थी, वे चाहती थी कि भारत मुक्त हो, अज्ञान से मुक्त हो, निर्धनता से मुक्त हो और विदेशी दासता से मुक्त हो। उनका घर बंगाल के कितने ही क्रांतिकारियों का आश्रय स्थल था और उस समय जब वंदे मातरम का उच्चारण भी अपराध समझा जाता था, निवेदिता के विद्यालय में प्रतिदिन सरस्वती वंदना के साथ वंदे मातरम का स्वर भी गूंजता था।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
2: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। FM बैंड 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 10 बजने को है। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

0: श्रोताओं नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। न्यूट्रिशन अर्थात पोषण, इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत, और इस बातचीत की दूसरी कड़ी लेकर हम हाजिर हैं। तो चलिए सुनते हैं। अदिति जी, ये जो कार्यक्रम है, हमारे बहुत सारे श्रोता सुनते हैं, ग्रामीण श्रोता भी सुनते हैं और शहरी श्रोता भी सुनते हैं। पोषण सप्ताह मनाया जाता है, तो पोषण सप्ताह आप अपने पैमाने पर भी मनाती होंगी, क्या कुछ शामिल करती हैं इसमें, किस तरह से लोगों को जोड़ पाती हैं?
1: पोषण सप्ताह सितंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है, 1 से 7 तारीख के बीच में, और ये कई सालों से चल रहा है
0: जी।
1: और इस सप्ताह में हम बहुत जनहित के लिए प्रचार करते हैं, बहुत ज्यादा रोड स्किट्स होते हैं ग्रामीण लेवल पे या आदिवासियों के लेवल पे, हम जाके वहाँ पे कैंप्स करते हैं या हेल्थ कैंप्स होते हैं सोसाइटीज में, ऐसे बहुत सारी चीजें चलती है। हर डाइटिशियन अपने तरीके से कुछ ना कुछ करती रहती है, वो चाहे अपने क्लिनिक में थोड़े से छोटे मोटे कैंप हो या कॉलेज में जाके सिखाना हो या कॉरपोरेट जॉब्स हैं जहां पे वहां पे जाके आहार के ऊपर बातें करनी हो, ताकि लोगों को आहार के बारे में और आहार के महत्व के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले और उनको ये पता चले कि कहाँ और किसके पास जाना है सही जानकारी मिलने के लिए। ये इस चीज के लिए हम ये पूरा सप्ताह इस्तेमाल करते हैं। ये हम कई सालों से कर रहे हैं, मगर पिछले कई सालों से पोषण माह ज्यादा करके मनाया जाता है, जो कि सितंबर का पूरा महीना होता है। इसका मतलब अब हम एक हफ्ता नहीं, पूरा महीने भर हम कुछ करते रहते हैं, जैसे कुछ छोटा मोटा कुछ भी हो जो जनरल पॉपुलेशन या लोगों के लिए फायदेमंद हो, ये हम ज्यादा इसके ऊपर ध्यान देते हैं।
0: जी बिल्कुल, भारत सरकार की ओर से एक मुहिम चलाई जाती है, बहुत सारी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, क्योंकि बहुत सारा वर्ग कुपोषण का शिकार है आज भी, तो उन्हें पोषक तत्व मिले और कुपोषण से रहित अपना देश हो जाए, ये एक मुहिम है। और अब हमें बताइए कि ये जो वर्किंग वुमेन होती हैं और जो हाउसवाइफ होती हैं, तो उनके लिए किस तरह के पोषक तत्व जरूरी हैं, किस तरह के न्यूट्रिशन उन्हें लेने चाहिए?
1: अगर हम पोषण के बारे में बात करें और औरतों के बारे में बात करें, तो मेरी हमेशा एक बड़ी शिकायत होती है कि औरतें जो होती हैं वो सबका करने में इतनी मशरूफ हो जाती है, वो हमेशा खुद को भूल जाती है। भले आप हाउसवाइफ हैं या भले आप जॉब करते हैं, दोनों तरीके से आप बहुत ज्यादा काम करते हो
0: जी जी,
1: कोई भी किसी से कम नहीं होता। बहुत बार हमें लगता है अरे ये कुछ नहीं कर रहे, ये तो हाउसवाइफ है, इनको घर संभालना। नहीं, अगर आप देखें कई बार हाउसवाइफ जो है पूरे दिन में इतना काम करते हैं, उनको अलग से वर्कआउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
0: जी बिल्कुल,
1: और दोनों के लिए अपना सही वक्त पे खाना, सही मात्रा में खाना बहुत जरूरी हो जाता है
0: जी।
1: अगर आप वर्किंग हैं तो अक्सर ये दिक्कत आती है कि सुबह उठे डब्बा बनाया तो अपना नाश्ता भूल गए, तो अपने नाश्ते का समय निकाल के फुर्सत से बैठ के नाश्ता करना जरूरी है। फिर उसके बाद आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा सही है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। और पूरे दिन में पानी के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वैसे ही घर की जो औरतें हैं, जो घर संभालती हैं, उनको ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या वो वक्त पे खा रही हैं, या क्योंकि वो किचन में काम कर रही है बहुत बार छोटा मोटा खाया जा रहा है और उसके वजह से भी तबीयत खराब।

0: हो रही है, क्योंकि हमें चखने की तो बहुत आदत होती है। चलो ये खा लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, इसमें दिक्कत हो जाती है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो औरतों को अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है, उनको ये देखना जरूरी है कि क्या उनको 7 से 8 घंटे नींद मिल रही है, 2 से 3 लीटर उनका पानी दिन का जा रहा है, क्या उनका शारीरिक काम हो रहा है, जैसे चलना हो गया, जिम जाना जरूरी नहीं है बट कोई तो एक्सरसाइज होनी चाहिए, वो भले 10-15 मिनट हो मगर खुद के लिए वक्त निकालना उतना जरूरी है। और उसके अलावा सही वक्त पे खाना और संतुलित खाना, जहाँ पे वो ध्यान दे कि उनके खाने में प्रोटीन हो, फाइबर हो, आयरन युक्त जैसे मोरिंगा हो गया या फिर हलीम या अलीव के बीज हो गए या फिर अनार हो गए, ये थोड़ी सी चीजें आपको खाने में होनी चाहिए, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद ठहरता है।
1: जी आपने कहा पानी पीना चाहिए प्रचुर मात्रा में, कुछ लोगों को देखा पानी एक साथ गट गट गट गट पी लेते हैं, एक बोतल या 2-3 गिलास पानी, तो ये तरीका सही है? थोड़ा तरीका भी बताइए किस तरह से पीना चाहिए पानी।
0: कुछ लोग बहुत जल्दी में पानी पी लेते हैं, कुछ लोग सुबह उठ के पानी पी लेते हैं और पूरा दिन पानी नहीं पीते, हमारा शरीर इस तरीके से काम नहीं करता।
1: जी सही,
0: उसको सही वक्त पे पानी की जरूरत होती है। आपको प्यास लग रहा है इसका मतलब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, मतलब पानी की मात्रा आपके शरीर में कम हो गई है, प्यास लगने तक राह ना देखिए।
1: बिल्कुल,
0: धीरे धीरे थोड़े थोड़े वक्त पे थोड़ी थोड़ी घूंटों में पानी पीजिए, और मैं हमेशा बोलती हूँ पानी हमेशा ग्लास में लेकर पीजिएगा।
1: जी जी,
0: ना बॉटल से, आप बैठकर पियो खड़े रहकर पियो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ग्लास में इसलिए ताकि आपको एक क्षण की क्यों ना हो थोड़ी सी एक पॉज मिल जाए, एक ठहराव मिल जाए, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है भागदौड़ की जिंदगी में, कि आप वो 1-2 सेकंड का काम है कि थोड़ा सा रुक लो, थोड़ा ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दो, आप किस तरीके से पूरे दिन में सांसें अंदर बाहर कर रहे हैं, थोड़ा सा ठहराव आने दो, पानी पी लीजिए और फिर अपने काम पे आगे बढ़ जाइए। कहीं अगर हम देखें तो अगर हम 2-3 लीटर की बात करें पूरे दिन में, तो आपको 1 गिलास 1 घंटे में धीरे धीरे करके पी लेना चाहिए, धीरे धीरे, ये जरूरी है। गर्म पानी पिए, ठंडा पानी पिए, वो आपके ऊपर है, आप बैठकर पियो खड़े रहकर पियो वो आपके ऊपर है, मगर धीरे धीरे पीना बहुत जरूरी है।
1: जी बहुत भ्रांति थी, बहुत बड़ी आपने दूर की। एक गाना सुनते हैं यहाँ पर।
0: जी।

0: और अब हमारे श्रोताओं को बताइए कि आज एक बहुत बड़ी समस्या और है, डायबिटीज के मरीज बढ़ रहे हैं और थायराइड की समस्या ज्यादातर हो रही है, तो क्या आहार के जरिए, सही न्यूट्रिशन के जरिए क्या इस पर नियंत्रण किया जा सकता है?
1: अगर हम डायबिटीज की बात करें तो अगर आपके फैमिली में या आपके परिवार में माता पिता को, चाचा चाची को, जो इमीडिएट फैमिली होती है, तुरंत आपके माता पिता, भाई बहन, किसी को भी डायबिटीज है, आपको डायबिटीज होने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको ये जानकारी है तो आपको आपके आहार या पोषण का ध्यान पहले से रखना शुरू कर देना चाहिए। आपके खाने में क्या होना चाहिए ये आप समझ गए तो आप अपने ब्लड शुगर को आराम से मैनेज कर पाओगे, आपको डायबिटीज के लेवल पे आप पहुंचोगे नहीं। अगर आप प्री डायबिटीज के लेवल पे किसी वजह से पहुंच गए, सही आहार से आप उसको रिवर्स कर सकते हो। अगर आपका लेवल डायबिटीज में चला गया और आपको डॉक्टर ने डायग्नोस कर लिया कि आपको डायबिटीज है या आपको शक्कर की बीमारी लग गई है, तो उस वक्त के बाद से आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब वो चला जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। उस लेवल के बाद से आप बस वो शक्कर की मात्रा को कंट्रोल में रख सकते हैं। तब भी आपको आहार की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो टाइप का आपको डायबिटीज है, भले वो जेस्टेशनल डायबिटीज जो कि प्रेगनेंसी में होता है, टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, उसके हिसाब से और आपको कौन सी दवाई दी जा रही है और आपका करंट ब्लड शुगर कितना है, उस हिसाब से आहार को डिजाइन किया जाता है, ताकि आपका जल्द से जल्द शुगर कंट्रोल में आए, आपको दवाइयां कम लेनी पड़े, या अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो वो अच्छे से आपके ऊपर काम करे कम से कम डोज में। तो आहार इतनी आपकी हेल्प कर सकता है कि आपका 16-15 ऐसा HbA1c है तो वो 7-6 पे भी लेकर आ सकते हैं 3-4 महीने में।
0: जी बिल्कुल।
1: बट लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट दवाई ले लेंगे मगर खाना नहीं छोड़ेंगे और यहाँ पे दिक्कत आती है। बिना खाने को ठीक किए आपकी दवाई काम नहीं करने वाली है या कम काम करेगी।
0: बिल्कुल सही बात है, मतलब कि हमारे जीवन में सही और संतुलित आहार का बहुत महत्व है।
1: बहुत महत्व है।
0: अदिति जी, हमें बताइए कि सप्लीमेंट की कितनी जरूरत होती है पोषक तत्वों के साथ साथ? कई बार लोग खाना पीना तो ठीक ठाक रखते हैं, उसके बावजूद उन्हें विटामिन की कमी होती है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो सप्लीमेंट किस तरह से लेना चाहिए और कितना इसका महत्व है और कितनी हानि है?
1: सप्लीमेंट कुछ लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, कुछ लोगों के लिए वो जरूरी नहीं है। अगर आप संतुलित आहार ले रहे हैं, आपका रहन सहन सही है, नींद ठीक है, पानी ठीक है, आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं है, तो अक्सर आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। मगर अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं या आपके रिपोर्ट्स में आ गया कि आपको कोई विटामिन या मिनरल की कमी है, तो कभी कभार आपको वो लेने पड़ते हैं।
0: जी,
1: जो भी आप सप्लीमेंट ले वो हमेशा डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह से ले, और डाइटिशियन आपको दवाई नहीं दे सकते हैं, डाइटिशियन आपको विटामिन मिनरल के बारे में जरूर बता सकते हैं, मगर ये विटामिन और मिनरल भी एक समय के लिए लेना चाहिए, एक उसका विशिष्ट रूप होता है जिस तरीके से लेना चाहिए, और विटामिन मिनरल्स ऐसी चीज है जिसका कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है सप्लीमेंट में।

0: तो वो पेशेंट की जरूरत के हिसाब से हम देते हैं, बिना किसी की सलाह के, बस इसलिए क्योंकि विटामिन मिनरल मिल रहा है और किसी दोस्त ने या रिश्तेदार ने बता दिया आपको विटामिन ये लेना है, कैल्शियम ये लेना है, आपको वो अवॉइड करना चाहिए। अगर सलाह दी है तब भी ले लीजिए, और उतने वक्त के लिए ही लेना जितना बताया गया है।
1: बिल्कुल,
0: वो सही वक्त पे लेना, सही तरीके से लेना जरूरी है। अभी कौन से विटामिन मिनरल ज्यादातर लगते हैं? अगर आपकी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, मतलब आपके शरीर में कोई भी विटामिन या मिनरल की कमी बहुत ज्यादा है, तब आपको सप्लीमेंट की जरूरत लगती है। उसके साथ साथ आपको आहार को भी आपके ठीक करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो रोज का आहार है वो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आपकी जरूरतें पूरा करेगा। सप्लीमेंट जो कि आपका बैकलॉग है, जो कि आपके शरीर में ऑलरेडी कम है, वो चीजें को भरेगा। तो वो सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। वैसे ही जैसे विटामिन डी की बात करें, तो विटामिन डी का मेन तो धूप से मिलता है, मगर हम आजकल धूप में ज्यादातर जाते नहीं है, या फिर हम पूरे कपड़े पहनते हैं, या ऐसे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्रीम्स या कुछ भी शरीर पे, जिससे विटामिन डी अब्सॉर्ब नहीं होता।
1: अच्छा।
0: और खाने में विटामिन डी की मात्रा कम है, तो आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत बढ़ जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप विटामिन डी बहुत, क्योंकि कम है, सबको कम होता है, हम हर रोज लेंगे या हर हफ्ते लेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि विटामिन डी फैट सॉल्युबल है, उससे आपकी बॉडी में विटामिन डी स्टोर हो सकता है और आपको टॉक्सिसिटी हो सकती है। सो बिना सलाह के कभी भी उनको नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज, आप कोई भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं या कोई डाइटिशियन के पास जा रहे हैं, आप जो भी सप्लीमेंट ले रहे हैं, एक चिट्ठी पे लिख के उन डॉक्टर को थमा दीजिए कि मैं ये ऑलरेडी ले रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि दिक्कत ये हो जाती है, आप एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने भी कैल्शियम दिया, किसी और ने भी कैल्शियम दिया, और आपने उनको बताया नहीं, तब भी ज्यादा हो सकता है आपके लिए। तो सप्लीमेंट कभी भी, कितने भी आसानी से मिले, कितने भी करीबी रिश्तेदार ने आपको बताए हो, बिना जांच पड़ताल या बिना कोई प्रोफेशनल सलाह के नहीं लेने चाहिए।
1: जी बिल्कुल। एक गाना सुनते हैं यहाँ पर।
0: जी,
1: कौन सा गाना आपके पसंद का?
0: आजकल तेरे मेरे प्यार।
1: जब सेहत सही रहती है तो भाई जाहिर सी बात है मन ठीक रहता है। मन में अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे तो प्यार की भावना भी उपजती है। सुनते हैं ये गाना।

आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है।

0: अदिति जी, हमें बताइए कि कुछ लोगों का ये मानना होता है कि खाने से पहले एक ग्लास पानी पी लो, खासतौर से वो लोग जो वजन घटाने की मुहिम चला रहे होते हैं, और कुछ लोगों का ये मानना होता है कि खाने के बीच बीच में पानी पीते जाओ थोड़ा थोड़ा, और कुछ लोग ये मानते हैं कि खाना खाने से पहले ना तो पानी पीना है, ना खाने के दौरान, ना खाने के बाद। ये जरा स्पष्ट कीजिए, क्या करना चाहिए?
1: इस सवाल का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है, और मैं वही सोच रही हूँ कि सही अल्फाज क्या है इसके लिए, थोड़ा स्पष्टीकरण देने के लिए, क्योंकि ये सब विचारधारणा है। ये किसी किसी को आप अप्लाई कर सकते हो, हर किसी के लिए नहीं है। सीधी बात है, आपको पानी लगता है, आप पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप खाने के पहले एक ग्लास पानी पियोगे, क्या हो जाएगा, आपके खाने पे असर पड़ेगा,
0: भूख कम हो जाएगी
1: आपकी
0: तुरंत।
1: भूख कम तो हो जाएगी, मगर ऐसा भी हो सकता है आप कम भूख के कारण खाने की कोई विशिष्ट चीज जो आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है आप
0: जरूर
1: उसी को निकाल दो।
0: जी,
1: जैसे भूख कम हो गई तो आपने रोटी सब्जी कर ली, दाल छोड़ दी, तो आपको दिक्कत देगा। अगर आप कर रहे हो तो उसके पीछे का शास्त्र समझ लो कि आप पानी पी रहे हो ताकि आपकी थोड़ी भूख कम हो जाए, मगर ऐसा करने के बाद अगर आपको 4 बजे बड़ी जोर की भूख लग रही है तो फिर क्या ही फायदा उस चीज करने का।
0: बिल्कुल।
1: वैसे ही आप पानी आधा घंटे पहले मत पियो, आधा घंटे बाद मत पियो, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। पानी किसको संभाल के पीना चाहिए? कुछ लोग जो होते हैं ना, जो खाना खाने के वक्त पे कम चबाते हैं या उनको चबाना पसंद नहीं आता, तो ऐसे लोग जो है थोड़ा चबा लेते हैं खाना, बाकी पानी पी के उसको थोड़ा सा गटक लेते हैं। मुझे उसका सही अल्फाज नहीं पता, बट उसको पूरा स्वॉलो कर लेते हैं,
0: जी,
1: तब आपके खाने की मात्रा बहुत कम हो जाती है और आप पानी से ही आपके खाने को अंदर ढकेल रहे हो। ये आपको तकलीफ देगा और बहुत ज्यादा तकलीफ देगा, आपके डाइजेशन के हिसाब से भी तकलीफ देगा और आपको भूख के हिसाब से भी तकलीफ देगा। ऐसे वक्त पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सिप सिप करके पानी पी रहे, घूट घूट लेके पानी पी रहे खाने के दौर में, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
0: जी बिल्कुल। और एक सवाल और है, वो ये कि एक वक्त में दो अनाज खाएं, एक अनाज, जैसे कि या तो दाल चावल खाएं या फिर रोटी सब्जी खाएं, रोटी सब्जी शाम को खा लें, दिन में दाल चावल खा लें, ऐसा लोग बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पूरी थाली, जैसे पुराने जमाने में पूरी थाली सजा के खाई जाती थी, तो आपका क्या कहना है?
1: इसमें सीधी सी बात है, धान धान होता है, आपको आखिर में देखना है धान की मात्रा आपकी थाली में कितनी है। आप अगर रोटी भी कर रहे हो और चावल भी कर रहे हो और आपकी आधी थाली उसी से भर रही है तो उसमें दिक्कत है। हमने क्या बात की थी कि थाली में 1/4 धान होना चाहिए, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि आप रोटी सब्जी अलग करें, दाल चावल अलग करें या साथ में करें। प्रॉब्लम ये आती है या दिक्कत ये आती है जब आप उसका प्रमाण बदल देते हो। अगर आपकी थाली में रोटी सब्जी है मगर आप सब्जी को अचार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, और दाल चावल है मगर आप दाल को अचार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो कम मात्रा में,
0: जी,
1: तब आपकी थाली का संतुलन बदल जाता है।
0: जी
1: और 90% लोगों का यही इशू होता है कि उनकी थाली में आधे से ज्यादा धान होता है, एक छोटी मात्रा में सब्जी होती है और बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होता है।
0: जी, खाने का सही तरीका बहुत जरूरी है, और जिसको पित्त की समस्या, एसिडिटी की समस्या हो, उसे तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत गलत फहमी है लोगों में कि कब क्या खाएं, दो भोजन के बीच में कितना गैप होना चाहिए।
1: इसका कोई एक सरल फॉर्मूला तो है नहीं, क्योंकि हर इंसान अलग होता है। किसी किसी को दिन में 3 बार खाने की आदत होती है, किसी को 5 बार खाने की आदत होती है। मुझे ऐसे लगता है, और मैं हमेशा पेशेंट्स को भी यही बताती हूँ, कि आपकी जो जिंदगी है, आपका जो रूटीन सेट है, आप उस तरीके से काम करो। अगर आप 3 बार खाते हो 3 बार खा लीजिए, मगर ये देखिए कि वो आहार संतुलित हो। अगर हम बात करें भूख की, दिक्कत ये है शहर में आजकल लोगों को यही समझ नहीं आता भूख कब लग रही है और प्यास कब लग रही है। बस 1 बज गया है तो अभी

0: करने जाना है ये समझ में आता है। तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को समझना जरूरी है कि मुझे भूख कब लग रही है, मुझे प्यास कब लग रही है।
1: तो क्या जब भूख लगे तभी खाना चाहिए?
0: ऐसा जरूरी नहीं है, शरीर को जरूरत है उसकी समझे और आप अपना रूटीन सेट करें उस हिसाब से। अब मैं ये कहूंगी पहले तो रूटीन सेट करिए और उस वक्त पे आपके बॉडी को ट्रेन करिए कि आपको उस वक्त पे भूख लगे, मगर भूख लगना उस वक्त पे जरूरी है। बस एक बजा है इसके लिए मुझे खाना है ये नहीं होना चाहिए, मुझे एक बजे भूख लगनी चाहिए क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, ये होना चाहिए। जब आपको भूख लगेगी वही अनाज वही थाली आपको अच्छे से शरीर आपका उसको एब्जॉर्ब करेगा। आपके दो खाने के बीच में कितना गैप होना चाहिए ये निर्भर करता है आप कितनी मात्रा में खाते हो। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग क्वांटिटी में ज्यादा खाते हैं, खाने की मात्रा उनकी ज्यादा होती है, और कुछ लोग होते हैं जो एक वक्त पे एक रोटी या दो रोटी के ऊपर नहीं खा सकते। जो कम खाते हैं उनको कई बार थोड़े थोड़े अंतर पे खाना जरूरी है, तो 2-3 घंटे के अंतर पे आप थोड़ा थोड़ा खा लेंगे अच्छा रहता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी खाने की मात्रा ज्यादा है तो आप दिन में 3 बार खा लोगे आप ठीक रहोगे। अगर आपको जैसे एसिडिटी या गैस की दिक्कत है तो आपको थोड़ा थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। आपको ब्लड शुगर की इश्यू है तब भी आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए ताकि आपका शुगर स्टेबल रहे। अगर आप दिन में 3 बार खा रहे हो जस्ट इसलिए कि अभी ट्रेंड चल रहा है दिन में 1 बार खाने का, आप डायरेक्टली 3 से 1 पर आ गए, वो दिक्कत करेगा।
1: जी जी, अभी 2 टाइम का भी
0: बहुत ज्यादा
1: कि सिर्फ 2 टाइम खाना खा रहा है। यहाँ पर एक जरूरी बात जहन में आई है वो ये कि कई बार लोग एक साथ खाना खाने बैठते हैं तो सलाद भी रख लिया, दही भी रख लिया, फल भी रख लिया काट के और पूरी थाली भी। तो क्या फल और खाना एक साथ खाना चाहिए या उसे बीच में गैप देना चाहिए?
0: हमेशा मुझे ऐसे लगता है कि फल ऐसी चीज है जो हमारे पूरे खाने में हम उसे बिना पकाए खाते हैं।
1: जी जी,
0: तो उसे ऐसे वक्त पे खाएं जहां आप उसका मजा अलग से ले पाए।
1: जी,
0: जहां पका हुआ खाना जा रहा है वहां पे वो होना चाहिए। सलाद आपके खाने में जा सकता है, वो कच्चा होता है, मगर सलाद हर किसी को सूट करता है ऐसा नहीं है। इसका मतलब कच्चा खाना सबके लिए है नहीं।
1: जी जी बिल्कुल,
0: आपकी सेहत के हिसाब से आपके पेट कैसा काम कर रहा है उस हिसाब से आपका सलाद पका हुआ हो या कच्चा होना चाहिए ये देखना आपको जरूरी होता है। फल आपको हमेशा अलग से ही खाने होते हैं और कभी भी फल के साथ आपके नट्स जाने चाहिए। अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लें कि नॉर्मली लोग 8-9 बजे नाश्ता कर लेते हैं, 1 बजे खाना खाते हैं और जो रात का खाना होता है वो अक्सर 8-9-10 बजे चला जाता है, तो आपके दोपहर के खाने और रात के खाने में बहुत बड़ी गैप हो जाती है। तो ऐसे वक्त पे इसके बीच में वहां पे फल और आपका जो नट्स है वो बहुत आसानी से इस्तेमाल हो सकता है। अभी आपको ये भी देखना है कि 5 से 7 के बीच में ही आपको समोसे चाट की जरूरत पड़ती है, तो वो भूख लगने के पहले और आपके दोस्त आपको बताने के पहले कि चलो हम जाके समोसा खाते, उस वक्त पे आपका फल और नट्स खा लीजिए और आपकी सेहत बढ़िया रहेगी।
1: जी जी, एक गाना सुने?
0: जी,
1: कौन सा?
0: क्यों ना ये जीवन है पिया का घर।
1: जी, इस जीवन का यही है रंग रूप।

0: और कुछ लोगों का ये भी मानना है रोटी के मामले में कि गेहूं की रोटी नहीं पचती है, देर से पचती है, और मोटा अनाज ज्वार बाजरा और नाचनी, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
1: अगर हम गेहूं की बात करें, एक ट्रेंड चल रहा है जहां पे लोग बोलते हैं कि गेहूं बहुत बुरा है। गेहूं हर किसी के लिए बुरा नहीं है। अगर आपको एलर्जीज हैं या IBS IBD जैसे कोई मेडिकल कंडीशन है, तब आपको, या आप गेहूं जब भी खाते हो आपको थोड़ी बहुत डाइजेशन की इश्यू होती है, गैस की इश्यू होती है, तब गेहूं दिक्कत दे रहा है आपको, और तब आपको उसको अवॉइड करना चाहिए।
0: तो वहां
1: मतलब
0: पर
1: आपकी थाली में गेहूं नहीं होना चाहिए या कम मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि वो आपको तकलीफ दे रहा है। बाकियों को गेहूं से दूर रहने की कोई जरूरत नहीं है। कि आप गेहूं कौन से तरीके का यूज कर रहे हो ये देखिए,
0: जी।
1: जिसमें आपके पास खपली गेहूं है जो सबसे बेहतर है, उसके बाद आपके पास अलग अलग तरीके के गेहूं हैं, आप कौन सी वैरायटी यूज कर रहे हो ये भी देखिए, और उसमें आप जो गेहूं के ऊपर का छिलका होता है, ब्रान होता है, वो इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं खाने में, रोटी में, ये देखिए आप सही रहोगे। रोटी गलत नहीं है, रोटी हर किसी को तकलीफ देती है ऐसा भी नहीं है। अगर हम ज्वार बाजरा की बात करें, मिलेट्स बहुत ज्यादा चर्चा में है एक दो
0: बिल्कुल
1: सालों से, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मिलेट्स हम पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं अपने देश में, आज उसकी मात्रा बहुत बढ़ गई है, मगर लोगों को उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आज भी नहीं आता। ये जो मिलेट है या मोटे अनाज है, ये बहुत बार आप देखोगे थोड़े सूखे या ड्राई टेंडेंसी के होते हैं। ये कम खाएंगे तब भी आपको एकदम ऐसे लगेगा कि भरा भरा पेट लग रहा है, या पेट बहुत टाइट हो रहा है, या आप और एक ज्वार की रोटी के ऊपर नहीं खा सकते। अच्छे हैं मगर वो भी सही मात्रा में आपके दिन में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको थायराइड जैसा इश्यू और आप पूरी तरीके से मिलेट्स पे रह जाए, आपको दिक्कत होगी। तो एक संतुलन गेहूं और मिलेट्स के बीच में रखना, चावल के बीच में रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो संतुलन जमा लिया तो आपका पेट सही रहेगा। दूसरी चीज मुझे ये हमेशा दिखती है कि कुछ लोग जो होते हैं ना, आंकड़ों के पीछे पड़े रहते हैं। इसका
0: जी
1: मतलब क्या होता है कि उनकी प्लेट में उनको या थाली में उनको दो रोटी चाहिए होती है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो गेहूं की है, ज्वार की है, बाजरा की है। अभी ये दिक्कत है कि एक फुल्का या एक रोटी जो है 20 से 30 ग्राम आटे की बनती है, और एक

0: ज्वार की रोटी जो है 50 से 60 ग्राम आटे की बनती है।
1: बिल्कुल
0: तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपने ज्वार बाजरा जो भी है वो बहुत ज्यादा मात्रा में खा लिया, जहाँ कि आप रोटी एकदम हल्के फुल्के में काम चला लेते हैं।
1: तो पाचन पर असर पड़ेगा
0: जी, तो ये लोग सोचते ही नहीं है, क्योंकि ये उन्होंने कभी उस तरीके से सोचा ही नहीं है। तो ये आपको देखना जरूरी है कि आपकी पाचन क्रिया कैसी है, आपका पेट कैसा है।

0: मिलेट्स की आदत लगाए, और ज्वार बाजरा नाचनी के आगे भी हमारे पास धान है उसका
1: जी
0: भी इस्तेमाल करें, जैसे कोड़ हो गया, कांग हो गया, पोड़सो हो गया, महाराष्ट्र में वरी हो गया, ये सारे भी तो धान हैं, वो भी तो
1: जी
0: इस्तेमाल कर सकते हैं। सूडो मिलेट्स हैं जैसे कि किनुआ हो गया, कुट्टू हो गया, बकवीट जिसे बोला जाता है। किनुआ को तो हिंदी मराठी नाम है नहीं, किनुआ को किनुआ ही बोलते हैं।
1: सावा
0: नहीं,
1: अच्छा
0: सामा है जो कि होता है महाराष्ट्र में वरी, बार्नयार्ड मिलेट।
1: जी जी
0: तो ये
1: जी
0: सारी चीजें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। हमें सिर्फ रोटी और उसके आगे ज्वार बाजरा नाचने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है, हमें बस कुछ चीजें पता नहीं है और कुछ चीजें हमें इस्तेमाल करनी नहीं आती। तो आप सही तरीका सीख लो तो हो जाएगा। जब भी आप मोटे धान की बात करें और आप अगर अक्खा धान यूज कर रहे हैं तो उसको अच्छे से 4 से 6 घंटे भिगो के रखना बहुत जरूरी है, और सही मात्रा में पानी डाल के उसको पकाना बहुत जरूरी है। उसके साथ आप किस तरीके की सब्जी खा रहे हो, अगर आप मोटा धान इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके साथ जो सब्जियों में पानी का अंश ज्यादा होता है, जैसे दूधी हो गया, कद्दू हो गया, पेठा हो गया, इसका इस्तेमाल ज्यादा करें, तो वो आपका सूखी रोटी और उसके साथ गीली सब्जी, ये थोड़ा सा बैलेंस आपके पेट के लिए बहुत अच्छा ठहरता है।
1: अच्छा, क्या बात है,
0: तो
1: ये
0: ये
1: तो
0: थोड़ा संतुलन आपको समझना चाहिए और आपको धीरे धीरे अपने खाने को उस तरीके से बदलना जरूरी है।
1: एक गाना सुने
0: जी,
1: कौन सा
0: आप ही बता दीजिए कोई गाना।
1: सुनते हैं ये गाना
0: एक बार।

0: बहुत सारे चावल है, अनपॉलिश्ड वैरायटी का चावल इस्तेमाल करें या सेमी पॉलिश्ड वैरायटी इस्तेमाल करें। बहुत खुशबूदार, बहुत फ्लेवरफुल चावल आते हैं हमारे पास। सफेद चावल में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं रहता है, उसका सब कुछ निकाला हुआ होता है, बस हल्का सा बी विटामिन आपको मिल जाएगा, बाकी सब वो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट है।
1: क्या बात है, बहुत सही जानकारी आपने दी है। पहले ग्रामीण इलाकों में आज भी
0: वही
1: धान को उबालकर चावल बनाया जाता है, वो उसको उसना चावल कहते हैं।
0: हाँ, हमारे यहाँ उकड़ा तांदूल बोलते हैं। हाँ, महाराष्ट्र में जहाँ हम वही राइस को यूज करते हैं, जिसमें अच्छा ब्रांड भी होता है, विटामिन भी होते हैं, वो मोटा होता है तो आप कम भी खाते हो।
1: अदिति जी, बहुत जरूरी मुद्दा है आजकल तेल के बारे में, कि पुराने जमाने में तो हम सबको याद है कि सरसों का तेल सब्जियों में इस्तेमाल होता था, और कुछ जगहों पर नारियल का तेल, साउथ में खासतौर से अलग अलग जगहों पर, और आजकल तरह तरह के तेल हैं, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, सनफ्लावर, राइस ब्रॉन। तो बताइए कि कौन सा तेल सब्जियों के लिए सही होता है इस्तेमाल करना?
0: आप जिस जगह रहते हो उस जगह आपके आजू बाजू में कौन से पेड़ ज्यादा है, उस हिसाब से उस इलाके में वो तेल ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट की बारे में बात करें तो वहां पे आपको सरसों का इस्तेमाल ज्यादा मिलेगा। महाराष्ट्र की बात करें या साउथ की बात करें तो नारियल का तेल ज्यादा मिलेगा। आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है तो ये सारे तेल अभी हम सबको मिल रहे हैं। कोई तेल बुरा हम नहीं बोल सकते, हर तेल अपने तरीके से सही है, किसी के लिए वो अच्छा हो सकता है, किसी के लिए वो बुरा हो सकता है। मुख्य क्या होता है कि आपके खाने में तेल की मात्रा कितनी है। आप अगर आपके खाने में, जैसे एक इंसान को पूरे दिन में तेल की मात्रा 3 से 4 चम्मच रखनी चाहिए।
1: ओहो,
0: छोटे चम्मच, 5 ml के चम्मच, उसके ऊपर नहीं।
1: जी।
0: मगर हम कभी गिन के थोड़ी ना तेल इस्तेमाल करते, अंदाजे से भिंडी की सब्जी को थोड़ा ज्यादा तेल डाल दिया, कोई पत्ते की सब्जी है तो उसमें कम तेल डाल दिया, हम स्वाद अनुसार तेल इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। अगर हम तेलों की बात करें कि कौन सा सबसे अच्छा होता है, सबसे पहले आप देखिए कि आपको मेडिकल इश्यूज है या नहीं। कुछ मेडिकल इश्यूज में कुछ तेल हम मना कर देते हैं, बाकी केस में अगर आपको कोई इश्यूज नहीं है, आप सेहतमंद है, आपको बस आपकी तबीयत का ख्याल रखना है, तो इसका सिंपल तरीका यह है कि आप पारंपरिक तौर से आप जो तेल खा रहे हो उसका इस्तेमाल करें, बाकी तेल भी अपने रूटीन में रखें, उसको थोड़ा सा साइकिल करें। मतलब अगर एक महीना आप सरसों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा फिर राइस ब्रान को लेकर आए, फिर आप सरसों पे चले जाए, फिर सनफ्लावर का इस्तेमाल करें, ऐसे थोड़े आप बदलाव लेकर आ सकते हैं। आखिर में आपकी तेल की मात्रा कितनी है ये मायने रखता है।
1: जी।
0: कुछ तेल होते हैं जिनको बहुत बुरा नाम पड़ा है, जैसे पाम ऑयल है, क्योंकि ये ज्यादा करके पैकेज फूड, बेकरी आइटम्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो हाँ, ये बुरा है क्योंकि उसकी जो गुणधर्म है वो आपको तकलीफ दे सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप पैकेज फूड और प्रोसेस फूड कितना खा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: आखिर में गिन के आप पूरे दिन में तेल कितना खा रहे हो। और तेल भी दो तरीके से हम देखते हैं, नॉर्मल लोग सिर्फ तेल को गिनते हैं, हम डाइटिशियंस दो तरीके से देखेंगे। विजिबल सोर्सेस जो कि दिखते हैं, मतलब आपका तेल, घी, बटर, चीज, और दूसरा होता है इनविजिबल सोर्सेस, मतलब दूध में से आने वाला फैट, आपके नट्स में से आने वाला फैट, ये भी तो जरूरी है।
1: जी जी।
0: तो अगर आप पूरे दिन में 2 मुट्ठी ड्राई फ्रूट ही खा रहे और आपकी सब्जी तेल में तैर रही है,
1: बिल्कुल,
0: तो आप ज्यादा तेल खा रहे हो, आपको तकलीफ होने ही वाली है। आखिर में तेल की मात्रा कितनी है वो ज्यादा मायने रखती है, और अपने तेल को बदलते रहिए। कौन सा तेल अच्छा है, क्या केमिकली रिफाइंड तेल अच्छा है, फिजिकली रिफाइंड अच्छा है, वुड प्रेस्ड अच्छा है, कोल्ड प्रेस अच्छा है, तो फिजिकली रिफाइंड या घानी, वुड प्रेस, कोल्ड प्रेस, ये अच्छे हैं। जितना हो सके केमिकल जो फिल्टर्ड होता है वो थोड़ा सा दूर रखें। अगर शहर में रह रहे हैं या आपको दिक्कत है, आपको एक्सेसिबिलिटी या फाइनेंस का इश्यू है, तो आप जो भी तेल मिल रहा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियली अफोर्डेबल है तो घानी का तेल, कोल्ड प्रेस ऑयल, वुड प्रेस ऑयल, इसकी तरफ थोड़ा सा मुड़ जाइए। वो तेल थोड़ा सा गाढ़ा भी होता है, तबीयत के लिए भी अच्छा होता है, और उसमें गुणधर्म भी अच्छे खासे होते हैं।
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: वो इस्तेमाल आप कर सकते हो।

0: तो जो आप धान की बात कर रही थी, धान में ये सारी चीजें आती हैं।
1: जी
0: धान में सिर्फ वो चावल जो हम रोज खाते हैं वो नहीं,
1: हाँ,
0: बल्कि कोदो और जो नाम
1: बहुत
0: आपने
1: ज्यादा।
0: बताया।
1: और आप अगर चावल की ही बात करें तो भारत ऐसा देश है जहां हमारे पास 150-200 तरीके के चावल है,
0: बिल्कुल,
1: मगर हम एक ही चीज जानते
0: सिर्फ
1: हैं,
0: खुशबूदार
1: सफेद
0: चावल।
1: चावल,
0: बिल्कुल, और
1: खुशबूदार चावल, बासमती चावल, इतना ही जानते हैं। थोड़ा हमारे जो चावल के अनाज है जो हमारे पास है, जैसे अंबे मोहर है, मट्टा है केरला का, या असम का ब्लैक राइस है, जो आपके यहाँ है, या कृष्णा कमोद है, आप वो चावल का
0: ब्राउन
1: इस्तेमाल
0: राइस
1: करें।
0: भी एक आता है।
1: ब्राउन राइस आता है, मगर उससे अच्छा हमारे पास

0: और घी के बारे में भी बताइए। घी के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां, लोग चुपड़ के घी खाते हैं कुछ लोग कहते हैं कि अरे इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, घी खाते ही नहीं, तो घी क्या है बताइए।
1: घी भी फैट का एक ही रूप है। आप तेल खाओ, घी खाओ, बटर खाओ, चीज खाओ, उसके रूप अनेक है।
0: अच्छा,
1: आखिर में मात्रा आपकी मैटर करती है। जो कि मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि दिन में आपकी 3 से 4 चम्मच तेल होना चाहिए, उसमें घी भी आता है। आप 4 चम्मच घी इस्तेमाल करना चाहते हो या उसमें से 1 चम्मच घी इस्तेमाल करना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। क्या घी खाने से फायदा है? हाँ, पेट के लिए अच्छा है, तबीयत के लिए अच्छा है। आप वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हो तब भी आपको फायदेमंद ठहरेगा। अगर आपको ब्लॉकेज इश्यूज है, हार्ट इश्यूज है, या आपको कोई मेडिकल बाकी के कंडीशन है, तो आपको घी को थोड़ा कंट्रोल में रखना जरूरी है। अगर आप घी नहीं खाते हो, क्या आपको कोई नुकसान है? नहीं, बिना घी खाए भी आप अच्छे खासी जिंदगी निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको घी खाना जरूरी है जिंदगी में। तो आखिर में आप कितनी मात्रा में खा रहे हो, ये महत्वपूर्ण है।
0: जला

0: और घी नहीं खाना चाहिए पराठे के रूप में
1: जी
0: पूड़ी और पराठे के रूप में
1: बहुत ज्यादा।
0: अदिति जी, घी तेल सब कुछ शामिल हो गया और हर खाने में मिठाई भी शामिल होता है। कुछ लोगों के साथ तो ये दिक्कत है कि हर खाने के बाद उनको मीठा चाहिए, तलब होती है। तो ये मिठाई के खाने के बारे में बताइए कि खाने के बाद, खाने के साथ खाना जरूरी है, खाने से पहले या बाद में, या नहीं खाना चाहिए?
1: अगर आप मिठाई खाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिठाई की जरूरत नहीं है। शक्कर कम खाने से आपकी शक्कर कम नहीं होने वाली। मिठाई भी शक्कर का ही एक अलग रूप है जिसे हम कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं। अगर आपके पूरे दिन में आपके आहार में कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण बहुत ज्यादा है तो मिठाई उसे और बढ़ाएगा। और मिठाई जो है छोटा बम बड़ा धमाका है,
0: तो
1: छोटे से बाइट में बहुत ज्यादा कैलोरीज होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा फैट भी होता है और उतनी ज्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाते हैं। तो क्या मिठाई जरूरी है? नहीं। अगर आप मिठाई हर खाने के बाद खाना चाहते हो तो ये आपको कम करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, आपकी तबीयत के हिसाब से। तो एकदम से अचानक से अगर आप बंद नहीं करना चाहते, पहले तो दिन में एक ही बार कर लीजिए और फिर उसी मिठाई के थोड़े से हेल्दी रूप थोड़े से देख लीजिए। जैसे आपको खजूर मिल जाएगा, या आपने थोड़ा चना और गुड़ ले लिया, या आपने छोटा चिक्की का टुकड़ा ले लिया, आप इसका इस्तेमाल करें, ना कि गुलाब जामुन या और कोई तली हुई मिठाई, मावा जलेबी, इसका इस्तेमाल करें। जैसे मैंने कहा, आखिर में पूरे दिन में आपने कार्बोहाइड्रेट कितने खाए हैं वो मायने रखता है। कुछ लोग जो है खाने में भी शक्कर और गुड़ का इस्तेमाल बहुत करते हैं, तो मतलब आप चाय में शक्कर गुड़ खा रहे हैं, आपके खाने में गुड़ और शक्कर जा रहा है, और फिर आपकी मिठाई में भी शक्कर है। तो आपने यहाँ फॉर्मूला बना लिया आपका ब्लड शुगर बढ़ाने का।
0: जी जी।
1: इससे आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा क्योंकि आप हर जगह पे मिठाई खा रहे हो। अभी कुछ लोग बोलेंगे हमें तो ब्लड शुगर नहीं है, हम तो जिंदगी भर खा रहे। अच्छी बात है, हो गए, आपकी तबीयत उतनी अच्छी है, हो गया। मगर क्या ये हर कोई कर सकता है? नहीं, वो हर किसी को तकलीफ दे सकता है।
0: जी।
1: तो मिठाई भी आखिर में आपको ये देखनी है कि क्या ये मेरे को फायदा देने वाली है। आज के टाइम में हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी मिठाई आ रही है जो कि आपकी तबीयत को भी संभाल सकती है और मीठे की क्रेविंग को भी संभाल सकती है। जैसे डार्क चॉकलेट हो गया, या आप छेना इस्तेमाल करो, रसगुल्ले का छेना वो आप यूज करो।
0: खीर घर में बना के,
1: खीर भी आखिर में दूध और शक्कर ही आई, और उसमें अगर आपने साबुदाना डाल दिया तो खत्म। तो आपने एकदम ऐसा फॉर्मूला बना दिया जहाँ पे शुगर बढ़ जाएगा। तो ये कितने मात्रा में खा रहे, पूरे दिन में कितनी शक्कर गुड़ जा रही है, और ओवरऑल आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक कितना है, इस पे निर्भर करेगा कि क्या आप मिठाई खा सकते हो या नहीं। दूसरी चीज ये होती है कि बहुत ज्यादा मीठा खाने से ना, कुछ लोग कई सालों तक उनको आदत होती है मीठा मीठा खाने की, कार्बोहाइड्रेट खाने की, इसकी वजह से उनकी टेस्ट बड्स जो है ना वो भी थोड़े चेंज हो गए। उनको हर चीज उस तरीके से टेस्ट नहीं आती, तो जब वो मिठाई थोड़े दिन के लिए निकाल लेते हैं तब उनको वही मिठाई कितनी मीठी है वो पता चलेगी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो मिठाई बिल्कुल नहीं खाते हैं, वो फटक से बोलेंगे आपकी एक चम्मच शक्कर भी बहुत ज्यादा है। वो क्यों बता पा रहे? क्योंकि उनके टेस्ट बड अभी वापस ट्रेन हो गए कि जो निसर्ग में जो चीजें जैसी है वो उनके फ्लेवर्स का मजा उस तरीके से ले ले। तो हमें उस चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है।
0: मतलब ये भी है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम खाना कम खा लें, मिठाई ज्यादा खा लें।
1: हाँ।
0: तो वो भी ठीक नहीं है।
1: ठीक नहीं है,
0: क्योंकि मीठा तत्व तो आपके शरीर में जा रहा है जो
1: कुछ लोग
0: है।
1: ऐसे बोलते हैं कि मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, डाइट भी कर रही हूँ, मगर वेट लॉस नहीं हो रहा है या मेरी शक्कर कम नहीं हो रही है, तभी भी अक्सर गुनहगार वो मिठाई ही होती है।
0: बिल्कुल। तो अब इस मिठाई के साथ ही मीठी मीठी बातों को हम विराम दे रहे हैं। अदिति जी, बड़ी ढेर सारी जानकारी आपने साझा की हमारे श्रोताओं के साथ। एक गाना सुने
1: जी।

पोषण माह के उपलक्ष्य में सेहतनामा कार्यक्रम में आज आपने सुना न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग मिला मंगेश सांगले से। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी

आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुना रहे हैं बाबुल सुप्रियो द्वारा गाए कुछ गैर फिल्मी नगमे।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
4: के लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: कार्यक्रम सुगम संगीत में आज आप सुन रहे हैं बाबुल सुप्रियो द्वारा गाए कुछ गैर फिल्मी नगमे।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। इसी नगमे के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। प्रातः के 11:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के पहली प्रस्तुति

सिटी में आपको सुना रहे हैं फिल्म फिजा से ये गीत। आवाज है अलका याग्निक और उदित नारायण की। शब्द रचना है गुलजार की। इस गीत को संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म हम दिल दे चुके सनम से। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आहिस्ता आहिस्ता से, आवाजें हैं के और जयेश गांधी की। शब्द रचना इरशाद कामिल की है, संगीत बद किया है हिमेश रेशमिया ने।

राघव माथुर और शिल्पा राव की आवाज में सुनवा रहे हैं आपको ये अगला नगमा फिल्म जब तक है जान से। इस गीत को लिखा है गुलजार ने, धुन है ए आर रहमान की।

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस दिए, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

0: अलका याग्निक और अभिजीत के गाए इसी नगमे के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं पर संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। दोपहर के 12 बजे आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।
1: समाचार के साथ मैं कनकलता। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पुनर्उपयोग, मरम्मत और संरक्षण की अपनी प्राचीन पद्धतियों को समकालीन नीतियों में आधुनिक रूप दिया है। उन्होंने ये बात गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में कही। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपये तक के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI लेनदेन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने UPI लेनदेन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले UPI लेनदेन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे।

0: अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेन देन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। कल से शुरू हुई 5 दिन की ये वार्ता 18 सितंबर तक चलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी की उम्मीदवार होंगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए 100% आबादी तक पहुंचने वाला माध्यम है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक की शुरुआती बढ़त खत्म हो गई और दोपहर के सत्र में वो गिरावट के साथ ट्रेंड कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत कर रही हूं मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह। आइए सबसे पहले सुनते हैं आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का गाना आशा भोसले और अनवर की आवाजों में। लिखा है इसे निदा फाजली ने।

आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और अनवर की आवाजों में। निदा फाजली के बोलते खयाम का संगीत था। आइए अब सुनते हैं अधूरा आदमी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज में। योगेश के बोल, राहुल देवबर्मन का संगीत है।

0: लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी। अम्बिका
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

एक मूड, एक कैफियत गीत का चेहरा होता है। कुछ सही से लफ्ज जड़ दो, मौजूं से धुन की लकीरें खींच दो, तो नगमा सांस लेने लगता है, जिंदा हो जाता है। बस इतनी सी जान होती है गाने की, एक लम्हे की जितनी। हां, कुछ लम्हे बरसों जिंदा रहते हैं। गीत बूढ़े नहीं होते, उनके चेहरों पर झुरियां नहीं गिरती, वो पलते रहते हैं, चलते रहते हैं। सुनने वालों की उम्र बदल जाती है तो कहते हैं, हां वो उस पहाड़ का टीला जब बादलों से ढक जाता था तो एक आवाज सुनाई दिया करती थी।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ

0: और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
6: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली पहनी।
5: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
7: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
5: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
8: याद सताते हैं।
5: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में आप सुन रहे थे दो जासूस फिल्म का ये गाना। आइए अब सुनते हैं मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। लिखा है इसे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मिस्टर एक्स इन बॉम्बे इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

दोस्तों, अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि इस कार्यक्रम में एक इबारत यानी कि टेक्स्ट हम पोस्ट करते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, और आपको उनमें से उस इबारत में से शब्द चुनना होता है और शब्दों से गाने। लेकिन आज हमने एक अलग खेल किया है, वो ये कि इबारत हमने आपके लिए लिख दी है और साथ में हमने आपसे ये कहा है कि आप भी मिलती जुलती इबारत लिखिए। उसके लिए हमने शब्द भी दिए हैं, लेकिन जरा पहले हम अपनी वाली इबारत आप तक पहुंचा दें। बहुत सारे श्रोताओं ने इबारत लिखने की कोशिश भी की है। यहां हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि जो लोग अब लिख रहे हैं इबारत, तो जरा बहुत संक्षेप में लिखें ताकि हम बहुत सारे श्रोताओं की इबारत को शामिल कर सकें। तो सुनिए, गीत जब शब्दों की देहरी से निकलकर सुरों की दुनिया में आते हैं तो महज गीत नहीं रहते, वे मन की कोई अनकही बात बन जाते हैं। हिंदी के ललित गीतों की यही तो खूबसूरती है, इनमें प्रेम की कोमल आहट है, विरह की नमी है, प्रकृति की छुअन और जीवन के अनगिनत रंग हैं। कभी कोई गीत चांदनी रात में मन का हमसफर बन जाता है, तो कभी बरसात की फुहारों के साथ पुरानी यादों की खिड़की खोल देता है। कुछ गीत जो बरसों बाद भी कानों में पड़ते हैं।

किसी भूली हुई गली, किसी चेहरे या किसी अधूरी कहानी तक ले जाते हैं। कुछ गीत हमारे मनमीत बन जाते हैं। कभी मन एक अजनबी से पूछ उठता है कि ये तो कहो कौन हो तुम, तो कभी आपसे भी किसी ने पूछा है या आपने कभी पूछा है, और कभी किसी की आहट पर खुद से कहता है कोई मतवाला आया मेरे द्वारे। कभी प्रेम की ऐसी खुमारी छा जाती है कि आज मदहोश हुआ जाए मन, ये मन की बातें हैं। तो कभी दिल की बेताबी कहती है बेताब दिल की तमन्ना। नसीम है दोस्तों गीतों का संसार और मन की दुनिया, यही तो गीतों का जादू है। कुछ पंक्तियां हमारे मन के उन कोनों तक छू जाते हैं जहां शब्द भी नहीं पहुंच पाते। तो आइए शब्दों की मिठास और सुरों की रवानी में डूबते हुए शुरू करें ललित गीतों का सुरीला सफर। पर दोस्तों आज आपको भी लिखनी है चंद लाइनें, नोट करिए ये शब्द। चांदनी रात हम सफर, यादों की खिड़की मनमीत हम सफर, जीवन के अनगिनत रंग, इन शब्दों से बुनिए आप भी कोई इबारत। हमारी इबारत से शब्द और गाने भी चुनिए, इबारत अर्थपूर्ण होने चाहिए। और हाँ, मेरी वाली इबारत को काट पीट कर मत लिखिएगा, नई इबारत चाहिए। तो देखते हैं, भले ही आप दो लाइन लिखे, जैसे कहानी का एक अंश होता है, आजकल तो वन लाइनर का जमाना है कि आप अपनी कहानी को वन लाइन में, मतलब एक दो लाइन में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। हम जो गाना सुनवा रहे हैं उस गाने को सुनिए ध्यान से और आप बताइए कि इसमें हीरो हीरोइन कौन है, और साथ में इबारत तो आपको लिखनी ही है, वो आप लिखते रहिए। हाँ, आप को ऐसा लगता है कि गाने सुने और गाने सुनने के बाद जहन में कोई इबारत जैसी बात आती है तो लिख डालिए। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। चलिए अब सुनते हैं ये गाना और आपको बूझना है हीरो हीरोइन का नाम। शर्मिली फिल्म का गाना है, बता दिया हमने फिल्म का नाम, आप बताइए हीरो कौन हीरोइन कौन। गीतकार का नाम भी बता सकते हैं तो जरा बताइए।

शर्मिली फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज में, लता मंगेशकर किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, नीरज की रचना थी, सचिन देव बर्मन का संगीत था। पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, गीतकार का नाम। सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द और लंबी तादाद में जवाब दिया, शशि कपूर और राखी, राखी डबल रोल में। एक श्रोता की टिप्पणी है, मुझे तो चांद बहुत सुकून देता है, शायद इसलिए इसको शीतलता प्रदान करने वाला माना जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि कल शाम तीज पर्व पर अपने हमसफर के साथ दूसरी मंजिल की खिड़की में चांद को निहार रहे थे, तब हम बीते बरस के अनगिनत रंगों में सराबोर होकर गुनगुना रहे थे, खुद पे इतराते हुए चांदनी रात में एक बार तुम्हें देखा है। मनमीत के साथ बिताए पलों को याद करते कब रात बीत गई पता ही न चला, सहसा चिड़िया चहकने लगी, कितना सुकून था उन पलों में। एक श्रोता लिख रहे हैं कि रात के हम सफर थक के घर को चले, फिर चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, ये तो कहो कौन हो तुम, कोई मतवाला आया, जरा सी आहट होती है आज मदहोश हुआ जाए, बेताब दिल की तमन्ना हो, दिल की तमन्ना थी मस्ती में। क्या बात है भाई, आपने तो बहुत सारे गानों के बोल लिख डाले हैं और भी बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। जरा अब अगली फिल्म के लिए लिखिए कि ये फिल्म आपने कब और कहां देखी थी, एक बात। दूसरी बात, कौन है कलाकार, हीरो हीरोइन, किन पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, और साथ में गीतकार और संगीतकार का नाम। बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लिए, कोई बात नहीं, जो जवाब आपको सूझे वो दीजिए।

लव इन टोक्यो फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र की रचना थी, शंकर जयकिशन की धुन थी और जॉय मुखर्जी आशा पारेख पर फिल्माया गया था ये गाना। हमारे श्रोताओं ने इसका जवाब भी सही दिया और बहुत जल्द जवाब आया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आज की इबारत सुरमयी पुकार है, जब चांदनी रात में किसी गीत के वादी संवादी सुर मिलकर सतरंगी आसमान खोलते हैं, यादों की खिड़की खोलकर जब कोई मतवाला मनमीत द्वार पर दस्तक देता है तब रूह का कोना कोना रोशनी से जगमगा उठता है। जीवन के अनगिनत रंग लिए इन गीतों में उड़ने को अनंत खुला है और डूबने को अतल गहराइयां भी। चांदनी रात में गीतों की तान जब सोए कंदीलों को जगा देती हैं तब हम सफर के साथ तारों जड़ी ओढ़नी ओढ़कर कोई प्रियतमा पैरों के झांझर उतार बेताब दिल की तमन्ना लिए किसी योगी की तरह गीत की तरंग में ध्यानस्थ हो जाती हैं। गीतों की मीठी विकल्प पुकार के साथ पलके नींद की दस्तक पर झपकती हैं और मन को पंख और कल्पना को परवाज देते अमर और मधुर गीतों की अनुगूंज पहरों पहर बनी रहती है। क्या बात है भाई, बहुत ही ललित भाषा में आपने ये इबारत लिखी है और बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि यादों की खिड़की खुली तो जीवन के अनगिनत रंग नजर आए, मनमीत की मीठी यादें मन में हलचल मचाने लगी, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, चांदनी रात में एक बार तुम्हें देखा है, ओ मेरे हम सफर, बहुत सारे गाने इन्होंने लिखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई इन टिप्पणियों के लिए और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमने आपसे कहा कि आप भी इबारत लिखिए तो आप सभी लिख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं लिखी है इबारत वो भी लिखे और जो शब्द हमने दिए हैं उन शब्दों को शामिल करते हुए भले ही दो तीन लाइन की इबारत लिखे हम जाना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि किसी के भीतर एक कहानीकार छुपा होता है, एक कवि छुपा होता है जिन्हें बस कहने की जरूरत होती है, तो टटोलिए कहीं आपके भीतर भी कोई कथाकार तो नहीं छुपा। फिलहाल चलिए अगला गाना सुनते हैं, बूझना है आपको फिल्म का नाम। बहुत आसान सवाल है, फिल्म का नाम बूझना है और फटाफट बताइए। विविध भारती के फेसबुक पेज पर चाहें तो गीतकार का नाम भी बूझ सकते हैं और ये भी बताइएगा कभी आपने गुनगुनाया है इस गाने को।

फिल्म थी दी ट्रेन और यही था हमारा सवाल। श्रोताओं ने त्वरित जवाब दिया, कुछ श्रोताओं ने बहुत जल्द लिख दिया दी ट्रेन यहाँ कि मैंने पूछा और उधर उनके जवाब आने शुरू हो गए हैं। इसी तरह से आप फौरन जवाब देते रहिए और हम आपकी टिप्पणियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। जिन्होंने इबारत नहीं लिखी है वो अभी भी कोशिश कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि लंबी इबारत लिखें। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म लव इन टोक्यो के लिए कि ये बड़ा ही बेहतरीन गाना है। इस गीत में किसी प्रिय के आने की खुशी, मन की हल्की सी शरारत और प्रेम की मीठी आहट महसूस होती है, जैसे किसी की दस्तक से अचानक सूना सा मन भी खिल उठे। कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, सुनते ही लगता है जैसे कोई चुपके से मन के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी हो। गीत की मिठास लता जी की आवाज मिलकर प्रेम की ऐसी हल्की सी आहट देती है जो सुनते ही चेहरे पर मुस्कान ले आए। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं जा रहा था मंदिर दर्शन करने, सोचा दर्शन के बाद रोज के कामकाज यानी दुकान खोलने के लिए दर्शन करने के बाद रास्ते में पुराना दोस्त मिल गया। कहने लगा बहुत दिन हुए कोई फिल्म देखने चली, मॉर्निंग शो में राज कपूर जी की फिल्म चल रही है आवारा देखी। लगता है कोई पुरानी बात इन्हें याद आ गई। और जरा बीच में हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगला गाना कौन सा होना चाहिए, कहीं आपकी प्लेलिस्ट में यही गाना तो नहीं जो हम सुनवाएंगे, जरा बूझिए ये भी। और अगले दो तीन गाने आप सुझाइए, हम आप जो सुझाएंगे गाना वही गाना आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन हाँ इबारत वाले शब्द होने चाहिए। एक श्रोता ने लिखा है कि वो मेरा मनमीत जो मुझे अनायास एक चांदनी रात में ट्रेन के सफर में मिल गया, एक रात के लिए मेरा हम सफर, ट्रेन की खिड़की यादों की खिड़की बनी, कितनी अनकही बातें जुबान पर आ गई और ट्रेन रुकी उसको जाना था मुझे भी, अब के बिछड़े कभी न मिलने को। चलिए अब बारी है गाने की, गाना सुनिए और बूझिए जरा फिर एक बार हीरो हीरोइन का नाम साथ में गीतकार का नाम, देखते हैं गीतकार का नाम सही बता पाते हैं आप या नहीं।

हंसते जख्म फिल्म का गाना था। हमने गीतकार का नाम पूछा था, बहुत जल्द जवाब आया श्रोताओं की ओर से। कैफी आजमी के बोलते मदन मोहन का संगीत था। कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है, कुछ अधूरी रह गई तमन्नाओं के जख्मों को नगमे अपनी मरहम से, नासूर बनने से रोकती है एक ऐसा ही गाना है। जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला। एक श्रोता ने लिखा है कि खो जाती सुधबुद जब खुलती यादों की है वो खिड़की, इस चांदनी रात की शीतलता अंतर मन को है छू।

होती वो हम सफर बना मन मीत जब चले हैं बन साथी जीवन के अनगिनत रंगों की परिभाषा तब है सचती। भाई जो आपने इबारत लिखी है उसके जो शब्द मैंने दिए थे उन शब्दों से गीत के बोल नहीं लिखे हैं, जरा वो शब्द टटोलिए और उसके गीत भी लिख डालिए। अभी हमने आपसे पूछा था कि कौन से वो गाने हैं जो आप सुनना चाहते हैं इस समय, तो कुछ श्रोताओं ने लिखा है और कुछ श्रोताओं ने नहीं लिखा है, तो हम जो गाने आप लिख रहे हैं वही गाना हम अगला सुनवाएंगे। उसके बाद कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं जरा फिल्म का नाम जरूर लिखिए। एक श्रोता की टिप्पणी है कि गीत सिर्फ कागज पर लिखे शब्द न रहकर सुरों की सांसें पाते हैं तो वो सीधे रूह में उतर जाते हैं। हिंदी के सुरीले और ललित गीतों का यही तो जादुई असर है। इनमें कहीं किसी की यादों की महक है, कहीं पहले मोहब्बत की मासूमियत है, तो कहीं तन्हाई का सुकून भरा सन्नाटा है। कभी कोई धुन दिल के सुनेपन को गुदगुदा जाती है, तो कभी कोई बंदिश आंखों में गुजरे जमाने की कोई खास तस्वीर सजा देती है। बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणी लिख रहे हैं आप, जरा छोटी छोटी टिप्पणी लिखिए ताकि बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां शामिल हो सके। अब जरा सुनिए ये गाना, आप सभी की ओर से गाना आया है, बताइए फिल्म का नाम और गीतकार संगीतकार का नाम भी। इबारत में कौन सा शब्द है जिसके जरिए ये गाना सुनवाया जा रहा है?

आशिक फिल्म का गाना था, मुकेश की आवाज थी, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत था और कुछ श्रोताओं ने बहुत सही जवाब दिया और जल्द जवाब दिया, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है और अभी भी कुछ श्रोता लिख रहे हैं। तो आप अब बताइए कि अगला गीत कौन सा लिया जाए, मतलब आपके जहन में कौन सा गीत आ रहा है, हमारी इबारत से शब्द चुनकर बताइएगा और तब तक हम आपकी टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने

0: लिखा है कि सुरीला सफर और विविध भारतीय सुनते सुनते कभी गर्म कभी ठंडी हवाओं के झोंकों से यादों की खिड़की खुल जाती है और मन पुरानी यादों में खो जाता है। याद आती है वो बहुत सारे प्रोग्राम के नाम लिखे हैं, भूले बिसरे गीत और ऐसे गीत जो जीवन से आज भी जुड़े हैं, जीने का सहारा बनते हैं, जैसे एक दिन बिक जाएगा, नदियां चले चले रे धारा वगैरह वगैरह। भाई भूले बिसरे गीत तो आज भी प्रसारित होता है 7 बजे, आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी फिल्मों के गीत न होते तो हम सभी संगीत प्रेमियों श्रोताओं का जीवन नीरस हो जाता। ये बात तो बिल्कुल सच है, हम सभी का जीवन नीरस हो जाता। एक श्रोता लिख रहे हैं कि ललित गीत केवल शब्द और सुरों का मेल नहीं बल्कि मन की अनकही भावनाओं की आवाज होते हैं। इनमें कुछ भाव ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द कह नहीं पाते मगर एक मधुर गीत उन्हें सहज ही दिल तक पहुंचा देता है। और दोस्तों यूं भी होता है कि जब हम एक गीत सुन रहे होते हैं तो मन में बहुत सारे विचारों का झोंका आता है, तो आप बताइए कि आपके मन में इस समय कौन से विचार आ रहे हैं और साथ में आप मन की बात को कब कब सुनते हैं, मतलब मन में जो बातें आपके भीतर आती हैं तो वो कैसे आप मानते हैं। कई बार मन बहुत कुछ कहता है जो आप नहीं करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मन में जो बात आती है लगता है इसे किसी तरह से हम पूरा कर लें। तो एक शब्द आज की इबारत में मन मीत है, उससे जुड़े हुए कौन से गाने हैं जरा बताते चलिएगा। फिलहाल प्रेम पुजारी फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, आपको बूझना है हीरो हीरोइन का नाम और गीतकार का नाम।
1: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

दोस्तों, हमने आपसे मनमीत शब्द से गाना पूछा है जिसमें मीत शब्द भी चलेगा, वो गाने आप बताइए। बहुत सारे श्रोता इबारत लिख रहे हैं लेकिन गाने के बोल फिल्म का नाम नहीं लिख रहे हैं।

प्रेम पुजारी फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में नीरज की रचना थी, सचिन देव बर्मन का संगीत था और हमने आपसे फिल्म का नाम भी पूछा था, गीतकार का नाम भी पूछा था। एक श्रोता ने लिखा है कि ललित गीतों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी गायकी होती है। ओपी नैयर, रवि जयदेव, एआर रहमान जैसे महान संगीतकारों ने इन ललित शब्दों को ऐसे मधुर धुनों में पिरोया जिससे गीत केवल सुनने तक सीमित नहीं रह जाते बल्कि दिल में असर करते हैं। बिल्कुल सही कहा है दोस्तों आपने। एक श्रोता लिख रहे हैं कि मन का अंतर्द्वंद्व और उसका बोलना मनुष्य के जीवन की एक बहुत ही स्वाभाविक लेकिन गहरी स्थिति है। जब हम कहते हैं कि मन कभी कभी बहुत बातें करता है तो इसका मतलब है कि हमारे भीतर विचारों का एक ऐसा ज्वार उठ रहा है जिसे शांत करना मुश्किल हो रहा है। जब बाहरी दुनिया में हमारे पास बात करने या व्यस्त रहने का कोई साधन नहीं होता तब मन खुद को व्यस्त रखने के लिए खुद से ही बातें करने लगता है। दोस्तों हम तो आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि कब आप अपने आप से बतियाते हैं, कब अपने मन से बतियाते हैं, कब वो लम्हा कौन सा होता है जब आप खुद से गुफ्तगू करते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि चांदनी रात में जब हम सफर साथ हो तो सिर्फ सफर रास्तों का नहीं होता, वो यादों का सफर बन जाता है। यादों की खिड़की से झांकता हर बीता पल कभी मुस्कान देता है, कभी आंखें नम कर जाता है। मनमीत के साथ तो जीवन के अनगिनत रंग और भी गहरे हो जाते हैं। और हमने आपसे पूछा था मनमीत शब्द से कौन सा गीत, बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, किसी ने अभिमान फिल्म का गाना लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है और हमारे पास ये गाना है, तो जरा सुनिए ये गाना और बताइए फिल्म का।

मृग तृष्णा फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी, संगीतकार थे शंभू सेन, और हमारे श्रोताओं ने इसका भी जवाब बिल्कुल सही दिया है और बहुत जल्द जवाब आया है श्रोताओं की ओर से। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि नगमों की दुनिया निराली होती है, कुछ नगमे तराने बन दिल की देहरी लांग ताऊ उम्र साथ चलते हैं, कुछ पुरानी अधूरी यादों को दस्तक दे जाती है, कुछ तन्हाई के आलम में हम सफर अतीत वर्तमान और आगामी अनंत काल तक एक सुखद एहसास प्रदान करती है। एक श्रोता ने लिखा है, आपके शब्द हमारी कविता, जीने के अनेक ढंग है, जीवन के अनगिनत रंग है, यादों की खिड़की खोल कर देखो, मेरे मन में चांदनी रात थी तुम भी साथ थे। एक श्रोता लिख रहे हैं कि चांदनी रात थी, खिड़की से झांकती चांद को निहारती, यादों के पन्ने को पलटने लगती है वो, हम सफर के साथ बिताए उस मीठे पल का एहसास मन को आनंदित कर देती है, जीवन में कई सुनहरे रंग खिल उठते हैं। एक श्रोता ने लिखा है, आज का सफर आपके साथ अपने खूबसूरत शब्दों की इबारत है, कितने सुंदर और भावात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, प्रत्येक शब्द के भाव और उनको संगीत के सुर में उतारना, हर भाव को जीवंत होते देखना है, जीवन के हर पड़ाव में इस तरह की बातें आम बात बन जाती हैं, कुछ यादें बन जाती हैं। और भी बहुत कुछ लिखा है, एक श्रोता ने लिखा है, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, और साथ साथ नगमे गाए थे हम सफर मेरे, और गानों के बोल लिख के इन्होंने माला पिरोई है। तो चलिए अब अगला गीत सुनते हैं और बूझिए जरा गीतकार संगीतकार का नाम, फिल्म है आखिरी दांव। गीतकार और संगीतकार का नाम आपको बताना है।

आखिरी दांव फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज। गीतकार का नाम हमने पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया, जल्द जवाब दिया। मजरूह सुल्तानपुरी मदन मोहन संगीतकार। और एक श्रोता ने लिखा है वाह वाह वाह जबरदस्त गीत। एक श्रोता ने लिखा वाह क्या गीत है, तेरी एक नजर की बात है। और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं मेरी हर खुशी तेरे दम से है, मेरी जिंदगी तेरे गम से है। और एक श्रोता ने लिखा है कि धर्म पत्नी अगर रूट जाए तो मुझे फिल्मी गीत गाकर मनाना पड़ता है। और एक श्रोता ने लिखा है नूतन बुआ जी शेखर जी मजरूह सुल्तानपुरी। भाई बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने के लिए लिखा है वाह वाह। तो अगर आपको लगता है कि अगला गीत भी आप करना चाहते हैं वाह वाह और आप सभी की पसंद का हो तो लिख डालिए अगला गीत कौन सा होना चाहिए, हम बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि चांदनी रात में जब कोई अपना हमसफर बनकर साथ चलता है तो यादों की खिड़की से बीते लम्हे भी मुस्कुराने लगते हैं। कभी मनमीत की मीठी यादें दिल को छू जाती हैं तो कभी हमसफर का साथ जीवन को और खूबसूरत बना देता है। इन्होंने आगे ये भी लिखा है किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चलने देना छोड़कर। भाई क्या बात है, गाने तो आप बेहतरीन चुन रहे हैं लेकिन बहुत सारे श्रोताओं ने ये गाना भी चुना है। तो देखिए आपने भी चुना था क्या ये गाना, जरा फिल्म का नाम बताइए और आवाजें किसकी है बूझिए जरा। बहुत ही आसान सवाल पूछा है, देखते हैं कितनी जल्दी जवाब आता है। अगले गीत की फरमाइश भी आप कर सकते हैं, अगला गीत कौन सा होना चाहिए, हम वही गाना बजाएंगे जो आप चाहेंगे सुनना।

पूर्णिमा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में गुलजार के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। श्रोताओं ने फिल्म का नाम सही बूझा, आवाजें भी सही बूझी। मुकेश की आवाज, लता मंगेशकर की आवाज, भला कौन नहीं पहचान सकता है। और अगले गाने के लिए हमने आपसे कहा था कि आप लिखिए कौन सा गाना हो सकता है। बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि अब आएगा चांदनी रात में ये वाला गाना, लेकिन और भी गानों के लिए जिक्र किया है श्रोताओं ने, तो हम चाहते हैं कि और जो गाने हैं उसका भी जिक्र कीजिए। ये गाना अब आप अक्सर सुनते रहते हैं विविध भारती से, हम वो गाना सुनवाएंगे जो आप अक्सर नहीं सुनते हैं, तो जरा और गाने भी याद कर लीजिए, शायद आप वाला गाना ही हम आपको सुनवा दें। एक श्रोता ने टिप्पणी लिखी है कि वाह, मैं सुरीला सफर का पोस्ट पढ़ने से अनुमान लगा रही थी कि आज अवश्य आ पाएंगी, और देखिए आपका आगमन हो गया और आपकी बात कहने का अंदाज एक अलग ही स्तर का मन मोह लेता है, और आप सभी का अंदाज हमारा मन मोह लेता है। आप सभी जिस अंदाज में टिप्पणियां लिखते हैं तो हम भी मोहित हो जाते हैं कि कैसे आप इतनी जल्द जवाब देते हैं, कैसे इतनी सारी इबारत लिख लेते हैं, हमें भी अचरज होता है और अच्छा भी लगता है। यही तो है आपका और विविध भारती का साथ, इसीलिए तो सुरीला है और हमेशा हमेशा के लिए है। एक श्रोता ने लिखा है कि चांदनी रात में जब कोई अपना हम सफर बनकर साथ चलता है तो यादों की खिड़की खुलती है, ये वाली लाइन मुझे लगता है बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि मन का मीत प्रेमी प्रियतम या साजन हो सकता है, वहीं दूसरी ओर दिलदार दोस्त या मित्र सखा हो सकता है। और बहुत सारे श्रोताओं ने आज इबारत लिखी है और हमने कोशिश की कि सभी की टिप्पणी आज हम शामिल करें। अब सुनिए ये गीत और जरा याद कीजिए, आपने सोचा था कि ये गाना आप सुन सकेंगे, फिल्म का नाम अगर बता सकते हैं तो बताइए। गीतकार और संगीतकार का नाम भी आपको ही बताना है, बूझिए फिल्म का नाम। गाने के बोल तो समझ गए होंगे ना अब तक, या अभी नहीं समझ में आया, इंतजार कीजिए अभी बोल आ ही जाएगा।

फिल्म का नाम दोस्तों हमने आपसे पूछा था। फिल्म थी मुक्ति, मुकेश की आवाज थी, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था। सभी श्रोताओं ने जानकारी बिल्कुल सही दी। हमें लगता है आप सभी की जानकारी बहुत समृद्ध है, इसी तरह से समृद्ध बना रहे। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा वाह वाह ये गाना तो बहुत दिनों बाद सुना, और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है वाह सुरीला सफर सुरीली प्रस्तुति। तो हम भी आपसे कह रहे हैं वाह सुरीली टिप्पणियां, और बड़े अच्छे अंदाज में आज आपने टिप्पणी भेजी है, इस बात के लिए सभी का शुक्रिया। अब आज का सुरीला सफर कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

दुनिया बहुत तेजी से बदलती चली जा रही है। एक जमाने में इंटरनेट इतना सुलभ नहीं था, आज इंटरनेट की स्पीड इतनी तेज है कि लोग अपने मोबाइल फोन्स पर तरह तरह का वीडियो कंटेंट भी देख सकते हैं और बहुत ही उन्नत किस्म के वीडियो गेम्स भी खेलते हैं। जो बुजुर्ग पीढ़ी है उसके लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं और तब सामने आना चाहिए युवा पीढ़ी को। हमें अपने परिवार और आस पड़ोस के बुजुर्गों को टेक्नोलॉजी सिखानी चाहिए। मुमकिन है कि हमारे आसपास के बुजुर्ग टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए तैयार न हों या फिर उसे अपनाने से डरते या सकुचाते हों। हमें आगे बढ़कर उन्हें टेक्नोलॉजी सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

0: गजब भयारे भाई हाय हाय हाय, केला गुरु को चूना लगाए, जनता को ज्योतिषी उल्लू बनाए, और दूध वाला दूध में पानी मिलाए।
1: जिसको ना झाड़ू पकड़ना भी आए, वो बेटा अपना ही झंडा उड़ाए। आदमी भी कैसा काजी है हाय, मौका मिले तो भगवान पेट खाए।
0: मौका मिले तो भगवान पेट खाए। हाय हाय हाय।

आम धारणा ये है कि मोबाइल फोन्स अमूमन युवा पीढ़ी या आगे की पीढ़ी के काम के उपकरण हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग रिटायर हो चुके हैं, जो उम्र के एक ऐसे दौर पर हैं जब उनके पास बहुत सारा खाली समय है, उनके लिए मोबाइल बहुत उपयोगी बन सकते हैं। बच्चे जब दूर देश चले गए हों, दूसरे शहरों में रह रहे हों, तो वीडियो कॉल करके उन्हें देखा जा सकता है, उनसे बातें की जा सकती हैं। सवाल ये है कि हम अपने बुजुर्गों को ये सब बताएं और रोज धीरज के साथ उन्हें सिखाएं। मुमकिन है कि एक हफ्ते, दो हफ्ते या एक महीने में वो इस टेक्नोलॉजी में माहिर हो जाएंगे और उसके बाद देखिएगा उनके चेहरे की चमक क्या कहती है।

हर चीज के दो पहलू होते हैं, उसी तरह टेक्नोलॉजी के भी दो पहलू हैं, एक अच्छा और एक बुरा। जहां एक तरफ युवा मोबाइल फोन और इंटरनेट की लत के शिकार होते चले जा रहे हैं, अपना जरूरत से ज्यादा वक्त वो इस स्क्रीन के सामने बिताते हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके संयमित इस्तेमाल से सबका भला हो सकता है। आज जहां किताबें बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदना

मुश्किल बनता जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए एक ही विषय की बहुत सारी मोटी मोटी किताबें लेकर यहाँ से वहाँ जाना मुश्किल हो सकता है, ऐसे में टेक्नोलॉजी काम आती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन उद्योग सहभागिता सम्मेलन विमर्श 2026 को संबोधित करते हुए ये बात कही।
1: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं, मैं कह सकता हूं कि वह अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे प्रधानमंत्री के विजन और लीडरशिप में हमने कई गेम चेंजिंग फैसले लिए हैं, चाहे वह पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट हो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, आईडेक्स हो, अदिति हो, या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए एलोकेशन का फैसला हो।
0: श्री सिंह ने डीआरडीओ तथा उद्योग के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
1: टीडीएफ के माध्यम से स्टार्टअप्स को ग्रांट्स दिए जा रहे हैं और अनेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुके हैं। आईडेक्स ने भी डिफेंस इनोवेशन के लिए एक नया इकोसिस्टम भी तैयार किया है, जहां स्टार्टअप्स हमारी वास्तविक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। अब डीआरडीओ और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन में साझेदारी हमें बढ़ानी हो।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संघर्षों और विरोधाभासों से जूझ रही दुनिया में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता उल्लेखनीय है। भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA के रजत जयंती समारोह में उन्होंने सर्वसम्मति से अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा को बड़ी उपलब्धि बताया। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हित तेजी से दुनिया भर से जुड़ रहे हैं।
2: इंडिया टुडे, भारत का संबंध आज कहीं अधिक व्यापक देशों और क्षेत्रों से है। हमारी जिम्मेदारियां और दुनिया की भारत से अपेक्षाएं दोनों

0: पड़ी हैं। भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। भारत की वैश्विक भूमिका बढ़ने के साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हमारी बौद्धिक भागीदारी को भी उसी गति से आगे बढ़ना होगा।
1: Our intellectual engagement with international affairs must keep pace.
2: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी के पुनरुद्वार के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय जल संसाधन सचिव और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव भी उपस्थित थे। इससे पहले इसी वर्ष जून में गृहमंत्री अमित शाह ने इस संबंध में इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि केशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना की 90% लागत केंद्र सरकार द्वारा जबकि शेष 10% लागत 6 भागीदार राज्यों द्वारा वहन की जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन में श्री यादव ने कहा कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, EPR विनियमों और मिशन लाइफ जैसी पहलें चक्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कदम है।
4: अंडर द EPR मैकेनिज्म,
5: EPR व्यवस्था के अंतर्गत EPR प्रमाण पत्रों का हस्तांतरण पुनर्चक्रणकर्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिससे क्षमता विस्तार, तकनीकी उन्नति और पुनर्चक्रण गतिविधियों में वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। ये सभी मिलकर संपूर्ण पुनर्चक्रण मूल्य श्रृंखला में रोजगार सृजन और आजीविका में योगदान करते हैं। विभिन्न EPR ढांचों के अंतर्गत 83,000 से अधिक उत्पादक और 4,802 पुनर्चक्रणकर्ता पंजीकृत हैं।
2: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। एक रिपोर्ट।
6: गांधीनगर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी कि EPR विनिमयों और मिशन लाइफ जैसे पहलों को भारत की चक्रीय अर्थव्यवस्था यात्रा के लिए महत्वपूर्ण बताया। ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणा पत्र, भारत यूरोपीय संघ सहकार में चक्रियता के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि चक्रियता की शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। समारोह को संबोधित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि विकास, पारिस्थितिकी, समृद्धि और स्थिरता को एक साथ आगे बढ़ना होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिनिश इनोवेशन फंड सिट्रा और गुजरात सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस दो दिवसीय मंच में AI के अनुप्रयोग, हरित ऊर्जा, टिकाऊ वित्त सुशासन और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र जैसे विषयों पर 4 पूर्ण सत्र और 16 विषयगत सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से कहा कि नए सदस्यों की नियुक्ति होने तक अर्ध न्यायिक निकायों के सेवानिवृत्त होने वाले पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल करीब एक महीने तक बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे कामकाज प्रभावित न हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी की उम्मीदवार होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के रात्रिभोज में कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अनुपस्थिति की आलोचना की। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में

0: भाजपा नेता और सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब भारत और राष्ट्रहित की बात आती है तो किसी भी प्रकार के मतभेद की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर साल 15 सितंबर को भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
1: इंजीनियर्स भारत के विकास की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। वे देश के जरूरी बुनियादी ढांचे को तैयार करने के साथ साथ नई तकनीकों और ज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। एम विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नई तकनीकों, दूरदर्शी योजना और व्यवहारिक समाधानों के जरिए देश के बुनियादी ढांचे के विकास में बड़ा योगदान दिया। आज जब भारत तेजी से तकनीकी विकास और बदलाव के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, तब इंजीनियर्स की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। ऋषु के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। प्रधानमंत्री ने डॉ एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि एम विश्वेश्वरैया एक इंजीनियरिंग प्रतिभा थे, जिनकी राष्ट्र निर्माण की दूरदृष्टि नागरिकों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।
2: महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला, जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदरपूर्वक नमन करता हूं।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने भी एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने इस साल जुलाई में इस नियम को अंतिम रूप दिया था। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए शत प्रतिशत आबादी तक पहुंचने वाला माध्यम है।
4: 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की स्थापना के साथ भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी दिन दूरदर्शन के पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। वर्ष 1982 में दिल्ली एशिया खेलों के दौरान रंगीन टेलीविजन की शुरुआत ने दूरदर्शन के प्रसारण और दर्शकों की संख्या को नई ऊंचाई दी। वर्तमान में दूरदर्शन के 35 सैटेलाइट चैनल और 66 स्टूडियो केंद्र हैं। ये 24 से अधिक भाषाओं और विभिन्न बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन ने रामायण, भारत, हम लोग, बुनियाद, चाणक्य, मालगुडी डेज, शक्तिमान, चित्रहार, फौजी सर्कस और उड़ान जैसे कई लोकप्रिय और यादगार धारावाहिक भी प्रसारित किए। आरजू के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुचेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता जारी की। एक रिपोर्ट।
5: राज्य के 15 जिलों के 88 प्रखंडों में करीब 49 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय दल के बिहार दौरे को लेकर उनकी गृहमंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है।
6: आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक टीम बनाने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री जी का फोन आया था कि हम लोग एक केंद्रीय टीम केंद्रीय मंत्री के स्तर पर बिहार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ।
5: आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। पहले मैच में रविवार को भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। भारत श्रृंखला में

0: 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 337 अंक गिरकर 74,445 पर आ गया, जबकि निफ्टी 130 अंक गिरकर 23,268 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुति कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये पहला गीत, आवाज लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है आकाशदीप। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

0: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों का गाया हुआ फिल्म का नाम है अमर ज्योति। इस गीत को पंडित भरत व्यास ने लिखा है और धुन बनाई है वसंत देसाई ने।
1: झन झन झन बाजे पायलिया कैसे आ

लगाते बनी मन चली छुप के छुपा के छुपी नजरें बचा के चुप चुप चली नयन नहीं दोनों पलक नहीं

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक

0: स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज है। फिल्म का नाम है चांद और सूरज। इसे शैलेंद्र ने लिखा है और धुन बनाई है सलील चौधरी ने।

आइए सुनते हैं खयाम साहब के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। गायिका है सुमन कल्याणपुर और फिल्म का नाम है मोहब्बत इसको कहते हैं।

0: बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब उसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रवि

0: ये आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था भीगी रात। इसे मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा था और धुन बनाई थी रोशन ने।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो फिल्म हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली। बस थोड़ी ही देर में

0: की सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: आरती श्रीवास्तव का
1: प्यार भरा
2: नमस्कार।
1: कहिए आरती, कैसी हो?
2: बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, क्योंकि चल रहा है गणेश उत्सव।
1: बिल्कुल, और हम खा रहे हैं मोदक। भाई घर घर में गणपति बप्पा के आगमन की जो तैयारी हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, और लोग अपने घर पर बुला रहे हैं, बाकायदा भोजन करवा रहे हैं और गणपति बप्पा को याद भी कर रहे हैं।
2: बिल्कुल, और जब अलग अलग घरों में जाओ ना, जो वो शोभा देखने को मिलती है ना, इतनी सुंदर झांकी सी सजा के रखते हैं गणपति बप्पा को, इतना सुंदर सजाया हुआ है, उनके चारों तरफ कहीं फूल हैं तो कहीं अलग अलग तरीके की उन्होंने सजावट करके रखी हुई है, बहुत अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम लोग हमें बुला रहे हैं और हम उनके घर जाते हैं तो देखते हैं कि इतने सुंदर तरीके से बप्पा को उन्होंने सजाया है, आसपास गुलाबी फूल, कहीं लाल फूल, कहीं पीले फूलों से सजावट की गई है, और आसपास वाद्य यंत्र भी रखे गए हैं। कई जगह मैंने देखा सितार रखा है, तानपुरा रखा है, इस तरह से भी जो है उस मंदिर को लोगों ने अपने घर में सजाया है।
2: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगता है देख के, एक सकारात्मक अपने अंदर आते ना, एक ऐसी भावना आती
1: बिल्कुल,
2: है
1: बिल्कुल।
2: कि चलो ये त्योहारों के दिन होते हैं ना, जब हम निकलते हैं तो वहां भी जो सड़कों पे भी जाइए तो वहां पर भी इतना अच्छा सब जगह जगह देखने को मिलता है कि सजावट है, दुकानें भी सजी हुई हैं, हर जगह बहुत अच्छा लगता है।
1: लोगों का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है, और कहते भी हैं कि जो गणेश जी हैं सिर्फ विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि ज्ञान और विवेक के प्रतीक भी हैं, तो लोगों में जो है उनका बड़ा ही एक महत्व है। हम कितना जैसे ही हम

0: हमारा कोई काम नहीं बनता, हम तुरंत गणपति बप्पा मोरिया को याद करने लगते हैं और कहते हैं कि हे गणेश देवता, ये जो भी विघ्न बाधाएं आ गई हैं उन्हें आप दूर कर दें और हमारे जीवन को सुचारू रूप से चला दें, है ना।
1: बिल्कुल,
0: तो हम यही कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के जरिए भी कि भाई जो ये खास दिन हम मना रहे हैं, हमारे जो बप्पा हैं हमारे जीवन के सभी विघ्न हर लें और खुशियों के रास्ते हमारे सभी श्रोताओं के, सभी सखियों और सखाओं के जीवन के खोल दें, ताकि हम अपनी जो राह है जहां जगह जगह पर हर्डल्स हमें दिखाई देती हैं वो न दिखाई दें और हम अपना रास्ता अच्छे तरीके से तय कर लें।
1: बिल्कुल, मीठा खाते खाते है ना।
0: हाँ बिल्कुल, मोदक के साथ सर। और एक सुरीला गीत भी सुन लेते हैं, लेकिन इससे पहले हमारे श्रोता तो जानना चाहेंगे ना आज आप क्या विषय लेकर आई,
1: कौन से विषय पे हमें बातें करनी है, ये भी जानना जरूरी है। तो आज हम लेके आए हैं जो विषय है वो है खत्म होती जा रही सहनशीलता।
0: ओहो,
1: किस तरीके से हम अपनी सहनशीलता को खत्म करते जा रहे हैं और हम उतावले हो रहे हैं हर चीज के लिए, तो इसके बारे में भी
0: हम तुरंत किसी चीज को पाना चाहते हैं ना। पहले सहन शक्ति होती थी हमारे अंदर और अभी ये हो गया है कि हमें किसी ने कुछ कह दिया है तो हम तुरंत उसका जवाब दे देते हैं। पहले सोचते थे, गुनते थे, मनन करते थे कि हम इसका जवाब देना भी है कि नहीं देना है,
1: जी।
0: है ना, शांत रहते थे, लेकिन अभी तुरंत जवाब देना सीख गए हैं
1: जी। तो और हम सिर्फ अभी मुंह से ही जवाब नहीं देते, हाथ पैर भी चलने लगते हैं।
0: हाँ, ये तो और भी गलत तरीका है। तो ये जो आपने कहा कि सहन शक्ति खत्म हो गई, इस पर वाकई हम चर्चा करेंगे और अपने श्रोताओं से भी चाहेंगे कि वो बताएं कि उनके जीवन में कितनी सहन शक्ति बची है।
1: बिल्कुल, वो अपने विचार हमारे साथ साझा करें। साथ ही हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत सुमिता घोष की, जो कि रंग सूत्र की संस्थापक हैं।
0: क्या बात है।
1: और आज हम मुहावरों की दुनिया में लेकर आए हैं कान भरना।
0: बहुत से लोगों का शौक होता है ये, आपको पता है ना कि लोग एक दूसरे के कान भरते रहते हैं। घरों में देख लीजिए, पड़ोस में देख लीजिए, कार्यालयों में देख लीजिए,
1: हर जगह
0: आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके लिए किसी दूसरे का कान भर रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: और सामने वाले का कान भी कच्चा होता है।
1: बिल्कुल, इसी के साथ में जुड़ा हुआ है, आपके कोई कान भर रहा है तो आप कान के कच्चे हैं, इसका मतलब आप जो बातों में आ रहे हैं
0: उन बातों में आ जाते हैं और उसे सच्चा मान लेते हैं।
1: बिल्कुल। और आज हम बात करने जा रहे हैं हल्की फुल्की बातों के अंतर्गत खाने की अतरंगी आदतों की।
0: जैसे
1: कि किसी किसी को शौक होता है ना कि जलेबी को सॉस में डुबो के खाने का।
0: ओहो, ये तो बड़ा
1: अजीब अजीब सच में मैंने देखा है, शौक होते हैं लोगों के। और इस तरीके की बातों पे हम बात करें, कोई हमारे जो श्रोता हैं, जो सखियां हैं, जो सखा हैं, क्या उनके अंदर भी इस तरीके की कोई आदत है कि उनको मीठे के साथ नमकीन को मिक्स करके खाना अच्छा लगता है, या कुछ इस तरीके से जैसे मैंने बताया जलेबी को सॉस में डुबा के खाना अच्छा लगता है।
0: अच्छा।
1: तो इस तरीके की अगर आदतें हैं आपके अंदर या आपके किसी जानने वाले के अंदर, तो आप हमारे साथ उसको साझा करिए।
0: हाँ बिल्कुल, एक अलग किस्म की ये आदतें हैं जो हर एक में नहीं होती और हर एक इस तरह का स्वाद लेना पसंद भी नहीं करता है
1: जी।
0: तो आप बताइएगा कि आपके घर में आप कोई व्यंजन बनाते हैं या किसी के घर जाते हैं या आपके घर में बच्चे ऐसा करते हो कि किसी चीज के साथ कोई ऐसी चीज मिला के खाते हैं, अजीब होती, कॉम्बिनेशन ही नहीं है उस चीज का, है ना। तो इस तरह की बातें हम चाहेंगे आज बहुत अच्छी तरीके से हम श्रोता के साथ सेलिब्रेट करेंगे। और अभी गीत सुन लें।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: आरती, ये गीत तो बहुत ही सुंदर था और बहुत कम सुनने में आया है। ये गीत
1: बहुत प्यारा लगता है ना।
0: हाँ। अच्छा एक बात बताओ आरती, अगर तुम्हारे घर पर किसी जरूरी फैसले पर सबकी राय ली जाए तो क्या मानती हो तुम, वो लोकतंत्र है?
1: बिल्कुल लोकतंत्र माना जाएगा।
0: माना जाएगा
1: मेरी नजर में तो माना जाएगा।
0: बिल्कुल, मतलब बात छोटी सी है लेकिन लोकतंत्र की जो भावना है हम समझते हैं यहीं से शुरू हो जाती है, है ना? सबकी बात सुनी जाए और फैसले में लोगों की भागीदारी भी हो, और यही वजह है कि हर साल हम 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाते हैं। और ये दिन हमें ये भी याद दिलाता है आरती कि लोकतंत्र केवल चुनाव और मतदान तक सीमित नहीं होता, ये समानता, स्वतंत्रता, भागीदारी, संवाद और जिम्मेदारी की भावना से भी जुड़ा होता है।
1: बिल्कुल, हम इसको एक उदाहरण देके समझा सकते हैं लोकतंत्र को।
0: हाँ?
1: बहुत छोटा सा उदाहरण है।
0: हाँ?
1: आप शायद हंस भी पड़े इस पर कि सोचिए कक्षा में पिकनिक के लिए दो जगहों के नाम सामने आए। एक बच्चा बोला मुझे पहली जगह पसंद है और दूसरा बोला मुझे तो दूसरी जगह पसंद है।
0: ठीक है,
1: अगर शिक्षक जो है जो पढ़ा रहा है वो बिना किसी की बात सुने खुद ही फैसला दे दे कि तो ये भागीदारी वाली प्रक्रिया तो नहीं कही जाएगी।
0: बिल्कुल,
1: कि नहीं ना हमने उनकी सुनी ना उनकी सुनी, हमने तो अपना फैसला लागू कर दिया।
0: हाँ?
1: तो लेकिन अगर सबकी राय सुनी जाए और विकल्पों पर चर्चा हो और फिर उचित तरीके से निर्णय लिया जाए तो ये लोकतांत्रिक सोच का एक छोटा

0: सा उदाहरण है। यानी सरल शब्दों में कहें तो मेरी आवाज महत्वपूर्ण है, लेकिन आपकी आवाज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
1: ये सबसे बड़ी बात है ना, कि हमारे विचार तो हमने थोप दिए किसी पर, लेकिन सामने वाले के विचारों को देखा भी नहीं। लेकिन अगर आपने दोनों विचारों का सम्मान किया, यही लोकतंत्र है।
0: बिल्कुल,
1: है ना। और मान लीजिए घर में आज तय होना है कि रात के खाने में क्या बनेगा, है ना, होता है ना भाई, आज क्या बनाना है, तो पापा कहते हैं भाई आज तो पूरी सब्जी खाने का मन है, और बच्चे कहते हैं नहीं नहीं नहीं हमें तो पिज्जा खाना है, हमें तो बर्गर खाना है, है ना, लेकिन मम्मी कहती है कि आज तो खिचड़ी बनेगी,
0: हो गया फैसला।
1: ऐसे में क्या होता है कि वो लोकतंत्र खत्म हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: और असंतोष घर में प्राप्त हो जाता है, है ना।
0: बिल्कुल,
1: तो
0: जी, और लोकतंत्र हमें सिखाता है कि असहमत होना गलत नहीं है। और गलत तब होता है जब हम दूसरे की बात सुनना ही बंद कर दें। तो लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि इसमें नागरिक केवल दर्शक नहीं होते, बल्कि व्यवस्था में भागीदार होते हैं। यानी कि मम्मी को सबकी बात सुननी चाहिए। हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, सवाल पूछते हैं, अपनी राय रखते हैं और समाज के बेहतर भविष्य के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं।
1: बिल्कुल, और साथ ही हमेशा ये भी याद रखना चाहिए आरजी हमें ये अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं, जिन्हें निभाते हुए लोकतंत्र का सम्मान किया जा सकता है। और अब मैं भी यहाँ सम्मान करूंगी लोकतंत्र का, आपसे पूछती हूँ कि एक अंतराल ले लें।
0: बिल्कुल, लिया जाए।

0: तो इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से हम स्वागत करते हैं
1: जी।
0: तो हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है, हमारे सखियों और सखाओं ने,
1: हमारे जो सखियां हैं, जो हमारे सखा लोग हैं, सभी कुछ बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं। तो एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में हुई थी। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र के महत्व को बढ़ावा देना, लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है और इसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है।
0: बिल्कुल, हमारे श्रोता ने लिखा है कि लोकतंत्र में जनता की सरकार जनता के द्वारा और जनता के हित के लिए बनाई जाती है और लोकतंत्र का यही एक मौलिक पहलू भी है। ऐसे में लोकतंत्र के परिवर्धन और संवर्धन का ये आज का अंतर्राष्ट्रीय दिवस खास मायने रखता है और इसीलिए इसे मनाया भी जाता है।
1: बिल्कुल, और साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र केवल मतदान का अधिकार नहीं बल्कि समानता, स्वतंत्रता, सहिष्णुता और अपनी बात कहने के अधिकार का सम्मान भी है। सच्चा लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब हम दूसरों के विचारों का सम्मान करते हुए अपने कर्तव्यों को भी ईमानदारी से निभाते हैं।
0: बिल्कुल, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2007 में एक प्रस्ताव पारित करके इस दिन की शुरुआत कर दी थी और इसका उद्देश्य दुनिया भर में लोकतंत्र के सिद्धांतों, मूल्यों और स्थिति की समीक्षा करना और इसे मजबूत करना है। यानी जब हर आवाज मायने रखती है तो लोकतंत्र बेहतर परिणाम देता है और ये खास आज के दिन मनाया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में हुई और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्र के महत्व को बढ़ावा देना, लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना और इसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया भी जाता है।
1: जी, तो इस समय लोकतंत्र क्या कहता है,
0: यही कि गीत सुन लिया जाए।
1: जी, बिल्कुल।

0: तो आरती, हमारी बहुत सारी सखियों ने, बहुत सारी महिलाओं ने ख्वाब को हकीकत का रंग भी दिया है।
1: बिल्कुल,
0: है ना। और उसी में एक नाम है सुमिता घोष का।
1: जी, तो कहते हैं ना कि किसी के पास हुनर होना बड़ी बात है, लेकिन उस हुनर को सही पहचान और सही अवसर मिलना उससे भी बड़ी बात है। हमारे देश के गांवों में सदियों से महिलाएं खूबसूरत कढ़ाई करती आई हैं, हाथ करके एक पर बुनाई करती आई हैं, कढ़ाई करती आई हैं और अपनी पारंपरिक कलाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाती आई हैं।
0: बिल्कुल आरती, सही कहा तुमने। लेकिन एक सवाल ये कि अक्सर इतने सुंदर काम को देखकर भी मन में आता है कि क्या इन हुनरमंद हाथों को उनके हुनर का उचित मूल्य मिल सकता है। बस इसी सवाल को अपने काम का आधार बनाया हमारी आज की सखी विशेष यानी सुमिता घोष ने।
1: जी, और सुमिता घोष का जन्म हुआ कोलकाता में और उन्होंने मुंबई से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने अमेरिका के एक विश्वविद्यालय से कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में मास्टर डिग्री की उन्होंने हासिल की। और सुमिता का असली विश्वविद्यालय था उनका अपना देश, यानी कि अपना ग्रामीण भारत।
0: कितनी बड़ी बात है ना।
1: जी,
0: और एक लंबे समय तक सुमिता ने ग्रामीण राजस्थान में एक ट्रस्ट के साथ काम किया और उनका काम ग्रामीण विकास, समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास और विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ काम था, है ना।
1: और इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, सच में जो ग्रामीण भारत को चुनते हैं, सच में वो कुछ कर गुजरने के लिए मन में पहले ही सोच के रखते
0: हैं, ठान लेते हैं। मैं बताऊं, मैं एक ऐसी महिला से मिली थी जो एनएसडीएन थी और उन्होंने

0: नागालैंड जाकर वहां के जो लोग थे उनको चुना कि मैं उनको एक्टिंग सिखाऊंगी।
1: अरे वाह।
0: जो वहां का जो ग्रामीण तबका था, जो अशिक्षित था, वहां जाकर उन्होंने एनएसडी पास आउट करने के बाद वहां स्थान चुना और वहां जाकर वो आज भी काम कर रही है।
1: बहुत बहुत बड़ी बात।
0: कितनी बड़ी बात है, जबकि हम एनएसडी से निकलकर सीधा मुंबई की शरण में आते
1: हैं
0: ना, और हम फिल्मों की तरफ आते हैं, लेकिन उन्होंने वो स्थान चुना जहां कोई जाना नहीं चाहता और उन लोगों की तरफ कोई देखना भी नहीं चाहता है, लेकिन उन्होंने वो स्थान चुना और वहां लोगों को कलाकारी से जोड़ा। तो ऐसे ही सुमिता घोष हैं, जो कि वो सोच रही थी कि कैसी संस्थाएं होनी चाहिए जो समाज में जो असमानताएं हैं और अन्याय है उसे कम करने में हमारी मदद कर सकती
1: है। बिल्कुल। और ये सब सोचते हुए उनके मन में एक विचार आकार लेने लगा था कि गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करना बहुत जरूरी है। किस तरह कारीगर और ग्राहक के बीच सीधा रिश्ता बनाया जाए, परंपरा को आधुनिक बाजार से कैसे जोड़ा जाए, यही विचार आगे चलकर रंग सूत्र बना। लेकिन विचार को हकीकत में बदलना आसान भी नहीं था।
0: बिल्कुल, इतना आसान तो नहीं होता है। जब भी कोई व्यवसाय शुरू करना हो तो सबसे पहले उसकी जो जरूरी चीज है वो क्या है? पैसा।
1: बिल्कुल,
0: पूंजी है ना। और सुमिता घोष को भी पूंजी की जरूरत थी, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने थी जो थी दान देने वाली संस्थाएं, और उन्हें इसलिए फंड नहीं करना चाहती थी क्योंकि रंगसूत्र एक चैरिटी नहीं बल्कि व्यवसाय के रूप में काम करने वाला सामाजिक उद्यम था।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा बैंक भी ऋण देने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि पर्याप्त व्यवसायिक अनुभव और ऋण के लिए जरूरी चीजें उपलब्ध नहीं थी उनके पास। सुमिता के मन में यही बात चल रही थी कि अब क्या किया जाए। तभी उन्हें एक ख्याल आया, अगर इन्हीं कारीगरों के हुनर से ये संस्था बनेगी तो क्यों ना वो इसके मालिक भी बन जाए।
0: कितनी बड़ी बात उनके दिमाग में आई, जो कि हर एक के दिमाग में नहीं आती है।
1: अपना तो सब सोचते हैं कि हम अपना व्यवसाय खड़ा कर लें, लेकिन जो हमारे साथ काम करने वाले हैं उनको उनके लिए सोचकर इतनी बड़ी बात सोचना बहुत बड़ी।
0: बिल्कुल। और कि वही मालिक भी बने, हम क्या सोचते हैं काम तो हम शुरू कर दें, मालिक भी हम बन जाए।
1: जी
0: है ना, हमारे विचार में यही रहता है ना ज्यादातर कि मालिकाना हक जो है हम पाना चाहते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि राजस्थान के लगभग 1000 कारीगरों ने आगे बढ़कर कंपनी में 1-1000 रूपये का निवेश किया, यानी शुरुआत हुई कारीगरों की अपनी भागीदारी से। और ये केवल पैसा जुटाने का तरीका नहीं था बल्कि एक सोच थी कि कारीगर सिर्फ काम करने वाला व्यक्ति नहीं है बल्कि व्यवसाय का भागीदार भी हो सकता है।
1: बिल्कुल, एक बहुत अच्छी शुरुआत करी। और यही रंगसूत्र की सबसे खास पहचान बनी। रंगसूत्र की यात्रा पहले 2004 में एक उत्पादक कंपनी के रूप में शुरू हुई और फिर 2006 को क्राफ्ट्स इंडिया के रूप में पंजीकृत हुई। और रंगसूत्र का उद्देश्य था कि ग्रामीण कारीगरों को नियमित काम और टिकाऊ आजीविका से जोड़ना, साथ ही उनके पारंपरिक कौशल को भारत और दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना।
0: सबसे बड़ी बात ये थी। और यहाँ बात केवल आरती हस्तशिल्प बेचने की नहीं थी, बात थी हुनर, बाजार, सम्मान और स्वामित्व, इन सभी को एक साथ लाने। और रंगसूत्र से जुड़े कार्यक्रमों में बड़ी संख्या महिलाओं की थी, तो नीति आयोग के अनुसार रंगसूत्र में 2000 से अधिक कारीगर शेयर होल्डर रहे और लगभग 80% कारीगर महिलाएं हैं। तो कारीगरों की भूमिका सह मालिक, सह निर्माता, प्रबंधक और बोर्ड सदस्य के रूप में भी वहां पर रही है।
1: बिल्कुल। और यानी जो महिला है उनके हाथ में सिर्फ सुई और धागा नहीं आया बल्कि साथ में उनके हाथ में निर्णय लेने की ताकत भी आई।
0: बिल्कुल।
1: और सुमिता घोष के रंगसूत्र पर लिखे एक लेख में एक महिला कारीगर के अनुभव को बताया गया है कि कंपनी के शेयर उसके नाम की उन संपत्तियों में शामिल थे जिन पर उसका अपना अधिकार था। अपनी कमाई से उसके पास अपने बैंक खाते और खर्च के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी आई थी।
0: और यही वो बदलाव था जिसे सुमिता घोष सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानती थी। रंगसूत्र ने पारंपरिक कढ़ाई, हथकरघा और अन्य हस्तशिल्प कौशल को आधुनिक बाजार की जरूरतों से जोड़ने का काम किया और इसका उद्देश्य था ग्रामीण कारीगर केवल स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं रहे बल्कि बड़े ग्राहकों और वैश्विक बाजारों तक इनकी पहुंच बन सके।
1: बिल्कुल। और रंगसूत्र ने बड़े बाजार भागीदारों के साथ में काम किया है। इस तरह एक गांव में बैठा कारीगर अपने हाथों से तैयार किए गए उत्पाद को दुनिया के दूसरे हिस्से के ग्राहक तक पहुंचते हुए देख सकता था। सुमिता घोष के काम को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली। 2016 में उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें ग्रामीण कारीगरों और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े उनके कामों के लिए मिला था।
0: बिल्कुल सही कहा। तो एक तरफ गांव की कच्ची गलियां, दूसरी तरफ दुनिया का बड़ा बाजार, इन दोनों के बीच एक पुल बनाने की जो कोशिश, या यूं कहें बहुत बड़ी कोशिश, बहुत बड़ा काम सुमिता घोष ने किया, उस पुल का नाम क्या है?
1: रंगसूत्र।
0: और सुनीता घोष ने साबित किया कि अगर किसी महिला के हाथ में हुनर है तो उसे केवल काम नहीं साथ

0: में काम का उचित मूल्य, अपनी पहचान और अपने फैसलों की ताकत भी मिलनी चाहिए।
1: बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अगर आप किसी हुनर, आपके अंदर कोई हुनर है तो उसको तराशना बहुत जरूरी है, है ना। और उसको तराश के जब आप अपने लिए उसको उपयोग करते हैं ना, तो अपना ही नहीं, साथ में अपने परिवार का, अपने साथ में जितने भी जुड़े हुए लोग हैं या आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, उन सबका भी भला करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और ग्रामीण तबकों में क्या होता है आरती, महिलाएं एक साथ समूह में इकट्ठी होकर वो लघु उद्योग, लघु कुटीर उद्योग जिसे हम कहते हैं, शुरू करती हैं छोटे छोटे, और उनमें अलग अलग चीजें बनाती हैं, फिर वो सब मिलकर अपना घर भी चलाती हैं। तो इस तरह के भी जो है कुटीर उद्योग गांवों की महिलाएं खासतौर से, लेकिन उनको एक बड़ा व्यक्ति ऐसा मिल जाए, बड़ी सोच वाला, जो उन सबको इकट्ठा करके इस तरह का एक बहुत बड़ा
1: एक मालिकाना हक भी दे दे साथ में।
0: इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हमने देखी है जो 70-80 महिलाओं का समूह इकट्ठा करके गृह उद्योग धंधे शुरू करती हैं, और वो वहां पर सभी को जो है अपने अपने तरीके से मालिकाना हक भी मिल जाता है।
1: और ये काम करने से उनके अंदर भी एक आत्मविश्वास आता है ना कि हम भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें शहर जाना पड़े कुछ काम करने के लिए।
0: हम तबके में रहकर भी
1: हम अपने घर में रहकर, अपने गांव में रहकर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं,
0: और आर्थिक रूप से मजबूत हो जाती है। सबसे बड़ी बात है स्त्री का आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए। और अभी क्या जरूरी है,
1: अंतराल।

0: हाँ तो आरती, पता है कभी कभी हम बहुत बेचैन होते हैं ना, तो कागज के दिल पे कुछ ना कुछ लिखने लग जाते हैं.
1: हाँ बिल्कुल.
0: और इसी चक्कर में हम साहित्यकार भी बन जाते हैं, लेखक बन जाते हैं, कवि बन जाते हैं.
1: जी.
0: और कहते भी हैं कई बार आपका मन बहुत बेचैन है, मन में बहुत सारी बातें हैं, तो उन्हें कागज पर लिख दो, एक डायरी मेंटेन करो. कहा जाता है ना कि डायरी लिखो, ताकि जो सहन शक्ति जवाब दे गई है वो आपकी कलम से आपकी किताब में एक संकलन के रूप में
1: आ जाएगी. और वैसे भी कहते हैं ना, अगर आप लिख लेते हैं ना कोई भी चीज, तो आपका गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाता है, आप थोड़े शांत हो जाते हैं.
0: बिल्कुल.
1: तो बहुत जरूरी, लिखना तो वैसे भी बहुत अच्छा है,
0: बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर आप लेखक नहीं भी हैं, तो अपनी सहनशीलता को बनाए रखने के लिए लिखने का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए, ताकि जैसे ही गुस्सा आया, लगा कि कुछ बोलने वाली हूँ, तुरंत कागज पेन निकाला और उस गुस्से को कागज के द्वारा अंकित कर दो, तो एक बार कागज पे वो गुस्सा उतर जाएगा.
1: बिल्कुल. आप बाद में से इरेज कर सकते हैं,
0: उसे मिटा सकते हैं, आप मिटा सकते हैं, फाड़ सकते हैं कागज को, कि आपका गुस्सा निकल गया, लेकिन मन आपका शांत हो जाता है. तो इसीलिए कहते भी हैं कि धैर्य रखिए, धैर्य का फल क्योंकि मीठा होता है. और आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में क्या है कि धैर्य रखने का जो कड़ा इम्तिहान है, एक तरह से ये बहुत बड़ी परीक्षा हो जाती है. अगर किसी से हमारी लड़ाई हो गई, किसी ने हमारी बात काट दी, तो हम गुस्से में आ जाते हैं. सड़क पर ट्रैफिक मिल गया तो हम परेशान हो जाते हैं. मोबाइल में हम इतना कुछ लिखते हैं, अगर हमें लाइक नहीं मिले पर्याप्त, किसी ने असहमति जता दी, किसी ने काट कर दी, किसी ने आपको पसंद नहीं किया, तो हम गुस्से से भनभना जाते हैं और लगते हैं क्या जो बात कर देंगे, और बात गर्मा गर्म स्थिति तक पहुंच भी जाती है.
1: बिल्कुल. अक्सर ट्रैफिक में तो अक्सर ही ऐसा होता है ना कि लोग एकदम से लड़ पड़ते हैं कि क्यों आप आगे निकल, अगर कोई आगे निकल जाए, कोई पीछे रह जा रहा है, तो वो लड़ रहे हैं. मतलब कोई भी किसी भी बात पे हम लड़,
0: मतलब हम अपने वाहन में बैठे बैठे भी गुस्सा निकाल देते हैं और इतने गुस्से में आ जाते हैं कि कई बार हम इस तरह की पढ़ भी रही हैं स्थितियां कि ट्रेनों में दो लोगों के बीच में तकरार हुई और बात कहां से कहां पहुंच गई, यानी सहनशीलता की कमी होना.
1: बिल्कुल. और सहनशीलता का मतलब हर बात को चुपचाप सह लेना भी नहीं होता है. और जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ हों, उस समय आप थोड़ा सा धैर्य अगर हम बना के रखते हैं ना, और दूसरों के विचार को सुनते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए. कोई भी बात हो, तुरंत प्रतिक्रिया देने से ये होता है ना कि हम गुस्से में होते हैं उस समय, तो उस समय हमें पता नहीं होता कि हम क्या कह रहे हैं.
0: बिल्कुल.
1: तो हम सिर्फ गुस्से में अपनी गुस्सा निकाल रहे होते हैं, तो उस वक्त हम कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकते हैं, तो रिश्ते भी उससे खराब हो सकते हैं, दोस्ती टूट सकती है. तो इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए कि हम जो भी सोच
0: समझ, इसे तोल मोल की बोल कहा जाता है ना. और आज की जो टेक्नो समय जो आ गया है, इसमें क्या हो गया आरती, की हमें हर चीज तुरंत पाने की आदत हो गई. एक क्लिक में हमें सारी चीजें मिल जाती है, सामान हुआ, कुछ भी कुछ ही सेकंड से हमें मिल जाता है. एक समय होता था जब हमें सोचना पड़ता था कि हमें जाना है, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, सामान लाना पड़ेगा. अब बस केवल एक क्लिक करने की जरूरत होती है और सामान आपके घर पर आ जाता है.
1: पांच मिनट का अगर सामान हमारे पास 5 मिनट में नहीं पहुंचा, तो एकदम से हम गुस्से में आ जाते हैं. फिर हम उसको फिर चिल्लाने लगते हैं जो सामान लेकर आया, कि 5 मिनट से 1 मिनट कैसे ज्यादा हो गया,
0: ज्यादा कैसे आपने कर दिया. सोचिए हमारी सहन शक्ति कितना जवाब दे गई है. तो ये जो तनाव है, काम का जो दबाव है, प्रतिस्पर्धा है, और ये जो रोज की दिनचर्या में इतनी व्यस्तता है, हमारी झुंझलाहट को और हमारी स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रही है.
1: बिल्कुल. और जरा सोच कर देखिए, जब कोई हमारे संदेश का तुरंत जवाब नहीं देता है, तो मन में पहला विचार क्या आता है कि आखिर आया क्यों नहीं जवाब,
0: क्या
1: लिखा था, क्यों नहीं आया उसका जवाब. शायद मुझे जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है. हम अक्सर जल्दबाजी में पूरी बात जाने बिना नतीजे पर पहुंच जाते हैं, और यहीं से गलतफहमी

0: हो जाती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। हो सकता है आपने कोई सवाल पूछा और सामने वाले के पास टाइम नहीं हो, या वो उस वक्त यात्रा में हो या परेशानी में हो, जवाब नहीं दे पाया हो, हमने उसका तुरंत फुरंत अपने तरीके से उत्तर निकाला और फटाफट उसे अपना ही जवाब दे डाला। और
0: या हो सकता है वो नहीं देना चाह रहा उस समय,
1: ये भी हो
0: कुछ सोचना चाह रहा हो, समझना चाह रहा हो, या उसके बारे में पड़ताल करना चाहता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी स्थिति हो सकती है। तो सहनशीलता की जो कमी है वो उसका असर हमारे

0: लेकिन असहमति को व्यक्तिगत विरोध मान लेना रिश्तों और सामाजिक संवाद दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। कि असहमति अगर कोई हमसे असहमत है तो हमें लगता है कि वो हमारे विरोध में है, हम उसके विचार को नहीं जानना चाहते, वो किस तरह से क्या सोच रहा है वो उसको नहीं जानना चाहते, बस हम सोचते हैं कि ये हमारे विरुद्ध है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और हम उसका सम्मान भी नहीं करना चाहते कि उसके विचारों का हम सम्मान करें। अगर वो हमारे विरुद्ध कोई बात कह भी रहा है तो पहले समझे कि वो क्यों कह रहा है।
0: सबका अपना अपना नजरिया
1: विचार हो सकता है, नजरिया हो सकता है आपके प्रति, और सहनशीलता को बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके लिए ये जरूरी है कि हम धैर्य रखें, धैर्यपूर्वक दूसरे को सम्मान दें, सुने, दूसरे व्यक्ति को अपनी बात पूरी करने का मौका दें और गुस्से में तुरंत जवाब नहीं दें, कुछ देर रुकें, सोचें, दूसरे की सोच को समझें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सामने वाला गलत ही हो और हम ही सही हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत ही जरूरी बात ये भी है कि हमें छोटी छोटी बातों को जाने देना सीखना होगा, हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता, और कई बार हमारी चिड़चिड़ाहट हमारे जो सामने है उसके सामने वाले की गलती से ज्यादा हमारी अपनी थकान और तनाव का परिणाम होती है जो हम चिड़चिड़ा रहे होते हैं इस समय, तो हम अक्सर सहनशीलता को कमजोरी मान बैठते हैं, जो बिल्कुल गलत सोच है।
1: बिल्कुल, हमें लगता है आक्रामक रूप बनाए रखना ही आज के जमाने में बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं होता। आपकी सहनशीलता बहुत बहुत मायने रखती है आपके लिए,
0: एक अलग पहचान बनाती है कि इतना सब सामने वाला इतना गुस्सा हो रहा है, इतना चिल्ला रहा है ना, लेकिन आप एकदम शांत खड़े,
1: आपने अपनी सहनशीलता को बनाए रखा है, कितनी बड़ी बात है, इसे कमजोरी नहीं समझना चाहिए। हम समझते हैं कि अरे सामने वाला कितना कमजोर है, देखो इतना सुनने के बाद ही चुप बैठा रहा, मैं होती तो ऐसा कर देती, है ना। ये जो
0: चुप बैठना है सबसे बड़ी ताकत,
1: बहुत बड़ी, और सामने वाले को भी हिलाकर रख देती है, है ना, आपकी चुप्पी। तो सहनशीलता का मतलब कमजोर होना बिल्कुल नहीं है, और देखा जाए तो अपने गुस्से और भावनाओं को नियंत्रण रखें, अपने आप अपने भीतर एक बहुत बड़ी ताकत महसूस करेंगे। इसके अलावा हम दूसरे को धैर्य से सुने, रिश्तों को समझें और कम बोलें, सोच समझकर बोलें तो विवाद भी कम होगा, और जब हम किसी की असहमति का सम्मान करेंगे तो लोगों में हमारा संवाद भी मजबूत होता है।
0: बिल्कुल, और हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर मतभेद को विवाद बनाना भी जरूरी नहीं है, और हर परिस्थिति को अपने अनुसार बदलना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी थोड़ा ठहर जाना, और सबसे जो कहते हैं ना सबसे बड़ा समझदारी वाला कदम होता है
1: वो ये होता है,
0: तो थोड़ा रुक जाइए, सोचिए, थोड़ा समझिए, और दूसरे को भी समझने की कोशिश करिए कि वो अगर ऐसा व्यवहार कर रहा है तो उसके पीछे कोई कारण है, क्या है, तो उसके बिना आप एकदम से प्रतिक्रिया मत दीजिए,
1: मत दें, और स्पेस दें खुद को भी और दूसरे के विचारों को भी, ताकि सोचने समझने का मौका मिले। एक श्रोता लिखते हैं कि सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि भीतर की शक्ति है, ये हमें सिखाती है कि हर उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं होता, कुछ उत्तर स्वयं समय दे देता है, सहन करने की अपनी गरिमा है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कुछ रिश्ते खामोशी से बच जाते हैं और कुछ सच वक्त के साथ सामने भी आ जाते हैं।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता जो लिखते हैं कि सहनशीलता का मतलब हर बात सहना नहीं बल्कि हर बात पर रिश्ता को तोड़ना नहीं होता है, कुछ बातों को समझकर कुछ को मुस्कुराकर छोड़ देना ही शायद रिश्तों की सबसे खूबसूरत समझदारी है।
1: और हमारी एक श्रोता ने बहुत सुंदर कविता लिखी है हमारे आज के जो भी सेगमेंट है से उन पर, कि मंदाकिनी जी की मधुर आवाज, आरती जी का साथ, सखी सहेली सजाए हर दिन नई बात, लोकतंत्र का संदेश, सहनशीलता की पुकार, सुमिता घोष संग रंग सूत्र की सुंदर बहार, कान भरना मुहावरे की दुनिया का ज्ञान, खाने की अतरंगी आदतों से मुस्कान, विविध भारती की ये प्यारी सी महफिल, मंदाकिनी जी आरती जी बनाए हर पल दिलकश मंजिल।
0: बहुत अच्छा लिखा है। तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जीवन में कोई भी निर्णय लेते समय सहनशीलता की बड़ी जरूरत होती है, मगर आज के युग में जो चीज सबसे ज्यादा इंसानों के अंदर से खोती जा रही है वो है सहनशीलता का गुण। आक्रामकता को इंसान अपना गुण मानने लगा है, जीवन में आक्रामकता पूरा धागा ही उलझा देती है, ये इंसान सोचता ही नहीं। सहनशील और धीर गंभीर इंसान की छवि अलग ही दिखती है, सो सहनशील बनिए और जीवन को सुगम बनाइए।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि जहां सहनशीलता है वहां प्रेम, सम्मान और रिश्तों की गर्माहट भी बची हुई है, वरना आज की तेज रफ्तार जिंदगी में इंसान के पास सब कुछ है, बस ठहर कर सुनने और समझने का धैर्य कम होता जा रहा है। छोटी सी बात पर नाराजगी, जरा सी असहमति पर रिश्तों में दूरी और अपनी बात मनवाने की जिद सहनशीलता को धीरे धीरे पीछे छोड़ रही है। सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि रिश्तों को बचाए रखने की एक बहुत बड़ी ताकत है।
0: बिल्कुल। एक हमारी श्रोता जो लिखते हैं कि खत्म होती जा रही सहनशीलता का कारण मानसिक तनाव है, जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लगातार देखने को मिल रहा है। इसका मुख्य कारण मानसिक दबाव और धैर्य की कमी होती है। इसमें सोशल मीडिया का भी काफी प्रभाव है। इसके द्वारा तुरंत मिल रही जानकारी या मिल रहे मैसेज ने पुराने जमाने के खत लिखने के धैर्य भरे दौर को खत्म कर दिया है। मतलब हम सोच समझ के लिखते रहे दो दो तीन तीन दिन

0: तो आरती, जब हम बात कर रहे हैं आदतों की कि हमारे अंदर सहनशीलता का होना कितना जरूरी है, वहीं कुछ आदतें ऐसी भी हैं जो हमारी हमें हंसी का पात्र भी बना देती हैं, है ना। अभी बताऊं तुम्हें, आज जब मैं सुबह चाय के साथ बिस्किट खाती हूँ हमेशा, आज मैंने सोचा कि नमक का पराठा खा लूं और चाय में डुबो कर खा लूं, है ना, तो कैसा लगेगा। और बाद में मुझे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो पाई, क्योंकि ये कैसा कॉम्बिनेशन मैं सोच रही थी, ये खाने का भला कोई ऐसे खाता है क्या।
1: लेकिन सबके मजा आता है।
0: तुमने खा के देखा है इसको?
1: बिल्कुल मैंने खाया है।
0: ठीक है।
1: और मतलब हर व्यक्ति का खाने का अंदाज अपना अपना होता है। किसी को गरम गरम रोटी के साथ ठंडी ठंडी दही पसंद होती है, तो कोई चाय के साथ नमकीन की जगह बिस्किट को चाय में डुबोकर खाने का मजा लेता है। कुछ आदतें इतनी अनोखी होती हैं कि सामने वाला देखकर बस यही कहता है कि भला ऐसे भी कोई खाता है। जैसे कि मैं खाती हूँ कैसे, जलेबी को सॉस में
0: डुबोकर। और मैंने देखा हमारी एक नून है, वो पहले दाल पी जाती है और उसके बाद जो चावल है ना वो सूखे खाती है, तो हम उन्हें हंसते थे कि अब आप क्या गोल गोल लौटने वाली हैं कि दाल चावल मिल जाएगा आपका। वो ऐसे ही खाती थी, पहले दाल का कटोरा जो लिया और दाल पूरी पी ली, उसके बाद वो सूखे चावल।

0: जो सफेद चावल हम उबाल के रखते हैं उन्हें खाती थी। अच्छा। तो ये भी एक अजीब ही किस्म की आदत है जिसे हम कई बार जब देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। बच्चों में तो ऐसी आदतें हमें मिल जाती हैं कि सब्जी अलग रोटी अलग दाल को चावल के साथ मिलाने में वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। कुछ लोगों को मैंने जैसा तुमने कहा मीठी जलेबी और सॉस के साथ खाती हो तुम, और कुछ लोग खाने को बहुत धीरे धीरे चबाकर खाते हैं, जबकि कुछ लोग फटाफट फटाफट फटाफट फटाफट एक रोटी को दो ही उसमें खा लेते हैं टुकड़ों में। तो ये खाने के जो तरीके हैं हालांकि हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए सबसे बड़ी बात कि इसका भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम कुछ भी खा रहे हो लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, जैसे कि हमारे एक श्रोता है जो लिखती है कि आज खाने की अतरंगी आदतें देखकर मुझे भी कुछ याद आ गया। मैं जब छोटी थी तब पापा जी के ट्रांसफर के कारण हम लोग दूसरे शहर में आए और जिस घर में रहने के लिए आए वहां के मकान मालिक के बच्चों को हमने देखा कि वो चावल के साथ दूध का पाउडर खाते थे। उनको देखकर हमें भी शौक चढ़ा पर हम लोग नहीं खा पाए। सच में तो बहुत ही अलग चीज है।
0: बिल्कुल सही कहा। वही एक श्रोता लिखती है कि खाने की आदत भाई आदतें सभी की अच्छी हो ऐसा नहीं हो सकता, और यदि है तो फिर कहने ही क्या। लेकिन अतरंगी शब्द या ये तो कार्यक्रम से स्पष्ट हो सकता है कि भोजन सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं बल्कि हमारे मूड दिमाग और विज्ञान से गहराई से भी जुड़ा है। भावना और मूड का असर खाने की तीव्र इच्छा अक्सर तब होती है जब हम तनाव में होते हैं या हमें किसी अपने की याद आती है। कई बार खाने के तुरंत बाद घबराहट होती है, बेचैनी महसूस होती है क्योंकि हमारा पेट हमारे दिमाग से सीधे तौर पर जुड़ा होता है। अगर नाक बंद हो तो हमें खाने का असली स्वाद पता ही नहीं चलता, और 80% हिस्सा हमारी सूंघने की क्षमता पर भी निर्भर करता है। और अचानक कभी कभी किसी खास चीज को देखने से भोजन से अरुचि हो जाती है या हमें कह जैसे उल्टी महसूस होने लगती है। तो जब तक आपकी तीव्र इच्छा नहीं हो आप कोई भी चीज नहीं खाएं, ये ध्यान रखिए।
1: जी, और एक हमारी सखी हैं जो लिखते हैं कि सखियों कभी कभी हरी मूंग की दाल वाली खिचड़ी में गुड़ डालकर खाया है कभी, बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा,
1: तो इन्होंने यानी खिचड़ी में गुड़ डाल के खाया। तो ये भी हमें करना चाहिए ट्राई इसका मतलब। और हमारे साथी जो लिखते हैं कि खाने की अतरंगी आदतें, भाई आदतें तो सभी अच्छी ही हों ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन यदि है तो फिर कहना ही क्या, लेकिन अतरंगी शब्द है या अतरंगी ये इन्होंने कार्यक्रम में स्पष्ट होगा तो अब इनको शायद स्पष्ट हो गया होगा।
0: वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे घर वालों की आदत है कि कटोरे में ही दाल सब्जी को मिला के मिक्स करके खाते हैं, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर मेरे घर वालों को लगता है कि जो मेरे घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको कि खाना खाने से इससे स्वादिष्ट लगता है, मतलब एक ही कटोरे में दाल चावल मिक्स करके खाया जाए, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे ही मेरे घर वालों की आदत है समोसे में सब्जी को पूरी तरीके से मिक्स करके खाने की, ये भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और लोग कहते हैं कि एक बार खाकर तो देखो, पर मैं इसे आज तक नहीं खा पाई। इन दोनों ही तरीकों को मैं कभी भी नहीं मतलब ये इसको स्वीकार ही नहीं कर पाए हैं कि कभी दाल भात को साथ नहीं खाया इन्होंने एक कटोरे में लेकर, और ना समोसा खा पाए हैं।
1: अच्छा, तो होता है ना कुछ अतरंगी आदतें ऐसी होती है ना कि समझ नहीं आता कि ये ऐसी क्यों होती है, मतलब इस तरह से हम कैसे खा लेते हैं। दूसरे को जब हम खाते देखते हैं ना तो लगता है कि कैसे खा रहा है इस तरीके से।
0: हाँ, एक लिखते हैं कि हमें कभी कभी बूंदी में सेव मिलाकर खाना अच्छा लगता है। हाँ, ये तो होता है। हाँ, बूंदी और जो भुजिया जिसे हम नमकीन भुजिया उसे मिलाकर लोग खाना पसंद करते हैं, लेकिन हर एक को वो भी पसंद नहीं आता है।
1: बिल्कुल, सबके अपनी अपनी आदतें अलग अलग तरीके से होती हैं।
0: हाँ, एक श्रोता लिखते हैं कि हल्की फुल्की आदतें, अतरंगी खाना खाने की आदत, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि बड़े अलग तरीके से खाना खाते हैं। और जैसे एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे कुछ याद आ गया, मैं जब छोटी थी तब पापा जी के ट्रांसफर के कारण हम लोग दूसरे शहर में आए और जिस घर में रहने आए वहां के मकान मालिक के बच्चे को हमने देखा कि वो, अच्छा अभी तुमने बताया कि चावल के साथ वो दूध अमूल दूध इस्तेमाल करके खा रहा था, तो ये देखकर उन्हें बड़ी हंसी आई, उन्होंने इसको खा के देखा लेकिन उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और एक लिखते हैं कि मुझे चाय के साथ कुल्फी चूसना बेहद पसंद है।
1: अरे भैया, चाय के साथ कुल्फी, सर्दी गर्म नहीं होता है, बिल्कुल अलग है।
0: हाँ, वैसे मुझे भी एक साथी मिले और उन्होंने कहा कि अभी कॉफी पी है, चलिए अब जो है हम आइसक्रीम खा लेते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद उन्होंने कहा कि चलिए अब गर्म गर्म दूध पी लेते हैं। मैंने कहा भाई ये कैसी आदत है आपकी, लेकिन वो आराम से कर रहे थे इन बातों।
1: बिल्कुल नहीं, जिनको आदत होती है ना इस तरह की चीजें खाने की तो उनको कोई परेशानी नहीं होती,
0: लेकिन हमें तो हो जाती है। अभी हमारे श्रोताओं को हो जाएगी अगर हमने उन्हें एक गाना नहीं सुनवाया तो।

0: तो हमारा एक सेगमेंट तो रह गया अभी, यानी कान भरना मुहावरों की दुनिया
1: बातें। हाँ हाँ,
0: तो कान भरना, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि कान भरना मतलब कान में कोई भौतिक चीज या वस्तु को भरना नहीं होता है। इस मुहावरे का अर्थ किसी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत, चुगली करना या उसके प्रति गलत भावना या संदेह पैदा करना होता है। गुजराती में इसे कान भंभेरणी बोला जाता है।
1: अच्छा, वही एक श्रोता लिखते हैं कि कान भरना यानी चुगली करना, मेरे हिसाब से चुगली करने वाले से ज्यादा गलत है, चुगली सुनने वालों की होती है। क्योंकि यदि हमसे कोई चुगली कर रहा है और अगर हम उसे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएं तो सामने वाला दोबारा चुगली करने की कोशिश भी नहीं करेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि किसी के मन में दूसरे के प्रति गलत या नकारात्मक बातें डालना, उसे भड़काना, जैसे कि हम कोई दो लोग अच्छे मित्र हैं तो उनके बीच में एक तीसरे व्यक्ति ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया किसी दूसरे के कान में, तो इससे दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा हो जाए, तो इसे कान भरना कहते हैं।
1: बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि कान भरना, भाई कान है तो भरे ही जाएंगे ना। फिर कर्ण पूरण की विधिवत विधि भी बताई गई है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप कर्णेन्द्रिय का विकास भी होता है, किंतु यहाँ कान भरने का तात्पर्य किसी के खिलाफ किसी को उकसाने मात्र से ही है, और कच्चे कान वाले लोग इसके शिकार शीघ्र बन जाते हैं। और इस दृष्टिकोण से ऐसे लोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल। और एक और हमें जो श्रोता जो लिखते हैं कि चुपके से किसी के खिलाफ ऐसी बातें कहना जिससे कि वो सामने वाले व्यक्ति से नफरत करने लगे या उस पर शक करने लगे। ऐसा माना जाता है कि यदि खाने में जहर मिल जाए तो उसका इलाज संभव है, लेकिन कानों में घोला गया जहर रिश्तों को अंदर से खोखला बना देता है और इसका कोई आसान इलाज भी नहीं है। तो क्या कह सकते हैं?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और कई इसका सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है जब हम जिक्र करते हैं कान भरने का। तो अब तो कार्यक्रम का समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम और कान भरें अपने श्रोताओं के।
0: बिल्कुल।
1: तो कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी
0: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार।
0: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेल्युलॉइड के सितारे। श्रोताओं, आज इस प्रोग्राम में हम आपकी भेंट करवा रहे हैं टेलीविजन और फिल्मों से जुड़े अभिनेता कमलजीत से। आपसे बातचीत की है सविता बजाज ने।
1: कमलजीत जी नमस्ते।
2: नमस्कार।
1: आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं।
2: जी
1: अच्छा, आज के माहौल में जब टीवी का बोलबाला है और आप करीब हर चैनल पर नजर आते हैं, तो कैसा लगता है ये सब देखकर?
2: बड़ा अच्छा लगता है सविता जी, क्योंकि कलाकार अगर काम अच्छा कर रहा हो और वो ऑडियंस उसे सराहती है तो कलाकार का उत्साह बढ़ता है, वो और भी अच्छा काम करने की कोशिश करता है, तो ये सब अच्छा लगता है कलाकार को।
1: अच्छा, आप तो अभी टीवी के स्टार बन गए, फिल्मों में नाम तो आपका बहुत हुआ बतौर हीरो, लेकिन कभी ये सोचकर मलाल नहीं होता कि मैं स्टार नहीं बन सका?
2: देखिए, सिनेमा से मुझे बहुत इश्क है, अब भी है, पहले भी था, क्योंकि मैं बेसिकली फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ, तो सिनेमा से तो मुझे बहुत लगाव है, इश्क है, मोहब्बत है, लेकिन वहां न बन सका इसका मलाल मुझे नहीं है। अब भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि दुनिया में मैं समझता हूँ कभी भी कुछ भी किसी वक्त भी हो सकता है कि मैं फिर से वापस सिनेमा करने लगूं, लेकिन शर्त यह है कि मुझे मेरी पसंद के रोल अगर मिलेंगे और मुझे अच्छा लगेगा कोई भी रोल तो मैं करूंगा।
1: तो इसी बात पे गाना हो जाए आपकी पसंद का?
2: जरूर।
1: कौन सा गाना सबसे पहले सुनाना चाहेंगे आप?
2: जिन दिनों जब मैं फिल्में किया करता था
1: जी,
2: तो उस जमाने की एक फिल्म का जो मेरी सबसे पहली ऑलमोस्ट फिल्म थी शंकर हुसैन, उसमें एक गाना था बड़ा खूबसूरत, लता जी ने गाया था, अपने आप रातों में चिलमने सरकती हैं, चौंकते हैं दरवाजे, सीढ़ियां धड़कती हैं।

0: आपने संघर्ष तो खूब किया
1: जी।
0: और बहुत समय लगा मुझे लगता है पहचान बनाने में, तो ये पहचान आपकी कैसे बनी?
1: ओके, कुछ लोगों की इमारत जो है सबसे पहले बन जाती है, वो दिखने लगती है। कुछ लोग बुनियाद काफी देर तक बनाते रहते हैं तो मेरे हिस्से में मेरा ख्याल बुनियाद ने काफी टाइम ले लिया, और फिर जब बुनियाद मिली तो उसके बाद लोगों ने काम भी अप्रिशिएट किया और फिर काम मिलना भी बाकायदा शुरू हो गया।
0: मेरे ख्याल बुनियाद की बात निकली तो बुनियाद सीरियल भी आपका काफी हिट हुआ था
1: जी, उसी
0: से बात बनी ना?
1: जी जी जी, उससे काफी टेलीविजन में काम मिला उसके बाद।
0: अच्छा, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में क्या एक अजीब सी बात है कि आपकी फिल्म हिट होती है तो इसका फायदा तो सबको होता ही है, तो क्या सीरियल में भी ऐसा चलन है? क्योंकि चैनलों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जैसे कि आप बहुत से सीरियल कर रहे हैं, सांस है, बुनियाद, दरार, किस्मत, फरमान वगैरह, तो ये कॉम्पिटिशन को आप कैसे फेस करते हैं?
1: ये सब ऐसा ही है जैसे फिल्मों में होता है, मतलब फिल्में अगर आपकी चलती हैं आपको काम मिलता रहता है, सीरियल आपको आपके चलते हैं या चल रहे हैं, आपका काम अप्रिशिएट हो रहा है तो आपको काम मिलता रहेगा। देखिए, बेसिकली अगर आप डॉक्टर हैं, आपके पास अगर पहले दो मरीज आए और वो आपके हाथों मरे जाए तो फिर मेरा ख्याल आपके पास कोई दूसरा मरीज नहीं आएगा। तो ऐसा ही है, एक्टर की अगर पहली फिल्म या पहले दो तीन सीरियल चल गए तो उस बेचारे को काम मिलता रहता है, वरना उसी डॉक्टर वाला हिसाब होता है।
0: अच्छा, आपने फिल्में भी बहुत की और सीरियल भी बहुत किए। शंकर हुसैन फिल्म की आपने, फिर सत्ते पे सत्ता की, अशांति की, माचिस हाल ही में की, एक शर्त भी फिल्म की थी, और सीरियल तो आपने मेरे ख्याल से सैकड़ों कर लिए। तो फिल्म और सीरियल,
1: आप शिकायत कर रही हैं ये बता रही हैं मुझे समझ नहीं,
0: क्योंकि मैं तो रोज ही जब टीवी ऑन करती हूँ तो आप ही आप दिखाई देते हैं।
1: नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो असल में ये कई लोग ये सोचते हैं ऐसा, क्योंकि ये जो नए चैनल्स आए हैं इसमें प्रोग्राम्स क्योंकि रिपीट होते हैं तो ऐसा लगता है लोगों को कि ये बहुत आ रहा है, पर मैं ज्यादा काम लेता नहीं हूँ, उतना ही लेता हूँ जितना मैं

0: अच्छी तरह निभा सकूं जिसे।
1: अच्छा एनीवे
0: तो क्या कह रही थी आप?
1: फिल्म और सीरियल आप करते हैं इकट्ठे, तो अभिनय में क्या कुछ फर्क होता है, जैसे कि स्टेज और फिल्म में अभिनय का फर्क होता है, इस तरह से सीरियल और फिल्म में भी फर्क होता है?
0: नहीं, अभिनय में फर्क थिएटर और सिनेमा में शायद हो, और है भी थोड़ा सा, वहां पे एक दो सुर ऊपर करना पड़ता है थिएटर में,
1: होते है।
0: थिएटर में
1: जी।
0: सिनेमा में क्योंकि एक एक आपकी टाइट क्लोजअप में, इतने बड़े क्लोजअप में आपका एक एक नस दिखती है कैमरे को, तो उसमें आपको इतना एग्जैजरेट नहीं करना पड़ता। ऐसा ही मैं समझता हूँ टेलीविजन और सिनेमा में एक्टिंग में कोई फर्क नहीं, हाँ डायरेक्शनल टेक्निक्स में फर्क हो सकता है भी, क्योंकि ये मीडियम जो टेलीविजन का है वो क्लोजर मीडियम है शॉर्ट्स का, लेकिन एक्टिंग के लिहाज से मैं नहीं समझता हूँ। आप जैसे अपना कैरेक्टर किरदार वहां निभाते हैं सिनेमा में, वैसे ही आपको यहाँ पे करना पड़ता है।
1: फिल्म में तो बहुत ऑथेंटिसिटी दिखानी पड़ती है ना,
0: क्यों हम लोग टेलीविजन में नहीं दिखाते? मेरा ख्याल हम लोग टेलीविजन में ज्यादा ऑथेंटिसिटी दिखाते हैं।
1: यही बात तो उगलवाना चाहते
0: गुस्सा दिलवा के।
1: अच्छा जब शुरू में सीरियल बनने शुरू हुए थे तो फिल्मी एक्टर से, माफ कीजिए, छूत की बीमारी समझते थे, कहते थे कि नहीं छोटे से बच्चे में कौन अभिनय करेगा सविता जी, अब तो बड़ा एक्टर जो भी है वो सब सीरियल में ही अपने आप को कैश कर रहे हैं, क्या ख्यालात हैं इस बारे में?
0: देखिए मेरे ख्यालात जो हैं इस बारे में बड़े सीधे और ये हैं, मैं सिनेमा को नंबर वन समझता हूँ, बट टेलीविजन का शुक्रगुजार हूँ कि इसने मुझे काम दिया और मेरा किचन चलाया, लेकिन सिनेमा जैसा मैजिक टेलीविजन पर नहीं है और नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि टेलीविजन जो देखा जाता है वो ऐसे माहौल में देखा जाता है जहां पे और इतनी 100 डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपका बच्चा रो रहा है, अभी खाना बनाना है, वो उसने स्कूल जाना है, कल के स्कूल की तैयारी करनी है, कुछ भी करना है। सिनेमा एक हॉल में देखा जाता है, इट इज अ ग्रेट मैजिक, इट इज अ मोस्ट ब्यूटिफुल आर्टिस्टिक अचीवमेंट आई थिंक सिनेमा इज। तो मेरे लिहाज से अगर मुझे आज कहा जाए सिनेमा और टेलीविजन में कौन सा बेटर मीडियम है, डेफिनेटली सिनेमा है, लेकिन क्योंकि सर्वाइवल हर एक को सर्वाइव करना है यहाँ, तो जो सिनेमा में नहीं है वो टेलीविजन में है, जो सिनेमा में बहुत अच्छा जिनका करियर जा रहा है वो टेलीविजन में नहीं आना चाहते, दैट इज अंडरस्टैंडेबल।
1: बहुत अच्छी बात है। अच्छा इसी अच्छी बात पे एक अच्छा सा गाना सुना दीजिए।
0: तो फिर अच्छे से शायर का ही सुनाते हैं
1: जो आपको पसंद
0: है। गालिब की एक गजल है, मुझे बड़ी पसंद है, और जगजीत ने बहुत खूबसूरती से गाई है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक।
1: वाह वाह।

0: कमल जी, पहले एक्टर स्टेज को स्टेपिंग स्टोन बना के फिल्मों में आते थे, मतलब प्रवेश करते थे, और अब उल्टा हो रहा है कि फिल्मों से सीरियल में आ रहे हैं। ये उल्टी हवा कैसे बह निकली?
1: फिल्मों से सीरियल में आ रहे हैं, मेरा ख्याल इसलिए आ रहे हैं जो फिल्मों से निकाले जा रहे हैं, उसी से आ रहे हैं। सीधी बात,
0: निकाले नहीं जा रहे, दोनों जगह काम कर रहे हैं।
1: जिनको काम नहीं मिला, जिनको मैंने वही पहले ही अर्ज किया है कि अगर जिसका करियर बहुत अच्छी तरह चल रहा है फिल्म में, वो टेलीविजन में नहीं आना चाहता है, एंड इट इज अंडरस्टैंडेबल, ऐसी कोई वही बात नहीं है, और ऐसा उसको अपटी बिहेवियर समझा जाए ऐसा भी नहीं मैं समझता।
0: रोजी रोटी का सवाल है,
1: नहीं रोजी रोटी का भाई, वो क्यों लेसर मीडियम में आएगा? अगर मैं नॉवल लिख रहा हूं तो मैं रिपोर्टिंग न्यूज़पेपर के लिए क्यों करूंगा? सीधी बात, अगर मेरा नॉवल बिक नहीं रहा है तो मैं न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग करूंगा, ये है।
0: अच्छा, स्टार सिस्टम, इसका फिल्म जगत में साम्राज्य है जो लंबे समय से चल रहा है। सिर्फ ऐसा होता है कि चेहरे बदल जाते हैं, और अब यही बात सीरियल में भी लागू होती है, आपके क्या विचार हैं?
1: वो इसलिए क्योंकि बेसिकली मीडियम जो हैं सारे ये हम मूवी बिजनेस कहते हैं, टेलीविजन बिजनेस है,
0: बिजनेस
1: जी हाँ। तो जब तक आपके प्रोग्राम बिकेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, तो आपको एडवर्टीजमेंट्स नहीं मिलेंगे, एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेंगे तो चैनल कैसे रन करेगा, तो चैनल नहीं रन करेगा तो वो फिर पूरा विशेष सर्कल है बड़ा। तो इसमें जो एक्टर्स जो थोड़े बहुत ऊपर हैं, टॉप लेवल पे हैं, उनके प्रोग्राम हिट हो गए हैं या उनको लोग ज्यादा पसंद करते हैं, तो और क्योंकि लोग ज्यादा पसंद करते हैं तो चैनल कहता है कि भाई इन एक्टर्स के साथ बनाओ।
0: मतलब यह ऐसा तो नहीं जो पैसा लगाता है वो बोलता है हमको यही चाहिए, जैसे फिल्मों में प्रोड्यूसर पैसा लगाता है?
1: नहीं, हाँ तो ऑब्वियसली जो पैसा लगाता है वो ये सोच के लगाता है कि मुझे पैसा रिटर्न होगा, मतलब रिटर्न में आएगा पैसा, वापस आएगा, जो लागत है मेरी वो कम से कम वापस वसूल होगी। तो वो कैसे होगी? केवल पॉपुलर एक्टर को लेंगे आप, पॉपुलर हर जो चीज है जो डिमांड में है, जिसे सराहा जा रहा है इस वक्त, पब्लिक उसे चाह रही है, उसे ही आप लेके बनाएंगे ना।
0: अच्छा, जो ऐसे एक्टर हैं जिनको काम नहीं मिलता तो उनको क्या करना चाहिए आपकी राय में?
1: आप देखिए, हमें भी तो काम नहीं मिला था,
0: फिल्मों में भी काम नहीं मिलता और सीरियल में भी काम नहीं मिलता।
1: एक तो
0: कहाँ तो आप जगी थी कि सीरियल बन रहे हैं, तो जिनको फिल्मों में काम नहीं मिलता उनको सीरियल में भी मिले।
1: देखिए, अपने बारे में ऑब्जेक्टिव होना बड़ा मुश्किल है जिंदगी में। जब आदमी यहाँ पे ट्रेन में बम्बई में उतरता है तो वो ये आप उससे पूछें भाई तेरा अपने बारे में क्या विचार है, क्या राय, तो वो ये थोड़ी कहेगा कि नहीं यार मुझे नहीं लगता मेरा करियर यहाँ बनेगा और मुझे लगता है कि मुझे वापस लौट जाना चाहिए, ये कोई कहता है?
0: कोई नहीं कहेगा।
1: तो फिर तो या तो अपने बारे में बहुत ही ऑब्जेक्टिव आदमी हो, अपने आप को एक साल दे, दो साल दे, ढाई साल दे, तीन साल दे, या फिर बाप बहुत रईस हो, समझे ना, जिसे कोई फर्क ना पड़े कि बेटा कर रहा है स्ट्रगल तो करता रहेगा। तो अब ये तो अपने पे निर्भर करता है कि मैं अपने आप को कितना वक्त देता हूं और मैं कितना मतलब मुझे कितनी अपने बारे में समझ है और मैं कितना इंटेलिजेंट हूं कि मैं कहूं कि यार बस अब बहुत हो गया, लेट अस ट्राई समवेयर एल्स।
0: कमल जी, जिंदगी का सफर तो हमेशा चलता रहता है, जैसे सुख दुख आते हैं इसी तरह फिल्म सीरियल और सीरियल फिल्म, ये चक्र घूम रहा है, वर्षों से घूम रहे, कहीं ये थम गया तो क्या होगा, ये सोचकर कैसा लगता है?
1: हाँ, बहुत डर लगता है। देखिए, हर आदमी जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसका काम कब अच्छा चलता रहे और कब तक चलता रहे इसका कुछ भरोसा नहीं।

0: तो ये तो हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है हर सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी को और हमारे कॉम के लोगों को यानी एक्टर्स को कि भाई ये जो इस वक्त बड़ा अच्छा चल रहा है ये कल को ऐसा ना हो कि सब हमारे प्रोग्राम बंद हो जाएं और हमें काम ही ना मिले, क्योंकि हम तो एक ही काम जानते हैं ये, और यही नहीं मिल यही मिलना बंद हो जाएगा तो फिर हम क्या खाएंगे। हमने माना दिल्ली में रहें मगर खाएंगे क्या।
1: अच्छा आपकी पत्नी भी तो इसी मीडिया में है
0: जी,
1: तो आप दोनों अपने इस प्रोफेशन को अभिनय को किस तरह से एडजस्ट करते हो? कभी प्रोफेशनल जेलेसी का सामना तो नहीं करना पड़ता?
0: नहीं नहीं, क्यों, मैं जेलेसी इसलिए नहीं क्योंकि मेरी बीवी मुझसे बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है तो वो इसका मुझे अंदाजा है और मैं जानता हूँ इस बात को अच्छी तरह। दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल उसमें जितना सेक्रीफाइस और मेरा ख्याल औरत जात में जितना सेक्रीफाइस करने की वो है
1: ताकत,
0: इसी वजह से जब से हमारे बच्चे हुए हैं अब तक उसने कोई काम नहीं किया। शी रिफ्यूज टू वर्क, मतलब वो अपना पूरा ध्यान बच्चों की ग्रोथ में लगाना चाह रही थी। तो अब रिसेंटली उन्होंने एक दो प्रोजेक्ट अभी साइन किए हैं, पायलट्स किए हैं, लेकिन मेरा बड़ा बेटा 9 साल का है, मेरा छोटा बेटा आदित्य 5 साल का है, बड़ा सिद्धार्थ, तो ये जब तक छोटे थे तब तक उन्होंने कोई काम लिया ही नहीं, तो इस वजह से कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि भाई वो बाहर है तो घर नहीं है। उसके उसके जहन में घर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस, जहां पे कुछ मतलब जहां पे सब सही रहना चाहिए।
1: ये तो ये एक तरह से एडजस्टमेंट कहीं या सेक्रीफाइस
0: नहीं
1: पति के लिए?
0: नहीं नहीं, वो वजह बहुत छोटी थी मेरी वाइफ अनुराधा, तो जब बच्ची थी खुद तो उनसे पूछा जाता था भाई बड़े होके तुम क्या बनोगी, तो कहती थी मम्मी। तो उसे शुरू से बच्चों का शौक रहा है, घर का शौक रहा है, उसे घर को सजाने का, घर को बनाने का, और बेसिकली शी इज अ होम बर्ड।
1: तो इसी एक सुंदर सी बात पे कुछ आपकी पसंद का सुंदर सा गाना,
0: सुंदर सी बीवी के लिए।
1: हाँ, सुंदर सी बीवी के लिए कितनी।
0: तो चलिए बीवी की बात चलिए तो फिर उन्हीं की फिल्म का एक गाना सुनाते हैं।
1: कौन सी फिल्म का?
0: उत्सव का, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन क्यों महका।

0: आप जब छोटे थे तो तभी से एक्टर बनना चाहते थे या बड़े होने पर इस तरफ रुझान हुआ? क्योंकि हमारे माँ बाप अक्सर कहते हैं हम अपने बच्चों को बड़े होने पर डॉक्टर बनाएंगे या इंजीनियर बनाएंगे वगैरह वगैरह।
1: जी आप क्योंकि मैं सहारनपुर का हूं
0: जी
1: और मेरा ना कोई चचा ना कोई ताया ना कोई अंकल ना कोई आंटी यहाँ पे बम्बई में थी, तो जाहिर है मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता था कि मैं बम्बई जाकर एक्टर बनूं। तो सहारनपुर में पढ़ रहे थे, थोड़ा बीच में मसूरी भी पढ़ा मैं, तो फादर चाहते थे कि मैं आईएएस में जाऊं, पर इतनी पढ़ाई हमारे बस की बात नहीं थी। थोड़ा वो शायरी का शौक था, जो दोस्त थे हमारे और आज तक वही दोस्त हैं सहारनपुर में, वो भी बड़े आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड थे, तो हमें फिल्में देखने का तो बड़ा शौक था। मैं दिलीप साहब का फैन था, देव साहब का फैन था बहुत बड़ा, और बल्कि हमारे ग्रुप्स होते थे, कुछ दिलीप साहब के फैन होते थे और उनके सामने आप दिलीप साहब की बुराई नहीं कर सकते थे, और कुछ देव साहब के फैन होते थे, बाकायदा झगड़ा हुआ हो जाया करता था। लेकिन ये कि एक दिन मैं खुद एक्टर बनूंगा, इसका मुझे भी अंदाजा नहीं था।
0: तो कोई फिल्म देखी थी उसका असर हुआ कुछ तो बात हुई होगी, या कोई
1: नहीं,
0: ड्रामा किया उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा हुआ जहन पर दिमाग पर?
1: मुझे बेसिकली क्या सबसे जो जहन में प्राइम चीज थी वो ये थी कि अपने दो पांव पे खड़ा होना जल्दी से जल्दी जिंदगी में। तो जो भी उस वक्त कंपटीशन आते थे, जैसे एनडीए का आया, डफरिन का आया, ऑफिसर ट्रेनिंग यूनिट होता था उसका आया, तो मैं सब कंपटीशन में बैठ जाता था, और बल्कि मैं एनडीए में ऑलमोस्ट हो भी गया था, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम एक हो गया था उसकी वजह से मैं जा नहीं सका। तो जब ये सब चल रहा था तो उन दिनों एक फिल्म इंस्टीट्यूट का फॉर्म भी आया, तो वो मैंने फॉर्म चुपके से काट कर वो भेज दिया, और चुपके से, और अपने दोस्तों को भी नहीं बताया, क्योंकि छोटे शहर में अगर ये पता लग जाए कि इसने फॉर्म भेजा था और ये सिलेक्शन नहीं हुई तो बड़ा मजाक उड़ाया जाता कि भाई लौंडा हीरो बनने गया था, कुछ नहीं हुआ समझा, तो इस वजह से मैंने बताया नहीं। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे कॉल आ गया, और
0: स्कॉलरशिप भी मिलता था ना वहां
1: नहीं,
0: पे?
1: स्कॉलरशिप तो नहीं मिलता था,
0: नहीं
1: नहीं इंस्टीट्यूट
0: अच्छा।
1: में स्कॉलरशिप उन दिनों नहीं था, इन दिनों हो तो मुझे मालूम नहीं। तो हमारा दिल्ली में स्क्रीन टेस्ट हुआ, ऑडिशन हुआ, और हम सेलेक्ट हो गए।
0: अच्छा, अभी तो आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको भी इस लाइन में लाना चाहेंगे या वो जो खुद बनना चाहते हैं ऐसा कुछ सोचा आपने?
1: जाहिर है, देखिए हर बाप ये कहता है जो बनना चाहता है बच्चा वो बने, लेकिन मैं ये कहता हूं कि बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, ये उम्र कोई भी उम्र हो, तो वो इंडिकेशन देता है कि उसका रुझान किस तरफ है। तो बाप को यह कोशिश करनी चाहिए जिस तरफ उसका रुझान है उसे वो सब सप्लाई करे, चीजें, इंसेंटिव उसके शौक को पूरा करने के, तो वो अपना इवेंचुअली करियर बनाएगा। तो वो मैं देख रहा हूं मेरे बच्चों को, कुछ को एक को स्पोर्ट्स का शौक है, एक पढ़ाई का शौक है, तो अगर इसमें निकलते हैं, और अगर उनको बीच में सिनेमा का भी हो जाता है और एक्टर बनना चाहते हैं तो व्हाई नॉट, आई थिंक इज द नोबलेस्ट प्रोफेशन।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं टेलीविजन और फिल्मों से जुड़े अभिनेता कमलजीत। आपसे बातचीत की है सविता बजाज ने।
0: अच्छा, आजकल के समय में फिल्म इंडस्ट्री को कला का गढ़ माना जाता है, गढ़ है ना, तो इसमें तो मेरे ख्याल से 1 लाख से ज्यादा कोई बता रहा था कि कलाकार हैं जिन्हें काम नहीं मिलता, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा होगी क्योंकि हर आदमी इसी लाइन में आना चाहता है, तो आपकी क्या ख्याल है इस बारे में?
1: मेरा ख्याल फिगर्स इससे बहुत ऊंचे होंगे, क्योंकि और आप इस बात की बात कर रही हैं, जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर रहा था उस वक्त मेरा दोस्त एक इंजीनियर बनने के लिए रुड़की यूनिवर्सिटी में गया था
0: जी,
1: उस वक्त 75,000

0: इंजीनियर खाली था। तो देखिए एक क्लास में 60 लड़के होते हैं, पहले दो तीन तो दो तीन ही आएंगे, पांच दो तीन थोड़े आ जाएंगे, तो किसी का वो जो 60वां है एक 60वां भी होगा वहां। तो उसको ये बात से घबराना नहीं चाहिए कि भाई मैं मेरा नंबर 60 आया, अब तेरा नंबर 60 यहां आया, कहीं कोई और चीज जिम में ट्राई करेगा वहां नंबर 1 हो जाएगा। तो अपने अपना पोटेंशियल खुद देखना चाहिए, खुद ढूंढना चाहिए। ये
1: मतलब इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए, चप्पा चप्पा कोशिश करते रहना चाहिए। इसी बात पे आपको वो जो गाना अच्छा लगता है, आप भी थे ना माचिस फिल्म में, हो जाए
0: बिल्कुल हो जाए,
1: चप्पा चप्पा चरखा
0: जलाइए माचिस
1: तो सुनते हैं वही गाना, चप्पा चप्पा चरखा चले,

0: कमल जी, आपको कभी कभी फुर्सत भी मिलती होगी, मतलब जब समय मिलता है शूटिंग से, तो उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं?
1: देखिए, जब मुझे समय मिलता है शूटिंग से तो सबसे पहले तो मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ, तो अपने बच्चों के साथ अब और घर पे अपनी बीवी के साथ हम लोग इकट्ठा रहते हैं। और अगर कुछ एक दो दिन की ज्यादा छुट्टी हो जाए इकट्ठी, और बच्चों का भी वीकेंड हो, सैटरडे संडे हो, तो हम लोग खंडाला वंडाला चले जाते हैं। तो ऐसे हमको, हम पूरे परिवार को, हमको ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है। तो अंग्रेजी में कहते हैं, ड्रॉप ऑफ अ हैट वी स्टार्ट फॉर एनी डायरेक्शन ऑन दिस अर्थ। तो इसीलिए मैं हर हर साल अपनी छुट्टियां जो है वो बच्चों की छुट्टियों के साथ कोऑर्डिनेट करता हूँ, एक तो दिवाली में और एक समर वेकेशन उनकी, तो उनके साथ मैं छुट्टियों पे चला जाता हूँ।
0: तो इसी बात पे कोई बच्चों के लिए गाना?
1: अब बच्चों के लिए क्या गाना, वो जब छोटा था, छोटे थे तो इनको एक गाना बड़ा पसंद था, और मुझे आज तक समझ नहीं आई क्यों, क्योंकि वो उनकी उम्र का गाना है नहीं, लेकिन वो कुछ झूमने से लगता था, मेरा छोटा बेटा जो था, तो वो गाना है ना, रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तो मेरे ख्याल से वो मेरे बेटे को चांद लफ्ज समझ में आता होगा, तो उस वजह से वो यूज टू एंजॉय दैट नंबर, तो वो सुनवा देते हैं हम।
0: ठीक है, तो आगे सुनते हैं। रूप सुहाना लगता है।

0: अच्छा, कभी मन नहीं करता आपका भी कि मैं डायरेक्शन करूं?
1: आप दीजिए डायरेक्शन, आप लाइए प्रोड्यूसर तो मैं ये भी कर डालूंगा।
0: 20-25 साल हो गए आपको लोगों की बातें सुनते कि ऐसा ऐसा करो, अभिनय ऐसा करो, तो आपका तो दिल करता होगा कभी मैं भी कैमरे की बाग दौड़
1: कभी मैं उसका मैं उस बंदे का कॉलर पकड़ के कहूँ कि अब तुम ऐसा करो। मैं देखिए, मैं यहाँ पे एक्टिंग कोर्स करके पूना से यहाँ आया था। बड़ा मजा आता है इस काम में, इस प्रोफेशन में, लेकिन एज यू गो ऑन तो आप भी बहुत कुछ अलावा एक्टिंग के और भी आपके जो मीडियम है से जुड़ी हुई चीजें हैं वो सीखते हैं। साउंड के बारे में सीखते हैं, पिक्चर के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में, डायरेक्शन के बारे में। तो ये मीडियम इतना फैसिनेटिंग है कि अगर मुझे कल को ये चांस मिलता है कि मैं डायरेक्टर डायरेक्शन करूं तो मैं जरूर इसमें भी एक क्या कहना चाहिए, गोता
0: चांस
1: माना
0: लेना।
1: हाँ, चांस लेना चाहूंगा।
0: फिल्म में या सीरियल में?
1: किसी में भी,
0: किसी में। अच्छा, कहते हैं ना कि डायरेक्टर बड़े आर्टिस्टों को डायरेक्ट नहीं करता बल्कि आर्टिस्ट उन्हें डायरेक्ट करते हैं। ये क्या बात सही है?
1: पहली बात तो बड़ा आर्टिस्ट कौन है, क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ। तो अगर आप हाँ, मैंने आज तक कभी हमेशा अपने डायरेक्टर की सुनी है। हाँ, देखिए आर्टिस्टिक डिस्कशन जो हमारी सेट पे होती है कि भाई अगर हम ऐसा कर लें तो शायद ये ज्यादा स्पॉन्टेनियस लगे, अगर हम यूं डायलॉग लाइन को यूं करें तो शायद ये डायलॉग ही ना लगे और ऐसे लगे कि वाकई बातचीत हो रही है दो कैरेक्टर्स के बीच में। तो इतना तो हमारा दखल है ही और होना भी चाहिए, आफ्टर ऑल।

0: आर नॉट पपेट्स, हम लोग कठपुतलियां नहीं है, एक्टर्स आर नॉट कठपुतलियां, हम सोचने वाले जीव जंतु हैं और हमको इस बात का थोड़ा बहुत ज्ञान भी रहता है कि ये लफ्ज जो है या ये लाइन ये डायलॉग ही लगेगी, क्लीशेड लगेगी, मेलोड्रामेटिक लगेगी या के सच्ची लगेगी। सच्चा लगना बड़ा जरूरी है।
1: ये सच्ची बात जो है आपने बोला सच्ची

0: अच्छा है, भाड़ बजा।
1: वाह वाह, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। अच्छा, कभी आप पीछे मुड़ के देखते हैं जहां से आपने शुरुआत की, और उसके आप तो बहुत सीढ़ियां आगे चढ़ लिए, तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीछे बहुत सारे साथी छूट चुके होते हैं, कुछ को सफलता मिलती है, कुछ को सफलता नहीं मिलती, आपको कैसा लगता है ये?
0: देखिए, ऐसा आया कि मेरे साथ जो थे इंस्टीट्यूट से निकले, वो मेरा ख्याल अगर इस लाइन में कुछ मकाम हासिल नहीं कर पाए तो कहीं और हैं, और बड़े अच्छे ओहदे पे हैं, बड़ी अच्छी पोजीशंस पे हैं। पीछे मुड़ के मैं नहीं देखता, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन मैं ऐसा करता हूं।
1: आप पीछे मुड़ के नहीं देखते?
0: मैं कोशिश नहीं करता पीछे न देखने की, पर मेरी फितरत में ही नहीं है। मैं पीछे देखता ज्यादा नहीं हूं।
1: मतलब जो छूट गया वो छूट गया।
0: मतलब कुछ उसमें मेरा फिलोसॉफिकल एटीट्यूड भी नहीं है, या फिर मेरी ये कोशिश भी नहीं है कि मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूं। इतना एरोगेंस भी नहीं है उसमें। बस ये मेरे साथ रहा है कि कुछ पुराना याद नहीं आता मुझे ज्यादा, और ये भी नहीं एटीट्यूड मेरा कि मैं सिर्फ आगे बढ़ना चाहता हूं, ये सब भी नहीं है। बस ये जो इस वक्त कर रहा हूं बड़ा अच्छा लगता है। मेरे एक दोस्त हैं रमेश दत्त, हमारे सहारनपुर में, वो बकौल उनके वो कहते हैं, भाई अब बस जीना अच्छा लगता है।
1: वाह वाह,
0: हाँ, तो ये काम अच्छा लगता है
1: मतलब
0: जो
1: छैया छैया। तो
0: हाँ, छैया छैया
1: आइए फिर सुनते हैं छैया छैया,
0: बेशक
1: है आपको
0: बेशक,
1: पसंद है ना?
0: बहुत पसंद है।

0: अच्छा कमल जी, आप एक्टिंग के अलावा क्या करते हैं?
1: एक्टिंग
0: एक्टिंग के अलावा एक्टिंग
1: देखिए बेसिकली
0: मतलब 24 घंटे आप एक्टिंग करते रहते हैं, वेदर कैमरा इज ऑन और
1: नॉट। नहीं, ये मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सबसे पहले ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक्टिंग है, जो मैं उसके सामने करता हूँ
0: कैमरे
1: के सामने, उसमें से एक्टिंग बिल्कुल खत्म कर दूं।
0: अच्छा,
1: तो हाँ, तो बाकी क्योंकि सारी जिंदगी में हम एक्टिंग करते ही रहते हैं, तो कम से कम यहाँ से बिल्कुल निकाल के इसका वजूद खत्म करना चाहता हूँ। कितना कामयाब हुआ हूँ ये पता नहीं, लेकिन कोशिश मेरी यही है। बाकी इसके अलावा
0: जी,
1: मुझे शौक है खेलने के। आई हैव बीन अ स्पोर्ट्समैन बचपन में, स्कूल में भी, और अब भी टेनिस खेलता हूँ मैं, और टेनिस से बहुत लगाव है, बहुत इश्क है, और क्रिकेट से भी। अपने बच्चों के साथ घर में जब बीवी नहीं होती तो फुटबॉल खेलता हूँ, तो क्योंकि बीवी हम लोग को खेलने नहीं देती
0: शीशे जाते
1: तो जब वो घर में होती है तो हम लोग थोड़ा बाहर आंगन में खेल लेते हैं, जब वो बाहर होती है तो फिर हम लोग अंदर खेल लेते हैं मैं और मेरे दोनों बच्चे।
0: अच्छा, तो आप उनकी मदद भी करते होंगे किचन में, या वो आपकी मदद करती रहती
1: है? नहीं, मैं उनकी मदद इस लिहाज से करता हूँ कि मुझे खाने का बड़ा शौक है तो वो खाना इतना अच्छा लजीज बनाती हैं कि मैं उसको खाने में मदद करता हूँ। बाकी मुझे खाना, हालांकि आई एम सरप्राइज माई सेल्फ, क्योंकि मैंने इतना लंबा अरसा बैचलर लाइफ लीड की है मुंबई में कि, और अकेला रहा हूं जिंदगी में, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आया और खाना बनाने की कोशिश भी नहीं की मैंने। हालांकि मेरा एक भाई है, वो बड़ा अच्छा खाना बनाता है, मुझे नहीं बनाना आता।
0: अच्छा, आपके आने वाले कोई सीरियल या फिल्म?
1: जी हाँ, एक अभिमान कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं राकेश सानंग, उनके साथ कर रहा हूँ, मनीष गोस्वामी का सीरियल है और वो आने वाला है। बाकी 3 ऑलरेडी चल रहे हैं तो मुझे वक्त भी नहीं है कि मैं ज्यादा कर सकूं। ये खत्म होने वाले हैं कुछ, सांस जैसे हुआ ये खत्म हो जाएगा तो फिर दूसरा आई विल टेक ऑन। एक आधा पायलट किया हुआ है और पायलट किए नीना के साथ, दूसरा हमारा पायलट शूट होने वाला है, तो ऐसा ओवरलोड नहीं करता मैं काम से अपने आप को,
0: मतलब जितना कर सकते हैं उतना ही लेते हैं आप।
1: हाँ, जितना अपनी पूरी एबिलिटी, अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन में जिस काम को दे सकूं वही करता हूँ। तो अच्छा अच्छा, आप मेरी पसंद के गाने तो सुनते रहे, आपको क्या पसंद है?
0: मुझे, आपने एक बहुत बड़ी फिल्म की थी सत्ते पे
1: सत्ता, जी हाँ जी,
0: है ना?
1: हाँ, तो उसका गाना प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया।
0: ले आया,
1: चलिए साहब।

0: कंवल जी
1: जनाब,
0: अगर आप अभिनय नहीं करते तो क्या करते?
1: हाँ, अभिनय नहीं करता। मैंने जैसे शुरू में बताया, मैं फौज में जाना चाहता था, एयरफोर्स में, तो वहां इवेंचुअली नहीं जा सका कुछ वजह, तो मुझे समझ नहीं आता वाकई मैं क्या करता, क्योंकि ये काम, इसमें आने के बाद मुझे इससे इतना इश्क हुआ इस काम से कि मुझे नहीं लगता कि मैं कोई और काम कर सकता।
0: मतलब आदमी बेकार हो जाते
1: हैं। हाँ, बेकार
0: कर ही नहीं सकता एक्टर बन के।
1: नहीं नहीं, एक्टर बन के बेकार हो जाता है ये तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन इसको इससे
0: मतलब इश्क हो जाए,
1: अगर इससे इश्क हो जाए तो फिर मतलब और कुछ कर नहीं सकता। हाँ, अगर मैं ना, अगर एक और चांस दिया जाता मुझे तो शायद मैं स्पोर्ट्समैन होता, शायद मैं टेनिस खेलने लगता।
0: अच्छा, कई ऐसे भी डायरेक्टर हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते थे, आपको मौका नहीं मिला, या कोई ऐसे स्टार्स, आपने बहुत सारे स्टार्स के साथ काम किए, कोई बचा होगा जो आपके फेवरेट रहे हो और आपको मौका नहीं मिला होगा? तो आप तो अभी ऐसे स्टेज पर हैं कि आप जिसके साथ काम करना चाहें आप कर सकते हैं, तो अभी आप किनके साथ काम करना चाहते हैं?
1: देखिए, जिनके साथ मुझे मैंने काम किया है ऑलरेडी उनको मैं जानता हूं, और उनमें मोस्टली बड़ा मजा आया सबके साथ काम करने में, और जिनके साथ मैंने काम नहीं किया उनके बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं, तो मैं कह नहीं सकूंगा। और मुझे अच्छा लगता है जब मैं वैरायटी ऑफ एक्टर्स के साथ काम करता हूँ, अलग अलग रिएक्शन मिलते हैं, वरना एक वो होता है इंस्टिंक्टिवली आपको मालूम है अगला क्या करने वाला है, तो आपका परफॉर्मेंस और जो इंटरेक्शन है वो जरा रेपिटेटिव हो जाता है।
0: नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आप ऐसे कोई स्टार तो होगा ना आपका फेवरेट जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, कोई डायरेक्टर कि इतने सालों तक तो आपको चांस नहीं मिला, अभी तो आपका समय आ गया।
1: नहीं नहीं, मैं अच्छी स्क्रिप्ट में काम करना चाहता हूँ।
0: ऐसा कोई फेवरेट नहीं है, लॉन्गिंग नहीं है कि मैं
1: ना,
0: उसके साथ काम करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं,
1: नहीं।
0: चलिए, इसी बात पे एक गाना सुनवा दीजिए, थोड़ा मूड अच्छा हो जाए।
1: मूड अच्छा हो जाए, चलिए, तो फिर अपनी बीवी के बात जब करता हूँ तभी मूड अच्छा रहता
0: है। ठीक है,
1: तो उन्हीं की फिल्म का एक और गाना सुना देते हैं आपको, मेरा वो सामान लौटा दो। गुलजार साहब ने बहुत ही खूबसूरत गाना लिखा है।

0: इस गीत के साथ ही मैं कमल जी आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आए, विविध भारती स्टूडियो में आपने हमें अपना अनमोल समय दिया। धन्यवाद।
1: धन्यवाद
2: श्रोताओं, आज इस प्रोग्राम में आप सुन रहे थे टेलीविजन और फिल्मों से जुड़े अभिनेता कमलजीत से सविता बजाज की बातचीत। इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोग दिया दिनेश दाभोलकर ने, प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। सेल्यूलॉइड

एफएमएंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। हमारी आज की सायंकालीन सभा में आप सभी सुनने वाले श्रोताओं का स्वागत है। शाम के 5 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारी आज की सायंकालीन एवं कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से कुछ ही देर में 5:05 पर आप सुनेंगे महिला श्रोताओं का कार्यक्रम नारी लोक। वहीं शाम 6:15 पर समय रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां का।

सदाबहार नगमों का कार्यक्रम फिल्म संगीत में आपको लेकर चलेंगे रात्रि 10 बजे। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन पाएंगे शाम 7:30 पर, शाम 5:30 पर और रात्रि 9:00।

शाम 7 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी। वहीं शाम 7:30 पर आप सुनेंगे जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम। हमारी शाम की सभा में समाचारों का समय कुछ यूं रहेगा। शाम 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। वहीं रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

हमारी कल की प्रातःकालीन सभा में प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन और 6:10 पर कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। वहीं हमारे स्टूडियो से प्रसारित कार्यक्रमों में प्रातः 6:45 पर किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती निवाद और 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वागड़ी लोक संगीत। वहीं प्रातः 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वातायन और प्रातः 8:15 पर आप सुनेंगे दिल्ली जज्बातों का कार्यक्रम कुछ दिल से। राजस्थानी गीतों का कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत आप सुन पाएंगे प्रातः 8:45 पर। वहीं गजल प्रेमी श्रोता कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुन पाएंगे प्रातः 9:10 पर और प्रातः 11:00। प्रातः 9:30 पर आप सुनेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। वहीं प्रातः 11:30 पर आपको लेकर चलेंगे सदाबहार नगमों के सफर पर। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन पाएंगे प्रातः 7:30 पर प्रातः 10:00 एवं दोपहर 12:00।

वहीं हमारी कल की प्रातःकालीन सभा में समाचारों का समय कुछ यूं रहेगा। प्रातः 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और प्रातः 8 बजे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। वहीं प्रातः 9 बजे आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से।

श्रोता अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से हमारी आज की सायंकालीन एवं कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण जो यहीं संपन्न हुआ। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है महिला श्रोताओं का कार्यक्रम नारी लोक।

0: है तो सृष्टि है, नारी से संसार, ममता साहस शक्ति का सुंदर है अवतार। हर मुश्किल से लड़कर भी मुस्काती हर बार, नारी के सम्मान से रेशम हो परिवार। इन्हीं पंक्तियों के साथ आगाज करती हूँ आज के नारी लोक कार्यक्रम का, तो कीजिए स्वीकार आपकी दोस्त प्रीति यादव का प्यार भरा नमस्कार। मैं बात कर रही हूँ मासिक धर्म महिला जीवन का एक स्वाभाविक और महत्वपूर्ण हिस्सा है, फिर भी कई बार दर्द ऐठन थकान और असहजता के कारण ये दिन कष्टदायक लगने लगते हैं। तो दोनों हमारा आज का विषय है मासिक धर्म कष्टदायक न हो, इस विषय पर हमने बातचीत की है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर याभिनी शर्मा से, जो कि वर्तमान में ग्यारक हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो आइए सुनते हैं बातचीत।
1: बेनो, हमारा आज का विषय है मासिक धर्म कष्टदायक ना हो, इस विषय पर बात करने के लिए है हमारे बीच डॉक्टर याभिनी शर्मा, जो वर्तमान में ग्यारक हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत है। नमस्कार यामिनी जी।
2: नमस्कार
1: यामिनी जी। महिलाओं में मासिक धर्म एक प्राकृतिक व सामान्य प्रक्रिया है, हर माह महिलाओं को इससे गुजरना ही पड़ता है। तो आप सबसे पहले हमारी श्रोता बहनों को यह बताइए कि मासिक धर्म क्या है और यह किस प्रकार की प्रक्रिया है।
2: मासिक धर्म एक वो अवस्था होती है जब एक महिला आगे बच्चे धारण करने के लिए तैयार होती है। ये आमतौर पर 12 से 15 साल तक की एज में औरतों में स्थापित हो जाती है। इसमें हम कुछ हेडिंग्स में बोलते हैं कि एक नॉर्मल मासिक धर्म क्या होता है, जैसे कि कितने दिन से होता है। हर महिला का मासिक धर्म उसके शरीर के हिसाब से अलग होता है, जैसे कुछ में हो सकता है ये 22 दिन का हो, कुछ में 28 का, कुछ में 30 का, कुछ में 35 का। अगर किसी का मासिक धर्म 22 दिन से पहले या 38 दिन के बाद आता है तो इसको हम सामान्य नहीं मानते हैं। इसके अलावा जो ब्लीडिंग होती है, जो खून जाता है इस समय, वो अगर आपका 2 दिन से कम या 8 दिन से ज्यादा या उसमें आपके 5 से 6 से ज्यादा पैड इस्तेमाल होते हैं या उसमें इतना ज्यादा दर्द होता है जो आपका नॉर्मल काम करने में, नॉर्मल जिंदगी में रुकावट बनता है, तो इन सब चीजों को हम एबनॉर्मल मानते हैं और इसके लिए आपको किसी गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह की जरूरत पड़ती है।
1: यामिनी जी, ये तो आपने सामान्य प्रक्रिया बताई कि किस प्रकार से मासिक धर्म होता है। अब आप हमारी महिला को ये बताइए कि जब मासिक धर्म शुरू होता है तो वे कहती है कि उन्हें कभी मासिक शुरू होने से पहले या बाद में या कभी कभी उस समय भी दर्द होता है, तो इसका क्या कारण है।
2: मासिक धर्म के दौरान दर्द होना एक सामान्य बात है। जब मासिक धर्म होता है, जब शुरुआत होता है जैसे किसी भी लड़की में, तो वो शुरुआत में एनोवुलेटरी साइकिल्स बोलते हैं उनको, मासिक धर्म को पूरा काम करने के लिए कम से कम 1.5 से 2 साल लग जाते हैं, जिस दौरान जो लड़की होती है उसका मासिक धर्म अनियमित हो सकता है और हो सकता है उस टाइम दर्द ना हो, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं होती। 2 साल तक इंतजार कर सकते हैं कि वो अपना हर महीने आना शुरू हो, और उसके बाद अगर जो थोड़ा बहुत दर्द होता है उसको इसलिए बोलते हैं कि ओवुलेटरी साइकिल्स होती हैं, लगभग 1.5 से 2 साल बाद ओवुलेटरी साइकिल्स होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें अंडाशय से अंडा निकलता है, तो जो पूरा एक्सिस हम बोलते हैं एक हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस होता है, वो फुली मैच्योर हो चुका होता है उस समय, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत दर्द होना सामान्य है। इसमें आराम करने पर, पेट पर थोड़ा सिकाई करने पर, मालिश करने पर और जो ओवर द काउंटर ड्रग्स हम बोलते हैं एनसिड्स, उनसे आमतौर पर आराम हो जाता है। लगभग ये 24 से 48

0: घंटे तक रहता है, इसके बाद ये सबसाइड कर जाता है, मतलब थम जाता है। अगर इससे ज्यादा है या इतना ज्यादा है आपको कि चक्कर आते हैं, आप काम नहीं कर पाते हैं, बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती हैं, तो इसके लिए सलाह लेने की जरूरत है। दूसरी बार ये दर्द होता है, जैसे किसी किसी महिला को पहले नहीं होता था, फिर आगे चल के एज पे, अब जैसे बच्चे हो गए उसके बाद तब शुरुआत होता है। इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि जो इसका सबसे ज्यादा जो कारण प्रचलित है उसको एंडोमेट्रियोसिस बोला जाता है, जिसमें होता है कि जो खून जैसे आमतौर पर जब महीना आता है तो बाहर आता है, इसमें कुछ ग्रंथियां जो अनकॉमन होती हैं, जो असामान्य जगह पर बन जाती हैं, वो अंदर की तरफ उनमें खून चलने लगता है, तो जिसकी वजह से इसमें दर्द हो जाता है, जिसके कारण कभी कभी खून की गांठ भी अंडाशय में बन जाती है। इसके अलावा एडिनोमायोसिस एक और कारण है, जिसमें बच्चेदानी बड़ी हो जाती है और उसमें खून के चलते दर्द ज्यादा होता है। इसके अलावा जब बहुत ज्यादा नीचे से सफेद पानी जाए, जो इन्फेक्शन के कई कारण होते हैं, जनरली हम क्लेमाइडिया गोनोरिया की वजह से, जो पीआईडी के नाम से जाना जाता है, इसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा अंडेदानी में गठान, बच्चेदानी में गठान और पॉलिप, इन सब की वजह से भी हो सकता है। और कभी कभी जब बच्चे होने के बाद जो सिजेरियन से बच्चे होते हैं, जो बच्चेदानी है उसके आगे और पीछे का बहुत सारे एडिजन्स बन जाते हैं, चिपक जाते हैं, क्योंकि बच्चेदानी के आगे जो है पेशाब की थैली होती है और पीछे आंतें होती हैं, तो जब ये आपस में चिपक जाते हैं तो ऐसे में महावारी के दौरान ये दर्द बढ़ जाता है, तो इन लोगों में भी पाया जाता है। इसके अलावा एक होता है पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम बोलते हैं, उसमें जो महावारी के समय हार्मोन निकलते हैं वो ज्यादा अनियमित होने की वजह से वहां पे सूजन आ जाती है, तो उसकी वजह से भी ये दर्द ज्यादा हो सकता है। तो ये सभी कारण हैं, लेकिन सिर्फ दर्द के साथ जो महावारी का दिन है, कितने दिन तक रहती है, इसके अलावा कितना खून जाता है, तो अलग अलग कारणों के मिलते जुलते हम इनको पता लगाया जा सकता है।
1: यामिनी जी, ये तो आपने इसके कारण बता दिए कि ये दर्द क्यों होता है। अब मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि इस दर्द का इलाज क्या है कि जिससे उन्हें ये कष्ट न सहना पड़े।
0: जो बच्चियों में प्राइमरी डिस्मेनोरिया 24 से 48 घंटे के लिए ही जो दर्द रहता है, अक्सर आराम करने पे और एनसेड्स जो दर्द निरोधक गोलियां होती हैं उन पर चला जाता है, तो इसके लिए कोई चिंता करने वाली बात नहीं होती। ये जो दर्द निरोधक गोलियां होती हैं और जो खास तौर पर इसी तरह के दर्द के लिए बनी होती हैं, उससे आगे चल के बच्चियों में गर्भ धारण करने में कोई समस्या नहीं होती, उनको 2 दिन के लिए लिया जा सकता है और अगर उस पर आराम है बच्चियों को तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। आगे जाके जैसे जैसे समय बीतता है, उम्र बढ़ती है, ये दर्द थोड़ा कम होता जाता है। और अगर इसके अलावा भी कि बच्चियां स्कूल नहीं जा पा रही या पढ़ नहीं पा रही या खेल कूद में भाग नहीं ले पा रही, तो एक कोर्स चलता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं, ये हार्मोनल दवाइयां होती हैं, लेकिन इनका कोर्स कम से कम 3 से 4 महीने लेने के बाद ये दर्द अधिकतर केसों में कम हो जाता है। और इनको लेने से घबराना नहीं चाहिए कि आगे जाके बच्चे नहीं होंगे, लोगों का एक खास तौर पर ये सवाल होता है कि आगे बच्चों में कोई समस्या तो नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। इन गोलियों से बहुत ही लो डोज की होती हैं, बच्चे की उम्र और वजन देखकर दी जाती हैं और आराम से आप इनको ले सकते हैं। बस ये है कि इस कोर्स को ध्यान से और जो एक निर्धारित समय डॉक्टर बताते हैं उसमें ले लेना चाहिए, अगर बीच बीच में छोड़ेंगे तो इसका भी असर नहीं आता। और जो दूसरा रहा कि अगर किसी का एंडोमेट्रियोसिस, पॉलिप, जो अंडाशय में गर्भाशय में जो गांठे हैं, इन्फेक्शन है, वो जैसे कि जो भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं उसके तालमेल से जो भी आपका इनमें से कुछ भी डायग्नोसिस बनता है, तो उसके लिए जो निर्धारित जो इलाज है वो लेना पड़ता है। कुछ के लिए गोलियां लेनी पड़ती हैं, अगर गांठें ज्यादा बड़ी होती हैं तो सर्जरी की भी आवश्यकता हो सकती है, तो ये भिन्न भिन्न तरह के ऑप्शन हैं। वो अगर जो भी डायग्नोसिस आपका बनता है उस पर डिपेंड होता है, लेकिन ये सभी ट्रीट किया जा सकता है।
1: इसके लिए क्या कुछ हम घरेलू उपाय कर सकते हैं?
0: घरेलू उपाय ज्यादातर जो मानसिक धर्म के टाइम पे जो भी अनियमितता होती है वो हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से होती है, तो एक हेल्दी डाइट रखना, हमारी साइकिल का हर चीज पर का फर्क पड़ता है, हमारे सोने का, हमारे खान पीन का, हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी का लेवल है, जो हम व्यायाम करते हैं उसका फर्क पड़ता है, तो 1 घंटा रोज अपने लिए जरूर निकालें। सुबह कोशिश करें कि सुबह हो, उस समय एक्सरसाइज, कुछ भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे योगा है, योगा के साथ मेडिटेशन, रन

0: रनिंग, जिमिंग और एरोबिक्स जो भी पसंद हो वो करना चाहिए, और एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए लड़कियों को, खास तौर पर जो बाहर का जो फास्ट फूड आजकल चलता है, जो बच्चे ज्यादा जाते हैं, वो कम से कम करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, वजन बढ़ता है. वजन बढ़ता है और एक पीसीओएस नामक एक सिंड्रोम है, जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है. 10 में से 4 लड़कियों में होता ही होता है. तो वो एक लाइफस्टाइल बीमारी है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ऐसे ही है. तो अगर हम ये थोड़ा अपना लाइफस्टाइल में बदलाव करें, कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लें, अननेसेसरी स्ट्रेस है जो टेंशन लेते हैं वो ना करें, तो इन सब चीजों से भी बचा जा सकता है.
1: और इस समय कहा जाता है कि आराम करना चाहिए, लेकिन कई बार वर्किंग वुमेन्स होती हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देंगी?
0: देखिए, अगर पहले तो ये है कि आप अपने जो आपको आपकी बॉडी साइन दे रही है आपको, आप उसे पहचाने. अगर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है जिसमें कोई बहुत ज्यादा ब्लीडिंग नहीं है, दर्द नहीं होता, तो इसमें ऐसा कि आप थोड़ा बहुत रेस्ट कर सकते हो. जब स्टार्टिंग के 2 डेज होते हैं उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, फ्लो ज्यादा होता है इसलिए अनकंफर्टेबल होता है, तो थोड़ा मूवमेंट करने से लोग बचते हैं. लेकिन आप कर सकते हो अगर आप कर सकते हो तो. अगर नहीं कर सकते, आपको लगता है कि आप आराम है, वो आपके ऊपर है. लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते काम, वो आप कर सकते हो. लेकिन हाँ, ये है कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है या दर्द बहुत ज्यादा होता है, या फिर जब दर्द होता है तो साथ में बार बार उल्टियां आती हैं, दस्त हो जाते हैं, तो ऐसे में आप इलाज कराएं अपना, तो उससे आपको फायदा होगा.
1: डॉक्टर साहब, आप अंत में हमारी श्रोता बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगी कि उनका जो मासिक धर्म है कष्टदायक ना हो और वो आराम से इन दिनों को अच्छे से निभा सके?
0: सबसे पहले तो जिनकी महामारी अभी अभी शुरू हुई है, उनसे मेरा कहना है कि जो भी बेटा समस्याएं हैं, उन्हें अपने साथ वालों से ना पूछकर अपने किसी बड़े जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं या फिर किसी डॉक्टर के पास जाकर सलाह लें, क्योंकि आपस में पूछने से बच्चियों में कन्फ्यूजन ज्यादा होता है, सॉल्यूशन कम निकलते हैं. सबसे पहली बात तो ये. और अगर मामूली दर्द है तो उसके लिए 2 दिन के लिए जो दवाएं दी जाती हैं वो कभी कोई नुकसान नहीं करती, हिट एंड रन ड्रग होती हैं, उनका आपकी बॉडी पर कोई भी लंबे समय में साइड इफेक्ट नहीं होता है. तो उनको आप बेझिझक बिना स्ट्रेस के खा सकते हैं. और अगर उस पर भी आपका दर्द नहीं जाता तो आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लें, आपको जरूर फायदा होगा, सफर ना करें.
1: डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारी बहनों को दे दी, आशा करती हूँ कि वो इससे लाभ जरूर लेंगी. आपका इस विषय पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
0: धन्यवाद.
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प.
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको.
5: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं. अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें.
7: फिर से स्वागत है दोनों आपका कार्यक्रम में. मैम, आज है ऋषि पंचमी का पर्व जो भारतीय संस्कृति में ऋषियों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता का प्रतीक है. ऋषि पंचमी भाद्र पर्व मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सप्तऋषियों कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ का स्मरण और पूजन किया जाता है. पौराणिक मान्यता के अनुसार महिलाओं से जाने अनजाने में होने वाले धार्मिक या घरेलू आचार विचार संबंधी दोषों के प्रायश्चित और शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता था. इसीलिए परंपरागत रूप से महिलाएं इस दिन इस व्रत को रखती है, स्नान पूजन करती है और सप्तऋषियों का ध्यान करती है और साथ ही अपने परिवार की सुख समृद्धि और मंगल की कामना करती है. इस व्रत में एक समय सामान्य जिसे हम मोर्धन कहते हैं वो खाया जाता है. ऋषि पंचमी हमें अपनी संस्कृति, परंपराओं और जीवन मूल्यों से जुड़े रहने का संदेश देती है. साथ ही यह पर्व प्रकृति, स्वच्छता और आत्मसंयम के महत्व को भी याद दिलाता है. तो सभी बहनों को ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं. तब चलते हैं गीत संगीत की ओर. सुन लेते प्यारा सा गीत और संदेश.

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: स्वागत है मैंने आपका कार्यक्रम में। पीनो, आज है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। यह प्रतिवर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन लोकतंत्र के महत्व, नागरिकों की भागीदारी और सभी के अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। पीनो, लोकतंत्र केवल मतदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अपनी बात रखने, दूसरों के विचारों का सम्मान करने और समाज व देश के विकास में जिम्मेदारी के साथ भाग लेने की भावना भी इसमें शामिल है। और इसी के साथ आज ही अभियंता दिवस भी है, जो कि हर वर्ष 15 सितंबर को भारत में अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन महान अभियंता और भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। अभियंता हमारे जीवन को आसान और सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सड़कें, पुल, भवन व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था, बिजली, संचार और आधुनिक तकनीक, इन सभी के विकास में इंजीनियरों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके बाद ये बात करते हैं दूरदर्शन दिवस की। दूरदर्शन दिवस ये भी प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर 1959 को शुरुआत हुई थी इसकी। और यह दूरदर्शन ने भारत में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन को घर घर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शुरुआती दौर में सीमित प्रसारण से शुरू हुआ दूरदर्शन आज भारतीय जनजीवन, संस्कृति और संचार के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। आज डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में संचार के अनेक माध्यम हमारे सामने हैं, लेकिन दूरदर्शन की विश्वसनीयता और उसकी स्मृतियां आज भी लोगों के मन में खास स्थान रखती है। तो मैंने ये तो थी चर्चा, अब समय हो चला है कार्यक्रम को समाप्त करने का। तो दीजिए अनुमति आपकी दोस्त प्रीति यादव को फिर मिलने के वादे के साथ। नमस्कार।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से महिला श्रोताओं का कार्यक्रम नारी लोक, जो यहीं संपन्न हुआ। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं विविध भारती के मुंबई केंद्र पर, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

कार्यक्रम तरानीमें पुराने में आप सभी का स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गाने के साथ। इसे गाया है लता मंगेशकर ने, फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन।

0: सर्वश्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा। तो कुदरत को जिसको बनाना होता ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैम्प लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ।

तरानी ने पुराने कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे समाचारों के बाद। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
1: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहां हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
0: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले से संबंधित प्रश्न पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, आम नागरिकों और असैन्य बुनियादी

0: ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि खेलों में प्रगति राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मिजोरम में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्रीमती खड़से ने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भारत ने एचआईवी एड्स के उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सहायता के लिए आज बोत्सवाना को 10 टन एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इससे भारत के ग्लोबल साउथ साझेदारों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं और 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 18 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद याचिकाकर्ताओं और इन परीक्षाओं में चयनित कर्मचारियों को संबंधित पदों पर बने रहने की अनुमति दी गई, जिनकी नियुक्तियां सरकारी अधिसूचना से प्रभावित हुई थीं। केरलम के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने कहा है कि राज्य में बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार उच्च दरों पर बिजली खरीदने पर विचार कर रही है। उन्होंने बिजली कटौती की समस्या के तुरंत समाधान का भरोसा दिलाया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज 778 अंक की गिरावट के साथ 74,004 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 280 अंक गिरकर 23,119 पर बंद हुआ। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट मैच आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज कर भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही होगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक, कर्नाटक, पुदुचेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने मछुआरों को कल तक अरब सागर में और शनिवार तक दक्षिण पश्चिम अरब सागर के पश्चिम मध्य अरब सागर से सटे कुछ हिस्सों में न जाने की सलाह दी है। शनिवार तक बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम तराने नए पुराने में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
2: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
3: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
4: क्या बात है।
3: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
2: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
3: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
2: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 6:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी डेयरी में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ और सबसे पहले आपका धन्यवाद देती हूँ कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें संपर्क करने के लिए। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है
1: 9414066730। मैं नंबर एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी 9414066730।
0: श्रोताओं, आज हम जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं उस विषय का नाम है मेरी बेटी मेरा अभिमान। श्रोताओं, आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे आसपास गांव शहरों में बेटियों को लेकर कैसी कैसी बातें सामने आ रही हैं। आजकल ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि उनके घर में एक लड़के का जन्म हो। हर 100% में से 90%

0: लोगों की उम्मीद लड़कों पर ज्यादा रहती है, पर अगर लड़के के जन्म की जगह लड़की का जन्म हो जाता है तो वह लोग उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं और उसके साथ बुरा बर्ताव करने लग जाते हैं। हमारी आज की नई पीढ़ी में बहुत बदलाव आ गया है, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी लोग पुरानी अवधारणाओं को मानते हैं। हमारा आज का नाटक इसी विषय पर आधारित है कि किस तरह एक औरत को गर्भ अवस्था में सारे ससुराल वाले प्यार करते हैं, उसकी फिक्र करते हैं कि उनकी बहू एक बेटे को जन्म देगी और उनका वंश आगे बढ़ाएगी, परंतु जब लड़की का जन्म हो जाता है तो उससे कैसा बुरा बर्ताव करते हैं और वह औरत कैसे साहस के साथ जिंदगी की लड़ाई को लड़कर जीत लेती है और कैसे अपनी बेटी को अकेले जिंदगी में सफल बनाती है। आइए सुनते हैं इस पर आधारित एक नाटक।
1: सुमन, सुमन बेटा, जल्दी से दरवाजा खोलो। कहाँ हो तुम? जल्दी दरवाजा खोलो।
2: पिताजी, आ गए आप? क्या हुआ, आप ऐसे जोर जोर से आवाज क्यों लगा रहे हो? सब ठीक तो है ना पिताजी?
1: सब ठीक है बेटा, मेरे लिए जल्दी से एक गिलास पानी लेकर आओ, क्योंकि फिर मुझे बाजार भी जाना है।
2: पिताजी, अभी तो आप आए हो और फिर दोबारा इतनी जल्दबाजी में बाजार क्यों जा रहे हो?
1: बेटा, तुम्हारी बुआ का फोन आया था, वो बता रही थी कि तुम्हें देखने के लिए आज शाम को लड़के वाले आ रहे हैं। तुम तैयार है ना? मैं बाजार से सामान लेकर आता हूँ।
2: पर पिताजी, माँ के जाने के बाद आपकी और घर की देखरेख मैं ही करती हूँ, पर अगर मैं भी शादी करके चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा? आपको खाना बनाकर कौन खिलाएगा?
1: अरे बेटा, हर लड़की को एक ना एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। तुम मेरी चिंता ना करो, मैं अपना ख्याल रख लूँगा, तुम बेफिक्र रहो।
2: ठीक है पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो।
0: इस प्रकार शाम को सुमन को देखने के लिए लड़के वाले आ जाते हैं। उन्हें सुमन बहुत पसंद आती है, सुमन के घर वालों को भी लड़का बहुत पसंद आता है और फिर रिश्ता पक्का हो जाता है। 2 महीने बाद सुमन की शादी हो जाती है और सुमन अपने ससुराल चली जाती है।
3: सुमन बेटा, यहाँ आना, मेरे लिए एक कप चाय बना दो, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है।
2: माँ जी, अभी बनाकर लाती हूँ।
4: सुमन, मेरे लिए खाना लगा दो।
2: जी, अभी लाई खाना।
3: सुमन, मेरे कपड़े धो देना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है।
2: जी दीदी, धो रही हूँ अभी।
3: हे भगवान, इस घर में कोई भी काम समय पे नहीं होता, एक काम करवाने के लिए 4-4 बार बोलना पड़ता है। मैंने कब से चाय के लिए बोला था, पर तुमसे एक काम भी सही से नहीं होता। बड़ी बहू को देखो, घर बच्चे ऑफिस सब कुछ आराम से संभाल लेती है।
2: ये लीजिए माँ, आपकी चाय। वो मैं सुरेश को खाना दे रही थी ना, इसीलिए चाय लाने में देरी हो गई है।
3: ठीक है, जाओ जाकर और काम कर लो।
4: सुमन, यहाँ आओ।
2: जी बोलिए, कुछ चाहिए था क्या आपको?
4: यहाँ टेबल पर मेरी एक फाइल रखी थी और वो फाइल मुझे मिल नहीं रही है, मुझे मीटिंग में भी जाने के लिए देरी हो रही है।
2: नहीं जी, मैंने तो टेबल पर कोई फाइल नहीं देखी। आप रुकिए, मैं कमरे में ढूंढती हूँ।
4: रहने दो, तुम क्या फाइल को ढूंढोगी, तुम्हें पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं।
2: जी मुझे याद आया, वो बड़ी भाभी के बच्चे सुबह सुबह एक फाइल को लेकर गए थे, मुझे लगा कि शायद बड़ी भाभी ने ऑफिस के काम के लिए मंगवाई होगी।
4: अरे यार, कैसी अनपढ़ औरत पल्ले पड़ गई है, तुमसे ठीक तो भाभी है जो सारे काम को और पूरे ऑफिस को सही ढंग से मैनेज कर लेती है। अगर भाभी को फाइल चाहिए होती तो वो सीधा वो मुझसे मांगती, बच्चों से थोड़ी ना कहती।
2: आप एक बार भाभी से पूछ लीजिए, शायद वो फाइल अपने ऑफिस में लेकर गई होगी।
4: ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ।
2: एक बार बड़ी भाभी के कमरे में जाकर देखती हूँ, शायद बच्चों ने फाइल वहीं रखी हो। अरे बच्चों, ये तुमने क्या किया, यह फाइल तुम्हारे चाचा जी की थी और तुमने इसे फाड़ दिया, तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है क्या, बड़ों की चीजों को हाथ नहीं लगाते।
0: शाम को आरती के बच्चे रोते हुए अपनी माँ आरती के पास जाते हैं और झूठ बोलते हैं कि हमारी सुमन चाची ने हमें बहुत सारा मारा। फिर आरती सुमन के पास आकर उसे बहुत बुरा बर्ताव करती है और गुस्से में उसे यहाँ तक बोलते हैं कि खुद तो शादी को 4 साल हो गए और घर को एक वारिस भी नहीं दे सकी और मेरे बच्चों को देखकर जलती रहती है। इन सब बातों को सुनकर सुमन हर समय उदास रहने लग जाती है। वो हॉस्पिटल से अपना इलाज करवाती है और आखिरकार

0: महीनों बाद सुमन को माँ बनने की खुशी मिल जाती है और सुमन बहुत खुश होती है। इस तरह सभी खुश होते हैं और सुमन की भी प्रेगनेंसी को 9 महीने पूरे हो जाते हैं। डिलीवरी का समय आ जाता है।
1: सुमन बेटा, तुम्हारी डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा है, अब जल्दी से मुझे मेरे पोते का मुंह दिखा दो, अब और इंतजार नहीं होता।
2: पर माँ जी, पोते ही का क्यों? अगर लड़की हुई तो वो भी तो आपके ही बेटे का अंश होगी।
1: देखो सुमन, ऐसी खुशी के मौके पर ये लड़की का नाम मत लो। मुझे देखो, मेरे पास भी 2 लड़के हैं, और तुम्हारी बड़ी जेठानी उसको देखो, उसके पास भी 2 लड़के हैं, और लड़कों से ही वंश आगे बढ़ता है।
3: हाँ सुमन, मुझे भी मेरा राजकुमार प्यारा सा बेटा चाहिए। मेरे दिल में बेटे को लेकर बहुत सारे अरमान हैं।
2: ठीक है जी, जैसे परमेश्वर की इच्छा होगी। हाय, मर गई। बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझसे सहन नहीं होता। कोई है क्या? मुझसे सहन नहीं होता दीदी। माँ जी, मेरे पास आओ, मुझे अस्पताल लेकर चलो।
1: सुमन, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो?
2: दीदी, मुझे अस्पताल लेकर चलो, मुझे डिलीवरी का पेन हो रहा है और मुझसे सहन नहीं हो रहा।
1: सुमन रुको, मैं अभी देवर जी को फोन करती हूँ, वो एम्बुलेंस को बुलाते हैं।
2: जल्दी करो दीदी।
1: हेलो देवर जी, आप जल्दी घर आ जाइए, सुमन को लेकर हॉस्पिटल जाना है।
3: मैं अभी आता हूँ।
4: आप सभी में से सुमन के साथ कौन आए हैं?
3: हाँ जी डॉक्टर साहब, बोलिए।
4: क्या आप सुमन के पति हैं?
3: जी।
4: बधाई हो, आपके घर में एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया है।
3: डॉक्टर साहब, आपको शायद कुछ गलतफहमी हुई है, सुमन को तो लड़का हुआ होगा ना?
4: आप कैसी बातें करते हो, सुमन को एक प्यारी सी लड़की हुई है।
0: सुमन के ससुराल वालों की चाहत ये थी कि सुमन एक लड़के को जन्म दे, परंतु जब सुमन ने एक लड़की को जन्म दिया तो उनके घर में खुशी का माहौल मातम में बदल गया और सुमन की सास और उसके पति ने उसको घर से निकाल दिया। और सुमन की सास ने उससे कहा कि इस मनुष्य को लेकर मेरे घर से निकल जा, क्योंकि तू हमारे घर को एक चिराग नहीं दे सकती। इस तरह सुमन ससुराल को छोड़कर अपने पिता के घर चली गई और सुमन को अपने मायके आए हुए अपनी बेटी के साथ 5 साल बीत गए।
4: सुमन बेटा, तुमसे मिलने हमारे गांव के स्कूल के मास्टर जी आए हैं, वो तुमसे तुम्हारी बेटी के बारे में बात करना चाहते हैं।
5: नमस्ते सर जी, कैसे हो आप?
6: नमस्ते सुमन, मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो और आपकी बेटियाँ कैसी है?
5: मैं ठीक हूँ सर जी, बस अपनी बेटी के भविष्य की चिंता रहती है, क्योंकि मैं तो इतना पढ़ लिख नहीं सकी, अब मेरी बेटी का भविष्य भी पता नहीं कैसा होगा।
6: सुमन बेटा, आपके पापा ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया है और आपके ससुराल की स्थिति के बारे में भी बता दिया है, आप बेफिक्र रहो, आपकी बेटी का भविष्य सुरक्षित है।
5: भविष्य सुरक्षित है, पर कैसे?
6: क्या आपको नहीं पता सरकार लड़कियों के लिए कितनी सुविधा प्रदान कर रही है? अब कोई भी लड़की अपने माता पिता के ऊपर बोझ नहीं है।
5: सर जी, आप मुझे विस्तार से इस बारे में समझाइए, ताकि मैं अपनी बेटी का भविष्य को उज्जवल बना सकूं।
6: सुमन बेटा, अब सरकार लड़कियों का जो पढ़ाई का खर्चा है मुफ्त में उठाती है, स्कूल में लड़कियों के लिए मिड डे मील और स्कूल की वर्दी की व्यवस्था की गई है।
5: अच्छा सर जी, सरकार लड़कियों के लिए इतनी व्यवस्था करती है?
6: हाँ बेटा, सरकार ने लड़कियों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई हैं।
5: धन्यवाद सर जी, आज आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी है, अब मैं अपनी बेटी को बेफिक्र होकर पढ़ाऊंगी और उसके सपनों को पूरा भी करूंगी।
0: इस तरह सुमन अपनी बेटी को बहुत पढ़ाती है और उसकी बेटी सुहानी पढ़ लिख कर एक बड़ी डॉक्टर बन जाती है और शहर के बहुत बड़े हॉस्पिटल में सुहानी की ड्यूटी होती है। और सुमन और उसके पिता इस बात से बहुत खुश होते हैं। फिर एक दिन सुमन की सास की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और सुमन की सास को उसी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है जिसमें सुहानी की ड्यूटी होती है, पर सुमन के ससुराल वाले इस बात को नहीं जानते थे।
1: हाय, मैं मर गई, मैं मर जाऊंगी बेटा, अब शायद मैं नहीं बचूंगी।
3: अरे माँ, आप ऐसा मत बोलो, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगी।

0: माँ जी, आप ठीक हो जाओगी, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा।
1: अरे मुझे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मुझसे सहन नहीं हो रहा है।
2: डॉक्टर साहब, मेरी माँ को बचा लीजिए, मेरी माँ को पता नहीं क्या हो गया, आप प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए।
0: आप चिंता मत कीजिए, घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी।
2: धन्यवाद डॉक्टर साहब।
0: आपकी माँ को दिल का दौरा पड़ा है, हमने उनका ट्रीटमेंट कर दिया है, अब वो खतरे से बाहर हैं, परंतु अगर उनको यहाँ लाने में थोड़ी सी देर हो जाती तो शायद हम उनको नहीं बचा पाते।
2: डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: श्रोताओं, सुमन की सास का ट्रीटमेंट होने के बाद जब सुमन की सास खतरे से बाहर आ जाती है, तभी अचानक से सुमन भी वहाँ आ जाती है।
0: माँ, आप यहाँ कैसे, सब ठीक तो है ना?
2: सुमन, तुम यहाँ, और ये डॉक्टर तुम्हें माँ क्यों बोल रही है?
4: सुरेश, यह मेरी बेटी है जो आज इतनी बड़ी डॉक्टर है।
5: क्या मतलब, ये तुम्हारी वही बेटी है जिसे हमने घर से बाहर निकाल दिया था?
4: हाँ माँ जी, ये मेरी वही बेटी है जिसको आपने अपशगुन कहकर घर से निकाल दिया था, पर देखिए आज इस बेटी ने ही आपको नई जिंदगी दी है, आपको मौत के मुंह से बाहर निकाला है।
5: मुझे माफ कर दो सुहानी बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हमेशा यही समझती थी कि लड़के ही घर का चिराग होते हैं और लड़कों से ही घर रोशन होता है।
0: दादी जी, अगर मेरी माँ मेरा साथ ना देती और मुझे इतना पढ़ाती लिखाती नहीं, तो शायद मैं आज इतनी बड़ी डॉक्टर ना बनती। और मुझे और मेरी माँ को मेरी लड़की होने पर बहुत गर्व है।
2: सुमन, मुझे माफ कर दो, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी, आज तुमने ये साबित कर दिया कि लड़कियां बोझ नहीं होती, बल्कि अगर उनका साथ दिया जाए तो वो घर का चिराग बनकर घर को रोशन करती है।
4: आप ठीक कह रहे हैं, और आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही बहुत है।
2: चलो सुमन, हमारी बेटी के साथ घर चलो।
5: हाँ बहू, अब घर चलो।
4: आज मुझे पता चल गया कि मेरी बेटी मेरा अभिमान है, मुझे अपनी बेटी पर गर्व है।
3: श्रोताओं, बेटियां परमेश्वर का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है, और यह अनमोल तोहफा किसी किसी को नसीब होता है।
6: इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं, हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है
7: 9414066730। मैं नंबर एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी, 9414066730।
6: यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और मुझे यानी कि प्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
8: जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राजस्थान सहित 6 राज्यों के बीच किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना के लिए आज नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। प्रदेश में पंचायती राज चुनावों के लिए आरक्षण लॉटरी निकालने का काम अब नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद किया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने न्याय, शांति और विकास के प्रति समर्पण को लोकतंत्र का बड़ा आधार बताया, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में डीआरडीओ और उद्योग जगत के बीच साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ, और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान सहित 6 राज्यों के बीच किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना के लिए आज नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने

0: एमओयू पर हस्ताक्षर किए। किशाऊ परियोजना यमुना की प्रमुख सहायक टोंस नदी पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर प्रस्तावित है। करीब 15,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना से 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जो राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा को इसका लाभ मिलेगा। परियोजना से राजस्थान को 124 एमसीएम पानी आवंटित होगा, जिसे हरियाणा के हांसी वासी से चूरू तक भूमिगत पाइपलाइन के जरिए पहुंचाने की योजना है। इससे सीकर, चूरू और झुंझुनू सहित शेखावाटी क्षेत्र की पेयजल और सिंचाई जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्यों की सहमति से दशकों से अटकी परियोजनाओं का समाधान हो रहा है। उन्होंने समझौते को राज्यों के आपसी सहयोग की मिसाल बताया।
1: मित्रों, हम कह सकते हैं जो दशकों से अटके हुए ऐसे विवाद थे जो सरकार सोचना भी नहीं चाहती थी, क्या आज उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के बीच आज ये किसानों का समझौता इन छह राज्यों के बीच में हुआ है, जिसका फायदा सिंचाई का भी होगा, पीने के पानी का भी होगा, पर्यावरण की दृष्टि से भी होगा। और हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से इन छह राज्यों में प्रगति की मिसाल भी बनेगी। मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं।
0: प्रदेश में होने वाले पंचायती राज चुनावों के लिए आरक्षण संबंधी लॉटरी निकालने का काम अब नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद किया जाएगा। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विकास विभाग की ओर से जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए लॉटरी निकालने के लिए 17 सितम्बर तारीख तय की गई थी। वहीं सरपंच और वार्ड पंच के लिए लॉटरी निकालने के लिए तारीख 18 सितंबर रखी गई थी। विभाग के उप शासन सचिव जसवंत की ओर से आज सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र जारी कर इन तिथियों पर लॉटरी निकालने के लिए काम को स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि नगरीय निकायों के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया में जिला स्तरीय अधिकारियों के व्यस्त रहने के कारण ये निर्णय किया गया है। विभाग की ओर से आरक्षण लॉटरी निकालने के लिए नई तारीखों के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारियों को अलग से अवगत कराया जाएगा। राज्य की सभी आंगनबाड़ियों में 25 सितंबर से आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 7 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्कर्स और सहयोगिनियों का सम्मान किया जाएगा तथा बच्चों के लिए पेंटिंग, खेलकूद और अन्य रचनात्मक गतिविधियां होंगी। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज जयपुर में महिला और बाल विकास विभाग की बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को लेकर संवाद आयोजित करने तथा इस क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले लोगों को कार्यक्रम से जोड़ने के निर्देश दिए। कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुभकामना संदेश और बच्चों द्वारा तैयार पुस्तक भी आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचाई जाएगी। प्रदेश में मातृ, नवजात शिशु और किशोर स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने तथा इन सेवाओं की पहुंच तथा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार और यूनिसेफ के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई है। यूनिसेफ इंडिया के उप प्रतिनिधि जस्पर मॉलर ने आज जयपुर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर से मुलाकात के दौरान इस संबंध में विचार विमर्श किया। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित और संवेदनशील वर्गों तक बेहतर सेवाएं पहुंचाने तथा नवाचारों को बड़े स्तर पर लागू करने पर जोर दिया गया। श्री मोलर ने प्री सर्विस मेडिकल एजुकेशन में बाल अधिकारों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि सबके लिए न्याय, शांति और विकास के प्रति समर्पण लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार है। श्री बागड़े ने ये बात आज जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में भारतीय युवा संसद के 31वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए कही। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र संवाद और लोगों में विश्वास पैदा करने से मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की परिभाषा में मानवाधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव मुख्य बिंदु हैं।

0: पाड़ नहीं है। हो सकता है कि मैं सभी लोकतांत्रिक प्राणियों में स्वतंत्रता, सभी लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, मानवाधिकार भी है और सभी का सम्मान और निष्पक्ष चुनाव, ऐसा सभी देश ने अपने अपने लोकतंत्र की जो परिभाषा की है उसमें रखा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि डीआरडीओ और उद्योग जगत के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। श्री सिंह ने आज ये बात नई दिल्ली में डीआरडीओ इंडस्ट्री सिनर्जी मीट विमर्श 2026 को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि डीआरडीओ ने मिसाइल, रडार, लड़ाकू विमान, पनडुब्बियों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों के साथ साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भी अपनी क्षमता साबित की है।
2: पीडीएफ के माध्यम से स्टार्टअप को ग्रांट्स दिए जा रहे हैं और अनेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी है। आईडेक्स ने भी डिफेंस इनोवेशन के लिए एक नया इकोसिस्टम भी तैयार किया है, जहां स्टार्टअप हमारी वास्तविक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। अब डीआरडीओ और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन में साझेदारी हमें बढ़ानी होगी।
1: जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना की ओर से आयोजित ड्रोनथॉन 2026 का आज दूसरा दिन है। तीन दिन के इस आयोजन का उद्देश्य मानव रहित प्रणाली उद्योग के साथ सीधे संवाद और वास्तविक परिचालन परिस्थितियों में स्वदेशी तकनीकों की क्षमता का आकलन करना है। ड्रोनथॉन में देश के मानव रहित प्रणाली क्षेत्र से जुड़ी 20 से अधिक रक्षा कंपनियां, स्टार्टअप, एमएसएमई, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और नवोन्मेषक हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियर्स डे पर देश के सभी इंजीनियरों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने महान इंजीनियर और राष्ट्र निर्माता सर एम विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंजीनियर बेहतर भविष्य के निर्माण, नवाचार और समाधान उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि सर एम विश्वेश्वरैया की इंजीनियरिंग प्रतिभा और राष्ट्र निर्माण की दूरदृष्टि आज भी सभी को प्रेरित करती है।
3: महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जा रहा है। उनके पदचिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं।
4: मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदरपूर्वक नमन करता हूं।
1: प्रदेश में इंजीनियर्स डे पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। भरतपुर में अभियंता फोरम की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया। पाली में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं रखी गईं। लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में एक विशेष स्वच्छता अभियान के तहत ऑनलाइन वेब पोर्टल शुरू करेंगे। इस पोर्टल के जरिए 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले विशेष अभियान की प्रगति पर नजर रखी जाएगी। ये अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा और सभी सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये छठा विशेष स्वच्छता अभियान है। इसमें नागरिकों से जुड़ी गतिविधियों और अच्छी कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के साथ ई वेस्ट के संग्रह, उसे अलग करने और उचित निपटारे पर भी ध्यान दिया जाएगा। प्रदेश में ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे के तहत विभिन्न स्कूलों में आज विधिक जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम हुए। इसी कड़ी में आज पाली के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विक्रम सिंह भाटी ने विद्यार्थियों को बाल अधिकार, साइबर सुरक्षा और सोशल मीडिया के दुरुपयोग की जानकारी दी। उन्होंने बाल तस्करी, अपहरण और मानव तस्करी से जुड़े कानूनी प्रावधानों तथा किशोर न्याय अधिनियम के बारे में भी बताया। वहीं सवाईमाधोपुर में स्कूलों में शिविर लगाकर न्यायिक अधिकारियों ने बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताया। राजस्थान विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए यूआरएटीपीजी के दूसरे चरण के आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। विद्यार्थी अब कल शाम 4 बजे तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे, जबकि आवेदन की हार्ड कॉपी 17 सितंबर तक जमा की जा सकेगी।

जाएगी। विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा संयोजक डॉक्टर निकी चतुर्वेदी ने बताया कि विद्यार्थियों की भलाई को ध्यान में रखते हुए आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राजस्थान सहित 6 राज्यों के बीच किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना के लिए आज नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। प्रदेश में पंचायती राज चुनावों के लिए आरक्षण लॉटरी निकालने का काम अब नगर निकाय चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद किया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने न्याय, शांति और विकास के प्रति समर्पण को लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार बताया। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में डीआरडीओ और उद्योग जगत के बीच साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका।

और उद्योग जगत के बीच साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से डूंगरपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं चिंतन जोशी। अरावली पहाड़ियों की गोद में सोम और माही नदियों के पास बसे डूंगरपुर जिले में बीते दिनों कई गतिविधियां हुई। जिले की चिट्ठी में हम बात करेंगे निकाय चुनाव और परिणाम की, गणेशोत्सव और जन्माष्टमी की, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और बाल विवाह रोकथाम के लिए चलाई जा रही जन जागृति मुहिम की। साथ ही बात करेंगे विकसित भारत जन सेवा अभियान की। जिले की चिट्ठी में सबसे पहले डूंगरपुर परिषद और सागवाड़ा नगर पालिका चुनाव की बात करते हैं। डूंगरपुर नगर परिषद के 40 वार्डों में से 24 में भाजपा ने जीत दर्ज की। पार्टी के दो प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए। वहीं कांग्रेस ने 12 और बीएपी ने 3 तथा 1 सीट पर निर्दलीय ने कब्जा जमाया। यहां पहले चरण के तहत 9 सितंबर को मतदान हुआ। वहीं सागवाड़ा नगर पालिका में दूसरे चरण के तहत 11 सितंबर को वोट डाले गए। यहां 35 वार्डों के लिए लोगों ने मतदान किया। इसमें 23 में भाजपा ने जीत दर्ज की। 8 वार्डों में कांग्रेस और 4 में बीएपी विजयी रही। डूंगरपुर नगर परिषद में लगातार 8वीं बार भाजपा का बोर्ड बनने जा रहा है। जिला कलेक्टर देशल दान की अगुवाई में पिछले दिनों जल और स्वच्छता मिशन की बैठक हुई। जल जीवन मिशन के तहत हुई इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौर ने की। इस दौरान हर घर नल कनेक्शन और अन्य कामों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में सीईओ ने कहा कि जिन गांवों में हर घर जल का काम पूरा हो चुका है उन्हें प्रमाण पत्र जारी किए जाए, साथ ही इसकी जानकारी पोर्टल पर दर्ज की जाए। श्री राठौर ने अधिकारियों को जल सेवा आकलन के कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिले में विकसित भारत जन सेवा अभियान की तैयारियां की जा रही है। 17 सितंबर से शुरू होकर ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। इसके तहत विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे। अभियान के तहत जन सेवा से जुड़े अनेक कार्यक्रम रखे जाएंगे। इनमें रक्तदान शिविर, शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न प्रतियोगिताएं, प्रेरणादायी वीडियो प्रदर्शन के अलावा रैलियां भी होंगी। साथ ही आशा सहयोगिनियों और आंगन कार्यकर्ताओं का अभिनंदन और श्रमदान तथा सामुदायिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। जिले में पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत हुए इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्व की जानकारी दी गई। इस मौके पर निबंध प्रतियोगिता भी रखी गई। इसमें मनीष यादव ने पहला स्थान प्राप्त किया, अरुण कुमार रोथ दूसरी और हिमांक चौबीसा तीसरे स्थान पर रहे। जिले के बिच्छीवाड़ा क्षेत्र के रातापानी में पिछले दिनों एक पेड़ मां यशोदा के नाम कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जिला प्रशासन और वन विभाग की ओर से रखे गए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रभारी सचिव और आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने की। इस मौके पर उन्होंने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों ने 25 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधे लगाए। महिला अधिकारिता और समेकित बाल विकास विभाग ने पिछले दिनों डूंगरपुर में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। काली बाई भील उड़ान योजना के सुचारू संचालन के लिए ये शिविर रखा गया। इस दौरान महिला पर्यवेक्षकों को संबंधित पोर्टल के बारे में बताया गया। मास्टर ट्रेनर्स ने उन्हें पोर्टल की कार्यप्रणाली का प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के अधिकारियों ने पिछले दिनों डूंगरपुर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का दौरा किया। उन्होंने विद्यार्थियों और शिक्षकों को राजस्थान स्टार्टअप क्वेस्ट के बारे में बताया। अधिकारियों ने बताया कि ब्लॉक स्तर पर चयनित टीमों को पुरस्कृत किया जाएगा। शीर्ष टीमें जिला और राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व करेंगी। शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को जिले में कई कार्यक्रम हुए। विभिन्न विद्यालयों में सम्मान समारोह रखे गए। बीरड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता हुई। बाल विवाह की रोकथाम में शिक्षकों की भूमिका विषय पर हुई इस प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। गणेश चतुर्थी का पर्व जिले भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। शुभ मुहूर्त में गणेश प्रतिमाओं को विराजित किया गया। विभिन्न गणेश मंदिरों और पंडालों में गणेश स्तुति हुई। इसके साथ ही डूंगरपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, राजस्थान समेत 6 राज्यों बीच किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना सारू आज नई दिल्ली में करार माथे सही करी जी। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव सारू आरक्षण री लॉटरी, नगर निकाय चुनाव री प्रक्रिया पूरी भया पाछे निकाली जावेला। राज्यपाल हरिभाव बागड़े न्याय शांति और विकास रा प्रति समर्पण ने लोकतंत्र री मोटी बुनियाद बताया। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहो DRDO और उद्योग जगत पीछे भागीदारी री देश ने रक्षा विनिर्माण रो वैश्विक केंद्र बनावन माए खास भूमिका। समाचारों सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, राजस्थान समेत 6 राज्यों बीचे किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना सारू आज नई दिल्ली में करार माथे सही करी जी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह री सदारत में हुई मीटिंग में जलशक्ति मंत्री CR पाटिल और 6 राज्यों रा मुख्यमंत्री करार माथे सही कीनी। किशाऊ परियोजना यमुना नदी री खास सहायक टौंस नदी माथे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश री सरहद माथे प्रस्तावित है। करीब 15,000 करोड़ रुपए रा खर्च री ई परियोजनाओं 660 मेगावाट बिजली बनाई जावेला, जिनरो राजस्थान उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश दिल्ली उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने फायदो मिलेला। परियोजनाओं राजस्थान ने 124 MCM पानी मिलेला, जिनने हरियाणा रा हांसीवासियों राजस्थान रा चूरू ताई जमी हेटे पाइपलाइन रे जरिए पुगावन री योजना है। इनु सीकर चूरू और झुंझुनू समेत शेखावाटी हल्का माई पीवन और पाणस सारू पानी री जरूरत पूरी करण माई मदद मिलेला। ई मौके मुख्यमंत्री बहनलाल शर्मा कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माई राज्यों री सहमतियों कई बरसों अटक्योड़ी परियोजनाओं रा काम भे रहा है। वे ई करार ने राज्यों रा आपसी सहयोग री मिसाल बतायो।
1: मित्रों, हम कह सकते हैं जो दशकों से अटके हुए ऐसे विवाद थे जो सरकार सोचना भी नहीं चाहती थी, क्या आज उत्तराखंड हिमाचल हरियाणा उत्तर प्रदेश राजस्थान और दिल्ली के बीच आज ये किसानों का समझौता इन 6 राज्यों के बीच में हुआ है, जिसका फायदा सिंचाई का भी होगा, पीने के पानी का भी होगा, पर्यावरण की दृष्टि से भी होगा। और हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से इन 6 राज्यों में प्रगति की मिसाल भी बनेगी। मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता।
0: प्रदेश में पंचायती राज चुनाव सारू आरक्षण जुड़ी लॉटरी निकाल बारो काम अब नगर निकाय चुनाव री प्रक्रिया पूरी फिर पाछा करियो जावेला। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विकास विभाग री ओरों जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों सारू लॉटरी निकाल बारी तारीख 17 सितंबर और सरपंच और वार्ड पंच सारू लॉटरी री तारीख 18 सितंबर तय करी ची ही। विभाग रा उप शासन सचिव जसवंत री ओरों आज सगला जिला निर्वाचन अधिकारियों ने कागज लिखकर आज तिथियां माथे लॉटरी नी निकाल बारा हुक्म दिया चिया। इबीचे राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय चुनाव रातेत कुछ मतदान केंद्र माथे EVM में तकनीकी खराबी रह कारण ओजू वोट करावन रा हुक्म देना है। वोट काल समारा 7 से 6 बजे ताई पड़ेला। वोटां की गिनती 17 सितंबर न करी जावेला। प्रदेश में मायणा नुआ जन्मिया टाबर टाबरियां बच्चा और किशोराओं जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं ने और मजबूत बनावन सारू यूनिसेफ इंडिया रा उप प्रतिनिधि जैस्पर मोलर और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग रे प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ बीच आज जयपुर में बातचीत हुई। मीटिंग में स्वास्थ्य सेवाओं ने बेहतर तरीका जनता ताई पुगावन और नवाचारा ने मोटा पैमाना माथा लागू करण जुड़ी बातचीत करी जी। श्री मोलर प्री सर्विस मेडिकल एजुकेशन में बच्चा ना अधिकारों की जानकारी शामिल करण सारू कहो, जी पाछे प्रमुख शासन सचिव श्रीमती राठौड़ यूनिसेफ इबारा में विगतवार जानकारी देवन री अरज कीनी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंजीनियर्स डे रे मौके देश का सगला इंजीनियरों ने शुभकामनावां दीनी है। वह महान इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया ने श्रद्धा भाव सागर याद करता थका कहो कि इंजीनियर बेहतर भविष्य सारू निर्माण नवाचार और समाधान मुहैया करावन माए खास काम करे है। प्रधानमंत्री कहो कि सर एम विश्वेश्वरैया री इंजीनियरिंग प्रतिभा और देश बनावन री दूर दृष्टि सगला ने सीख देवे है।
1: महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पदचिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदरपूर्वक नमन करता
0: हूं। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राज्यपाल हरिभाव बागड़े कहो है कि सगला सारू न्याय शांति विकास और मानवाधिकारों के प्रति समर्पण लोकतंत्र री सब मजबूत बुनियाद है। वह अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस रे मौके आज जयपुर माए राखी जया भारतीय युवा संसद रा 31वां अधिवेशन माए बोल रहा है। श्री बागड़े नौजवानों लोकतंत्र ने मजबूत बनावन रा काम माए सक्रिय भूमिका निभावन सारू कहो। वह कहो कि बातचीत और जनता माए भरोसों पैदा करनो लोकतंत्र मजबूत बने है। राज्यपाल नौजवानों लोकतंत्र रा पहरेदार रा तौर काम करने बाबत कहो। श्री बागड़े कहो कि लोकतंत्र री परिभाषा माए मानवाधिकार व्यक्तिगत आजादी और निष्पक्ष चुनाव खास बिंदु है।
2: एक सही मॉडल नहीं है, हो सकता है कि मैं सभी लोकतांत्रिक प्राणियों में स्वतंत्रता, सभी लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, मानवाधिकार भी है और सभी का सम्मान और निष्पक्ष चुनाव, ऐसा सभी देश ने अपने अपने लोकतंत्र की जो परिभाषा की है उसमें रखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहो है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और उद्योग जगत बीचे भागीदारी भारत ने हिफाजत जुड़िया साजो सामान बनावन रो वैश्विक केंद्र बनावन माए खास काम कर सके है। श्री सिंह आज नई दिल्ली माए DRDO इंडस्ट्री सिनर्जी मीट विमर्श 2026 माए बोल रहा है। वह कहो कि DRDO मिसाइल राडार लड़ाकू विमान पनडुब्बियां और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां सागे कृत्रिम बुद्धिमता AI रा हल्का मा एक क्षमता साबित कीनी है।
3: EDF के माध्यम से स्टार्टअप को ग्रांट्स दिए जा रहे हैं और अनेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी है। IDEX ने भी डिफेंस इनोवेशन के लिए एक नया इकोसिस्टम भी तैयार किया है जहां स्टार्टअप हमारी वास्तविक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। अब DRDO और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, रिसर्च डिजाइन टेस्टिंग सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन में साझेदारी हमें बढ़ानी हो।
0: जैसलमेर री पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना री ओर रखा जा रहा ड्रोनेथॉन 2026 कार्यक्रम रो आज दूजो दिन हो। तीन दिन रा ई आयोजन रो मकसद असली परिचालन हालत में देशी तकनीका का बूता री पहचान करनो है। ड्रोनेथॉन में देश रा मानव रहित प्रणाली हलकाओं जुड़ी 20-32 रक्षा कंपनियां स्टार्टअप और MSME समेत न्यारा न्यारा रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र रा उपक्रम शामिल फेरिया है। प्रदेश में चलाया जा रहा ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूजडे कार्यक्रम रात पालीरी न्यारी न्यारी स्कूल में विधिक जागरूकता कार्यक्रम रखी गया। पालीरा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सचिव विक्रम सिंह भट्टी विद्यार्थियों ने बाल अधिकार साइबर सुरक्षा और सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी। सवाई माधोपुर में आई स्कूल में शिविर लगार न्यायिक अधिकारी बच्चों ने मारा कानूनी हक री जानकारी दी। राजस्थान विश्वविद्यालय में न्यारा न्यारा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिला सारू UR ETPG रा दूजा

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी हिम्मत,
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: मैली धोती खुली चिकाया, करे जो मेहनत कदी लालच में न आया। बैग टूटी झोपड़ में भी होवे कोनी परेशान, अन्नदाता कहलावे है ए आपना किसान। किसान वाणी कार्यक्रम सुनवाला सगला काश्तकार भाई बहना।

0: चंचल रोड नेह भरियो मिठू मिठू राम राम और सगड़ा बड़ा बूढ़ा दादा दादी नाना नानी चाचा चाची ताऊ ताई मामा मौसी बहन भाईली बुआ सब ने ढोकर जैसा और मनस्विनी आपने भी घने मानू राम राम सा।
1: खूब खूब राम राम चंचल बहन और आपने किसानवाणी कार्यक्रम ने सुनबड़ा सगड़ा हेतालु श्रोता गणा ने काश्तकार भैया बहना ने मनस्विनी रो स्नेह भरो राम राम सा।
0: देखो आपा किसान वाणी तो कर ही रहा हाँ और काश्तकार जो है कोई भी देश को हो गए वो भी देश की रीढ़ हो गए है क्योंकि अगर किसान नहीं हो गए लो अन्न नहीं उपजे लो तो जो जनता है वह खावेली गई तो यह बात तो है ही है। लेकिन बीके सागे सागे ही जब तकनीकी को युग है और निरंतर बढ़वा की आगे जाबा की और जो आविष्कार करबा की नई नई जुगत लगाबा की नई नई खोज करबा की और नया नया संसाधन बनाबा की बात आवे है तो बीके भी आपाने सम्मान करना चाहिए जियान की आज को जो दिन है विशेष तौर 15 सितंबर और ई दिन आपा मनावा हाँ राष्ट्रीय स्तर पर अभियांत्रिकी दिवस और अभियांत्रिकी दिवस यानी जो इंजीनियर को दिन आपा कह सका हाँ अब आजकल तो भात भात का इंजीनियर हुआ लग गया साहब कि कोई तो कंप्यूटर का इंजीनियर है तो कोई बिजली का है तो कोई मशीना का है तो कोई इमारत बनावा का है भात भात का इंजीनियर है पर मोटा तौर पर यो जो दिन है यो समर्पित है आपना जो एक बहुत ही बढ़िया अभियांत्रिकी या अभियंता जो हुआ है मोक्ष कुंडम विश्वेश्वरिया बा को जन्मदिन आज के दिन आवे हो और 15 सितंबर 1861 में जन्मिया और आपको जो योगदान है वो यो है कृष्ण राज सागर बांध जो हैदराबाद शहर में बाढ़ सुरक्षा के ताई बनाये गये भी परियोजना में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया
1: और आपना इंजीनियर यानी कि आपना अभियांत्रिका केवल मशीन भवन या सड़क बना बड़ा विशेषज्ञ को नहीं हुए सा बल्कि वे समस्याओं रा वैज्ञानिक समाधान खोज और देश ने विकास की गति दे बड़ा आपना राष्ट्र निर्माता भी है।
0: ई हिसाब से तो जो माया हुए ना वे भी बड़ी बढ़िया सी इंजीनियर मानी जा सके क्योंकि वे भी राष्ट्र निर्माण के ताई जो मजबूत इरादा सैनिक बनावे है नागरिक बनावे है और जो जूना जूना क्षेत्र में जाए चाहे कोई डॉक्टर बने चाहे कोई काश्तकार बने कोई व्यापारी बने तो वे सब सफल हुए लेकिन बाकी पीछे भी जो जो शिल्पकार हुए है जो इंजीनियर हुए वह माँ हुए है।
1: बिल्कुल सा और वाके ही पीछे आज आपनो देश आधुनिक अति बढ़िया तरक्की कर रहे हो बिजली परिवहन संचार जल प्रबंधन चिकित्सा उपकरण अंतरिक्ष तकनीक डिजिटल तकनीक और औद्योगिक विकास में आपनो देश अग्रणी है सा।
0: बिल्कुल और अग्रणीय तो है ही है और आगे और बढ़े है यहाँ कह सका आपा की चांद सितारा छुए आपनो देश को हर एक नागरिक और इसके लिए जो नई नई तकनीका है बाने अपनाना चाहिए और जब नई तकनीका की बात आवे ना तो आज एक बहुत ही बढ़िया विशेषज्ञ जानकार से मुलाकात हुई और बहुत ही चोखी जानकारी नई तकनीका की जानकारी खेती बाड़ी से जुड़ोड़ी भी मैंने मिली तो अगर आपकी आज्ञा हो तो सुना दे आपने श्रोतावन है।
1: हाँ सुनाओ सर।
0: श्रोताओ आज आपने सागे कार्यक्रम में आया है राजेश कुमार सैनी आप उद्यान सलाहकार हो और आसो आपा जाना ला टेरेस गार्डनिंग समय की मांग टेरेस गार्डन ये टेरेस अर्थ समझ में आवे की छत पर और गार्डनिंग यानी बगीचो आपा लगा सका हाँ अब तो मोटो मोटो तो मने समझ में आवे है पर तकनीकी जो भाषा है या तकनीकी जानकारी है वे तो आपना पावना ही देशी तो सब पहली आप लोग कार्यक्रम में सैनी साहब घने मानो स्वागत राम राम सा।
2: राम राम सा
0: जी यान की आज आप टेरेस गार्डन की बात कर रहे हैं यो काई हुए है की तरीका सु एक आम श्रोता समझ सके बताओ साहब।
2: आमतौर पे ये कहा जाता है कि टेरेस गार्डन का मतलब होता है छत पे लगाए बगीचा जो बगीचा छत पे लगाया जाए उसको टेरेस गार्डन बोलते हैं और कुछ लोग इसको रूफ टॉप गार्डनिंग भी कहते हैं क्योंकि छत के ऊपर लगा जाता है तो इसमें खास बात ये होती है कि पूर्व में जो हम लोग खेती करने वाले लोग हैं जो गांव में रहते थे रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ आ गए शहरों में आने के बाद में जो प्लॉट लेके लोग रहने लगे तो उसमें प्लॉट बड़े लिए जाते थे और उसमें थोड़ा कुछ इलाके में खेती की जाती थी जिसको कि किचन गार्डन कहा जाता था परंतु जैसे जैसे नगर महानगरों में बदल गए तो उसकी वजह से जमीन पे भूमि पे दबाव बढ़ा जिसकी वजह से अब खाली मकान मकान है और उसकी छत है तो जब छत है तो उसके ऊपर खाली ये है कि छत के ऊपर आप कुछ गार्डनिंग का काम कर सकते हैं, बगीचा लगा सकते हैं, चाहे वो सब्जियों का बगीचा हो या फूलों का बगीचा हो या फिर बड़े पेड़ पौधे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से लोगों का जो शौक था प्रकृति से जुड़ाव रहना जरूरी है, तो लोगों ने चालू किया अपने छत पे काम करना, तो उसे टेरेस गार्डन का नाम दिया गया।
0: जी।

0: चौकी बात आप कहा कि जब गावा सु शहरा की तरफ आया तो बड़ा जमीना का टुकड़ा लिया, आधा में घर बनायो, आधा में फिर किचन गार्डनिंग करी, और फिर जब दबाव बनो तो मकान मकान रह गयो, और जब वो गार्डन को जो क्षेत्र हो वो खत्म हो गयो। अगर कोई टेरिस गार्डन लगा बो चावे लो आज का दौर में तो कई चुनौतियां भी के सामने आवेली।
1: देखो सबसे पहले तो उनको अपने घर वालों को बनाना होगा कि भाई मैं छत पे ऐसा कार्य करना चाहता हूँ, घर वालों ने सपोर्ट किया, पहली बात तो घर को
0: मोटी बात है साहब।
1: और उसके बाद में तुरंत आपको ये तय करना होगा कि भाई इसमें जो कितना खर्चा आएगा, और फिर आपको ये भी तय करना पड़ेगा कि मेरा जो छत है उसमें कितना लोड वो ले सकती है, उसके बारे में भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको कौन से पौधे लगाने, क्योंकि आपके वहाँ हो सकता है पानी की कमी हो। अगर जयपुर की बात करें या जयपुर के आसपास के शहरों की बात करें तो वहाँ पे पानी की कमी है, तो उसमें अपने को ये भी तय करना पड़ेगा कम पानी वाले पौधे कौन से लगाए जा सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि जब आप पौधे लगाते हैं तो आपको क्लियर कट ये पता होना चाहिए ये पौधे को ज्यादा पानी चाहिए, इसको कम चाहिए, क्योंकि कम और ज्यादा पानी वाले पौधों को पास पास नहीं लगाया जाता, क्योंकि अपने को उसमें ड्रिप इरिगेशन करना है या ऑटोमेशन करना है। तो ऑटोमेशन में क्या हो जाता है कि आपके जो पौधे एक जगह लगे हुए हैं, ड्रिपर्स एक जैसे हैं, तो एक जैसे ही पानी लगेगा, या तो कम लगेगा या ज्यादा लगेगा। तो उसमें कम वाले को कम वाले के साथ रखना है, ज्यादा वाले को ज्यादा वाले के साथ रखना है। आमतौर पर जो लोग टेरिस गार्डनिंग करते हैं उनसे ये बहुत बड़ी भूल हो जाती है कि उनको वाटर रिक्वायरमेंट पौधों का पता नहीं होता। सही पौधे का चुनाव करें उसका वाटर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस वातावरण के हिसाब से, जैसे यहाँ पे तेज गर्मी और तेज सर्दी दोनों है, तो उस समय आपको उस हिसाब से आपको पौधों का चयन करना है। दूसरा आपको ये तय करना है कि मुझे सब्जियों का बाग बगीचा चाहिए, मुझे फलों का बाग बगीचा चाहिए, या मुझे रिक्रिएशनल मनोरंजन के लिए बाग बगीचा चाहिए, वो भी आपको तय करना पड़ता है। और फिर एक चीज और आती है कि आपको जो गमले काम में लेने या आपको प्लांटर बनाने, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। गमले ऐसे होने चाहिए जो वजन कम हो उसमें, ऐसा नहीं कि आपने वहां पे सीमेंट कंक्रीट वाले पॉट्स रख दिए जिससे वजन वैसे ही बढ़ गया, या आपने ज्यादा मिट्टी का प्रयोग किया, मिट्टी भारी होती है, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा किस प्रकार का मीडिया यूज करना है। ऐसा नहीं कि आप मिट्टी यूज कर रहे हैं तो वजन ज्यादा हो गया, उसकी जगह आपको दूसरे पर्याय भी तलाशने होंगे, जैसे कोकोपीट हो गया, वर्मी प्लाइट हो गया, परलाइट हो गया, इस टाइप की चीजों पे भी आपको जाना पड़ेगा। फिर एक चीज और है कि आपको पॉट्स पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कई पॉट्स ऐसे होते हैं जैसे आपके घर में पड़े हुए हैं, जैसे आपका 200 लीटर का ड्रम पड़ा है या 100 लीटर का ड्रम पड़ा है या 50 लीटर का ड्रम पड़ा है, उसको कट करके उसके अंदर भी आप फ्रूट प्लांट्स लगा सकते हैं, उसमें वेजिटेबल्स लगा सकते हैं, तो ये चीजों का भी आप उपयोग कर सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको अपने यहाँ ये तय कर लेना जरूरी है कि हमें करना क्या है
0: जी,
1: उसके बाद ही आप आगे बढ़े।
0: जी चुनौतियों की बात आप आसानी से आप कर रहे हैं, बहुत सारी चुनौतियां बताया, कुछ का समाधान भी आप बताया। एक बात जो हमारे मन में अटक गई और शायद श्रोता भी इस पर ध्यान चाह रहा वेला हाँ। कि आप जानकारी दियो, आप कहा कि आपकी छत कत्तो वजन उठा सके हाँ। है बिल्कुल पतो कहीं करा ला आप।
1: देखिए आप जब टेरिस गार्डनिंग करने जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है जो भी आप करेंगे वो वजन छत पे ही बढ़ने वाला है।
0: बिल्कुल,
1: तो छत पे जो वजन बढ़ने वाला है वो किस चीज से बढ़ेगा, आप जो पॉट यूज कर रहे हैं या प्लांटर बना रहे हैं या फिर उसके ऊपर जो परगोला बना रहे हैं, तो वह वजन वो बढ़ना ही है उसमें, तो उसको लोड बेयरिंग कैपेसिटी बोलते हैं हम लोग टेक्निकली। तो वो कैसे चेक होगी, स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है, उससे संपर्क किया जाता है और वो आके आपको बताता है ये आपकी छत इतना वजन झेल सकती है
0: जी।
1: दूसरा क्या है कि आपको जितने भी उसके क्रैक्स हैं उसमें जो दरारें हैं वगैरह उसको भी आपको ठीक करना पड़ता है, और इसके अलावा आपको ये भी देखना पड़ता है कि भाई उसमें कोई वाटर प्रूफिंग की आवश्यकता तो है, क्योंकि जब आप उसमें पौधे लगाते हैं तो उसमें क्या है आपका पानी का रिसाव भी होगा, और ऐसा ना हो कि आपने पौधे लगाए और सीलन से आप ग्रसित हो गए, एक साइड आप कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं उल्टा आपको दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ेगा। इसमें आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के आने से आपको दो फायदे और हो जाते हैं कि आपको एक तो लोड बेयरिंग का पता लग जाता है, दूसरा क्या होता है कि आपका कॉलम कहाँ पे है, आपके जो बीम है कहाँ से जा रहा है, ड्रेनेज सिस्टम कहाँ पे है, तो वो सब चीजें आपको काम आती है जब दूसरे आप प्लांटर्स बनाते हैं, तो उस चीजों में आपका सहयोग होता है, उससे जानकारी हासिल होती है आपको
0: जी। सनी साहब आप बोलिया कि जब पानी की व्यवस्था कोनी हो तो आप तकनीक पर जावा हाँ, ड्रिप लगावा हाँ, और आजकल तो ऑटोमेशन भी हो गयो है, यानी कि आप समय तय कर दो पानी अपने आप ही लग जावे, लो थाने बार बार याद दिला की जरूरत कोई पड़ेगी पौधा ने पानी देना है, मोबाइल से भी सेटिंग हो जावे
1: हाँ, है और आप कहीं भी बैठे हैं आप चालू करके दे सकते हैं हाँ,
0: कि घर में आप नहीं भी हो तो भी आपका जो पौधा है भी तिसाया कोनी रहे। तकनीक की बात आपा कर रहे हैं, सिंचाई की बात आपा कर रहे हैं, प्लांटर्स की बात आपा कर रहे हैं, प्लांटर्स यानी गमला देसी भाषा में आपा कहवा
1: जी।
0: अगर गमला और जो बैग आवे है
1: ग्रो बैग्स
0: जाने आपा कहवा हाँ, अगर वह है तो बाकी तुलना में कौन सो ज्यादा सही रहे वजन के हिसाब हो?
1: ग्रो बैग्स ज्यादा अच्छे रहते हैं क्योंकि इनमें वजन कम होता है
0: जी, और दूसरो चाल भी जावे एक दो साल
1: हाँ, आराम से एक दो साल चल जाते हैं। ग्रो बैग्स कर सकते हैं घरेलू लेवल पे अगर आप कर रहे हैं, और अगर आप होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए या फिर आप कोई इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए तो आपको प्लांटर्स खुद इन बिल्ड करने पड़ेंगे छत के ऊपर, और उसके लिए क्या है कुछ वाटर प्रूफिंग भी करनी पड़ेगी, उसके अलावा आपको क्या रूट बैरियर्स होते हैं

0: वुड बैरियर से एक ऐसा चीज होती है जिसको कि चारों तरफ फिट कर दिया जाता है, जिससे कि जो जड़ें हैं वो नुकसान नहीं कर पाती इमारत को।
1: जी, तो आप निश्चिंत रहो, सुरक्षित प्रक्रिया है श्रोताओं, और आप जो है आप छत पर भी आप बगीचे लगा सको हो। जहां तक साग सब्जियां की बात है, फूलों का पौधा की बात है, तो थोड़ा सा लगा बाड़ो भी निश्चिंत रहे। लेकिन जब फलां का पौधा की बड़ा पेड़ा की बात आप करा हाँ, तो लागे है कि कटे कह तो आके बढ़वार को नहीं होवेली के फलत कौन वेलो, और या फिर या आपने जो छते बिने नुकसान पहुंचा सके है। तो एक बार हम बताओ कि की तरीका की भी की पूरी प्रक्रिया हुआ है, चाहे वे जड़ा की साफ सफाई वे, चाहे ऊपर जो फल है अपना चोखा आवे, तो कई प्रक्रिया रहे है।
0: इसमें सबसे पहले तो आपको ये तय करना पड़ता है कि आपको कौन कौन से पौधे लगाने हैं। बड़े पौधों में अगर बात करें तो हम अरेका पाम लगा सकते हैं, खजूर के पौधे लगा सकते हैं। खजूर की एक वेरायटी और आती है जिसको फोनिक्स रोबिली भी कहते हैं, छोटा खजूर जैसा होता है, और चंपा लगाई जा सकती है, और कुछ फाइकस की प्रजातियां ऐसी हैं जिनको लगा सकते हैं। ये देखने में सुंदर होती है, पानी की इनको जरूरत कम होती है, तो ये चीजों को आपको करना है। फूल वाले पौधे हैं जैसे बोगनवेल लगा सकते हैं, या आप हिबिस्कस जो बोलते हैं अपन वो लगा सकते हैं, एक्जोरा जो है वो लगा सकते हैं, मुराया बोलते हैं या कामिनी बोलते हैं उसको भी आप लगा सकते हैं। ये सुगंधित फूल भी है और खूबसूरत फूल आते हैं इस पे, तो लोग आकर्षित भी होते हैं इसको। और कम मेंटेनेंस वाले पौधे भी इस पे लगाए जा सकते हैं, जैसे स्नेक प्लांट हो गया, जीजी प्लांट हो गया, ड्रेसिना हो गया, एग्लोनिमा हो गई, ये चीजें हैं। कुछ आप हैंगिंग प्लांट्स भी लगा सकते हैं क्योंकि छत छोटी है, तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसमें पेड़ पौधे लगे, तो कुछ हैंगिंग पॉट्स लगा सकते हैं। हैंगिंग पॉट्स में क्या कर सकते हैं, आप मनी प्लांट लगा सकते हैं, स्पाइडर प्लांट्स लगा सकते हैं, फिलोडेंड्रोन्स लगा सकते हैं, ट्रेडेंशिया लगा सकते हैं। तो ये चीजें हैं, आपको हेल्प करती है, लटकने वाले गमलों में लगाती है। और दूसरा इसके अलावा जो वर्टिकल गार्डनिंग जो आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्योंकि अब वो स्टेज आ गई कि अब अपने पास छत भी नहीं रही
1: जी,
0: तो आप ये ऊभा बाग वाली बात हो गई। तो इसमें क्या होता है कि खड़ी जो आपकी दीवारें हैं उस पर आप फ्रेम फिट करते हैं, फ्रेम के अंदर आपके पैनल्स फिट होते हैं, पैनल्स के अंदर कुछ मीडिया डाला जाता है। मीडिया का मतलब होता है ऐसा पॉटिंग मिक्सचर जिसपे कि पौधों को लगाया जा सके, उगाया जा सके, और जिनमें वजन भी कम हो। तो उसमें कोकोपेट, परलाइट, वर्मीप्लाइट इसका मिक्सचर बनाया जाता है, वर्मी कंपोस्ट मिलाया जाता है, और इसमें ऐसा सिस्टम लगाया जाता है जैसे बूंद बूंद सिंचाई तंत्र का, और उसमें ऑटोमेशन और सोने पे सुहागा, आप कहीं पे भी बैठे आप उसको चालू कर सकते हैं। ज्यादातर लोग इस डर से टेरिस गार्डन ये करते थे पूर्व में कि अगर हम दो दिन के लिए या चार दिन के लिए बाहर चले गए तो हमारे पेड़ पौधों का क्या होगा, कौन इनका ख्याल रखेगा, क्योंकि पेड़ पौधों से लगाव लोगों का ऐसा है बच्चों जैसा है।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: बिल्कुल।
0: वो अब वो डर भी खत्म हो गया क्योंकि ऑटोमेशन हो गया
1: जी। अच्छा, पानी की व्यवस्था तो चलो ऑटोमेटिक हो जावे है।
0: हाँ जी।
1: अगर टेरिस गार्डन की बात करें, छत है, खुली छत है, आप गार्डन लगा लिया, धूप आवे है या बरसात बहुत तेज आ जावे है और आप घर को नहीं, की तरीका से आपका पौधा जो है वे बच सके है तेज धूप और बरसात सो, एक भी कोई सुविधा है, कोई छांव आप कर सका?
0: हाँ जी, जैसे अपने यहाँ पे जयपुर है या राजस्थान है, सबसे ज्यादा यहाँ पे गर्मी पड़ती है, और मैं तो कहूंगा कि प्रकाश की तीव्रता को देखें तो 1,20,000 लक्स यहाँ पे गर्मियों में प्रकाश की तीव्रता रहती है, और जो पौधे आमतौर पर होते हैं उनको 50,000 से 55,000 लक्स के आसपास की जरूरत होती है, यानी 50% कम की। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि ऊपर एक शेड नेट लगाते हैं जो कि 50% वाला होता है, 50% छाया देने वाला। तो इसका मतलब क्या है, सूर्य की जो तीव्रता आ रही है, प्रकाश की तीव्रता आ रही है, उसको 50% वो कम कर देता है। तो आमतौर पर जो लगाया जाता है वो 50% वाला लगाया जाता है
1: जी, जो हरे रंग को पड़ दो,
0: हरे रंग का होता है
1: जी, जी।
0: तो ये एक चीज है। और दूसरा क्या है, बात रही तेज बारिश का, तो कई बार क्या होता है लोग अपनी छत के ऊपर बगीचा लगाते हैं तो उनके मन में ये होता है कि मैं यहाँ पे लॉन भी लगाऊं, घास भी लगाऊं। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि साहब मैं तो आर्टिफिशियल से खुश हो जाऊंगा, पर कुछ लोग होते हैं नहीं, मुझे तो आर्टिफिशियल चाहिए नहीं, मुझे तो ओरिजिनल चाहिए, जो जमीन पे घास लगती है वही लगानी है छत पे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले आपको एक छत तय करनी पड़ती है कहाँ पे आपको लगाना है, उसके बाद में उसका वाटर प्रूफिंग करना है, कोई दरार वगैरह है उसको बंद करना है, और उसके बाद में उसके ऊपर ड्रेन सेल्स आते हैं, प्लास्टिक की एक ट्रे टाइप की आती है, उसको बिछाया जाता है, आपस में जोड़ा जाता है और एक पूरी जाल बिछा दिया जाता है। उसके बाद में उसके ऊपर एक सफेद कपड़ा आता है जिसको जियो मेम्ब्रेन कहते हैं, तो उसको कपड़े को फैलाया जाता है, उसके बाद में उसके ऊपर मीडिया डाला जाता है, मीडिया मतलब जिसमें कि आपको घास को उगाना है, तो वो उसमें मिट्टी भी होती है, वर्मीप्लाइट होता है, परलाइट होता है, कोकोपिट होता है, ये सब चीज मिला के मिश्रण तैयार किया जाता है, वर्मी कंपोस्ट भी दिया जाता है ताकि उसको न्यूट्रिशन मिल सके, और उसके बाद में जो कार्पेट ग्रास होती है उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको बिछा दिया जाता है, और उसके बाद में उसको पानी दिया जाता है, और जो एक्स्ट्रा पानी लगता है वो ड्रेन सेल के जरिए नीचे निकल जाता है और ड्रेन होकर चला जाता है। तो ड्रेनेज का विशेष ध्यान रखा जाता है टेरिस गार्डनिंग में, तेज बारिश हो कोई फर्क नहीं पड़ता
1: जी। अच्छा, बात करा आपा कि टेरिस गार्डन लगा लिया।
0: हाँ जी।
1: और प्रक्रिया भी समझ लिया आपा। अगर सब्जियां की बात करा।
0: हाँ जी।
1: सब्जी लगानी है, कई कई प्रक्रिया रहे हैं और कई सावधानियां आपा ने रखनी चाहिए जब आप टेरिस गार्डन में सब्जी लगावा।
0: देखिए, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से सीजन की कौन सी सब्जियां होती है, तो आप देख लीजिए।

0: जनवरी से लेकर अप्रैल तक आप बोलेंगे गर्मियों की सब्जियां, तो उसमें आप भिंडी लगा सकते हैं, करेला लगा सकते हैं, घिया लगा सकते हैं, गवार, टिंडा, टमाटर, बैंगन, मिर्ची, तुरई, तरककड़ी, कोला, खरबूजा, तरबूज, लोबिया, पालक, धनिया, चुलाई, पपीता, पपीता भी छत पे लगाया जा सकता है टेरेस गार्डन पे। ऐसे बरसाती का आपको निकाल लेना है, बरसाती सीजन यानी कि मई से जुलाई का जो है उसके लिए आपको कैलेंडर रेडी रखना है। ऐसे ही आपको सर्दियों में जो जाड़े की सब्जियां होती है अगस्त से लेकर जनवरी के बीच में, उसका कैलेंडर आपको रेडी रखना है, पहला काम तो ये। दूसरा, बीज कहाँ उपलब्ध होगा वो आपको जानकारी होनी चाहिए, कब लगाना है वो चार्ट बताएगा आपको, और किस में लगाना है। कई बार क्या होता है कि मुझे लगाना है पालक और मैंने जो गमले गहरे होते हैं उसमें लगा दिया, क्योंकि पालक की जड़ ज्यादा जाती नहीं है, तो मुझे कम गहराई वाले चीजों का इस्तेमाल करना है, जैसे धनिया लगाना है, पुदीना लगाना है, उसको कम गहराई वाले। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कौन से कंटेनर में लगाई जाएगी या कौन से पॉट में लगाई जाएगी। दूसरा, घर में कई बार क्या होता है कई चीजें भंडार के रूप में पड़ी होती है, उसका सदुपयोग हो सकता है। जैसे कुछ डब्बे हैं जो 50 लीटर का कोई कैन आपके पास खाली हो गया, आपने उसमें कुछ लगा लिया। कोई 100 लीटर का अगर आपके पास कैन है, ड्रम है, तो उसके अंदर आप फ्रूट प्लांट लगा सकते हैं, सब्जियां लगा सकते हैं। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें होती है ड्रेनेज। अगर आपने जो भी कंटेनर जिसमें आप सब्जी लगा रहे हैं उसमें अगर आपने ड्रेनेज सिस्टम नहीं रखा तो आपकी सब्जियां अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगी और हो सकता है उसमें रोग ज्यादा है और मर भी जाए। कि एक चीज और अपने को विशेष ध्यान रखना है, वो है कि अपने को ध्यान रखना कि सर्दी ज्यादा हो रही है या गर्मी ज्यादा हो रही है। सर्दी ज्यादा हो रही है तो उसमें क्या करना है, अपने को ऊपर जो नेट लगा रखी है उस नेट को अपने को पाला पड़ेगा, तो उस समय उसको फैला देना है, तो पाले के प्रकोप से वो बचाएगी और दिन में उसको हटा लेनी है। तो उसको स्लाइडिंग भी बना सकते हो, उसमें थोड़ा सा कर सकते हो। और गर्मियों में क्या है कि अपने को पूरे दिन गर्मी नहीं होती है, सुबह का जो समय कम गर्म होता है, दोपहर का जो पीरियड होता है ज्यादा गर्मी होती है, फिर शाम को कम हो जाती है। तो जो टॉप पीरियड है जब गर्मी ज्यादा पड़ती है 11 से लेकर 2 बजे तक या 3 बजे तक, उस समय आप उसको फैला दें, बाद में इकट्ठा कर दें। तो ये नेट भी आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। और इसमें आप चाहो तो ऊपर फॉगर्स भी लगा सकते हैं, छोटा ये सिस्टम है। आजकल क्या हर चीज में जितना आप ऑटोमाइजेशन पे जाएंगे, जितना आप टूल्स को यूज करेंगे, आपकी मेहनत कम हो जाती है।
1: सैनी साहब, जाना कि जो टेरेस गार्डन है,
0: हाँ जी,
1: अगर इन्हें कोई लगावे है तो कई लाभ इसे होवे है?
0: देखिए, सबसे बड़ा लाभ इससे ये है कि आपको हमेशा प्रकृति की गोद में होने का एहसास होता है
1: जी।
0: दूसरा, जो कहें तो आपको शुद्ध और विश वही फल और सब्जियां खाने को मिलती है। आप उगाएंगे तो आप खाएंगे, खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज बहुत सारी सब्जियां हम सेवन करते हैं जो कि ऐसी जगह से आ रही है जिसमें बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड है और उसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य में दुष्प्रभाव पड़ रहा है और असाध्य बीमारियां जैसे कैंसर जैसी भयानक बीमारियां भी हो रही है, तो उनसे अब बचाव हो सकता है। और भाग दौड़ की जिंदगी है, हम भाग रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, आदमी भागता रहता है, समय है नहीं, अपने लिए भी नहीं है। तो कहने का मतलब ऐसे में क्या होता है कि आदमी तनाव से ग्रसित रहता है। पर आपने रूफटॉप गार्डन बना रखा है या आपने सब्जियां लगा रखी है छत के ऊपर, बगीचा लगा रखा है, तो कुछ समय जब आप प्रकृति के साथ जुड़ते हैं और काम करते हैं तो आपको रिलैक्सेशन फील होता है, आप स्ट्रेस आपका दूर होता है। फिर महिलाएं की बात करूं तो गृहणियां को कभी कभी क्या होता है, सब्जियों के लिए धनिया चाहिए, ताजा धनिया चाहिए, मिर्ची चाहिए, पुदीना चाहिए, तो उसको अगर आप बाजार से लाओ कितना भी लाओ लेकिन वो ताजा नहीं मिलेगा। लेकिन एक वही चीज अगर आप अपनी छत से तोड़ के अगर सब्जी बना रहे हैं उसमें डाल रहे हैं तो उसका टेस्ट ही अलग हो जाता है। कहा यह जाता है कि लोगों के अगर दिल में पहुंचना तो उसका रास्ता
1: पेट से।
0: तो ये चीजें हैं। बच्चों को भी इससे फायदा ये होता है कि बच्चे जो है आज पाठ्य पुस्तक में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं लेकिन उसको व्यवहारिक तौर पे सीखने का मौका जब वो प्रकृति के बीच में रहते हैं, पौधों से देखते हैं, तो फोटोसिंथेसिस कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, मटर का पौधा कैसा होता है, टमाटर का पौधा कैसा होता है, अगर मूंगफली आपने लगाई तो मूंगफली का फूल ऊपर आता है लेकिन मूंगफली लगती जमीन में कैसे, वो पैगिंग कैसे होती है, ये सारी चीजें जो तकनीक है उनको समझने को मिलती है। और एक चीज और है जो अर्बन हॉट आइलैंड इफेक्ट है उससे आपको काफी हद तक निजात मिलती है। आज क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कंक्रीट के जंगल तैयार हो गए, पेड़ काट दिए हमने और कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए, उससे क्या हो गया कि आपकी बिल्डिंग का जो टेम्परेचर है बाहर के आसपास के टेम्परेचर से ज्यादा हो गया, तो उसमें आपको उससे भी निजात मिलती है। ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट आ गया है, ग्रीन आप ग्रीनरी जितना करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट है, एसी कम चलाने पड़ेंगे, कूलर कम चलाना पड़ेगा, बिजली बिल ना के बराबर आएगा या कम आएगा, तो ये सब चीजों का आपको फायदा मिलता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि एक अच्छा शौक है, जिंदगी में आदमी को शौक पालना चाहिए, क्योंकि अगर जिस व्यक्ति के पास कोई प्रकाश का शौक नहीं है तो उसकी जिंदगी जो एक तरह से नीरस हो जाती है।
1: अगर क्यों भी करवाने नहीं मिल रहे हैं तो छत अपनी है, आप पौधा लगावो शुरू करो। चलता चलता एक लाइन में महाकाश होता हूं ना कहीं के बुझाओ
0: छत चाहे छोटी हो या बड़ी, टेरेस गार्डन जरूर लगाएं, टेरेस गार्डन करें, खुशहाली लाएं जीवन में।
1: बिल्कुल, और जय सैनी साहब बताया मन तो लिखवा को शौक है, आप सब जानो ही हो कि छत छोटी हुए या बड़ी सदा रहे हरी। तो ई बात के साथ ही आप वहाँ के कार्यक्रम में आया राजेश कुमार सैनी, उद्यान सलाहकार, बहुत चौकी सलावा आप माने दिया, एक लिए घने मानू धन्यवाद सा। और देखो बहुत बढ़िया जानकारी आज तो मैंने यहाँ लागे कि मतलब जब मैं सैनी साहब से डॉक्टर साहब से बात कर रही थी कि अगर जगह नहीं भी है और इच्छा शक्ति है ना तो पेड़ पौधा तो आप लगा सका था। और जब आने

0: अति चोखी जानकारी आपने मिली गई आंसू, तब मने लगे मैं भी बहुत चोखी जानकारी दिलाई हूँ, चोखा चोखा सवाल पूछी तो।
1: हाँ चंचल बहन, गणी चोखी जानकारी ते भी डॉक्टर साहब सु, विशेषज्ञ सु, माँ सब तक और आपना सगड़ा हेतालु श्रोतागण तक पुगाया, इके लिए थाको और आपना विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार सैनी जी को घणो मानसु, धन्यवाद छे सा। लेकिन चंचल बहन ते तो जानो ही हो सा कि आपने आकाशवाणी री रीति कोनी कि सा कि आपा करो करो धन्यवाद देवा, तो चाला सगड़ा रलमेल सुनाओ, सुनावा एक चोखो सो लोकगीत।
0: बिल्कुल सा।

0: अरे अरे अरे क्या कर रहा है?
1: इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: चला बोल रहा
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त। और लो तो पहली वाली बात कहा,
2: परम तो सब नहीं डाले,
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे।
2: सच
1: है? बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, रूप में बात सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: तो देखो गीत की स्वर लहरिया के सागे सागे आपां भी बयार भयो समय भी। और अब कार्यक्रम में बस अत्रो ही समय बचो है कि आपा कह दें कि कार्यक्रम में सुनोड़ी बाता ने सुनो ही नहीं गुणों भी, और अब अगला कार्यक्रम की तैयारी करवा के लिए जानू वेलो। तो करनो वेलो आपने अपना श्रोतावासु राम राम सा।
5: आयोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: बुढ़ापा सुरक्षित का अन्नदाता सुरक्षित का अन्नदाता।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
2: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
1: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
2: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
1: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
2: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता के परिश्रम को पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
3: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनित में जारी।

अभी किसान भाई सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से किया गया। और अब किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: खेतीबाड़ी कार्यक्रम की वाट उड़ीकता सगला काश्तकार भाया ने ग्रामीण श्रोताओं ने चंचलो ने वरी मीठो मीठो हरु भरु सो राम राम और एक बार ओजू सगला बड़ा बूढ़ा ने ढोगर जैसा और एक बार ओजू मनसुनी आपने घने मानू राम राम सा।

0: નું રામ રામ થાનેબી ચંચલ મેણ ઓર આપને ખેતી બાડી કાર્યક્રમ ને સુનબાડા સગલા કાશકાર ભાયા ને ઓર ડાણિયા માં ચૂલા પર કામ કરતી સગલી પ્યારી ભેણાવા ને મનસ્વની રોશની ભરું રામ રામ સા.
1: देखो चूल्हा पर जो बहना काम कर रही है ना, जो साग छौंके है तो झट सु थैली में सो काटे है, धोवे काटे है, छौंकते हुए है ना.
0: बिल्कुल सर.
1: और जब टिफिन बनावे है, पैक करे है, बांधे है और थैली में बांधर देते हैं है ना. और ये तरीका सुई चाहे वे कपड़ा ले रहो चाहे कपड़ा देवा जाओ, सब चीज में एक चीज जो सबके साथ चले बा वो है बा पॉलिथीन की थैली है ना. और अगर आप बात करा समाज की तो आप शिक्षित समाज की बात करा हाँ, तकनीकी समाज की बात करा हाँ, नशा मुक्त समाज की बात करा हाँ, बेटी बचा वाला समाज की बात करा हाँ, लेकिन आज सब में आप भूल जावा हाँ कि प्लास्टिक मुक्त समाज भी इस धरती की सब बड़ी आवश्यकता है.
0: बिल्कुल सा, क्योंकि प्लास्टिक एक आपने जीवन में अशो अभिशाप बन उभर रियो है सा कि आप प्लास्टिक को इतो ज्यादा उपयोग करबा लागा कि वो आपनी प्रकृति और आपने पर्यावरण ने नुकसान पुगा रियो है.
1: बिल्कुल, अब तो यहाँ लागे कि बीता समय की बात हुई बे कपड़ा की थैली और ए पॉलिथीन को जाल अशो है कि कर दी धरती मैली. तो आपने जो धरती है इमें जो ये प्लास्टिक को कचरो है इको निस्तारण वही कोनी और जो प्रदूषण है धरती को वो मिटाई को नहीं. अगर आप ई प्लास्टिक ने बाल देवला तो वायु प्रदूषण हो जाओलो. तो इको तो एक ही समाधान है कि आप बिल्कुल इन्हें नकार दो और ई की जगह ओ जो कागज की कपड़ा की जो थैलियां बहती वह लिया हो साहब. और ई में भी मैं कहूंगी कि कागज की थैली में तो फिर भाई की पेड़ा ने काटोला जब कागज बना लो, तो जो कपड़ा है अपना और कौन सा कपड़ा जो आप पहन लिया अब काम का कोनी, जो बिल्कुल ही व्यर्थ है फेंक बाड़ा ही है तो फेंको तो लाई, तो वहां का ही मजबूत थैला बना लो साहब और बाने काम में लो.
0: बहुत ही छोटी छोटी बातें लेकिन चंचल बहन थे बहुत ही गुण और मोटी बातें बताई हो सा, जो आपा अगर आपने जीवन में अपना लेवला तो आपा खुद रो तो भलो करा ला या आपने पर्यावरण रो भी भलो होलो. और जब आप पर्यावरण नो भलो होलो तो आपनो सगड़ो स्वास्थ्य जो आज आपने छोटी छोटी बीमारियां घेर ले हुए जरा सी देर में ही तो वो आपने कोनी घेर ली.
1: बिल्कुल. और जो माइक्रो प्लास्टिक जो रहवे है जो खाना की चीजा में ला अगर आपने शरीर में चले जावे अब तो महीन हो गए आपने दिखे भी कोनी, वो छोटी छोटी नहीं बहुत बड़ी बड़ी बीमारी कैंसर जैसी बीमारी और बहुत तरीका की जो चर्म रोग है एलर्जी है बाको कारण बने हैं. तो एक कारण ने जड़ से मिटाणो वेलो और प्लास्टिक मुक्त समाज की तरफ कदम बढ़ानो वेलो, जया की अब आपा कदम बढ़ावला अपनी जानकारियां की तरफ.
0: तो आज आप जानकारी ले रहे हैं कृषि विकास में कृषि यंत्रारी भूमिका के बारे में और आपने जानकारी दे रहे हैं राजेंद्र कुमार शर्मा जी.
1: तो सुना जानकारी साहब.
2: खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुन गया किसान भाई और अब स्टूडियो में मौजूद है राजेंद्र कुमार शर्मा जी, उपनिदेशक है कृषि अभियांत्रिकी कृषि आयुक्तालय जयपुर जो पधारिया है और आप यहाँ से बातचीत कर रहा कृषि विकास में कृषि यंत्रा को योगदान. सबसे पहले तो किसान भाइयों मैं आप सबसे राम राम करता हूँ. पुराने जमाने में जो खेती होती थी वो अपने बैलों से बैलों की जोड़ी से अपने जो खेती होती थी और तमाम परिप्रेक्ष्य में सब चीजें बिल्कुल ही बदल चुकी हैं. आज किसान भाई सभी जो है जो भी खेती के काम है जो भी हमारी संक्रियाएं होती हैं जुताई है बुआई है जो भी अपनी संक्रिया सारी निश्चित समय पर करनी होती है और इसके लिए हमें आजकल गांव में जैसे देखा जाता है कि अपने मजदूर नहीं मिल पाते खेती मजदूर, तो कृषि यंत्रों को इसलिए काम में लेकर के अपने जो भी काम है किसान भाई आप लोग जो है समय पर पूरा कर सकते हैं और बिना कृषि यंत्रों के आज खेती की परिकल्पना मेरे हिसाब से नहीं की जा सकती. बट एक सवाल वो जानना चाहूँ कि खेती में सभी काम निश्चित समय पर किया जावे.
3: हाँ जी.
2: कौन कौन सा काम आसान हुआ है ए यंत्रा की वजह से?
3: देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊं कि खेती संबंधित सभी कामों को निश्चित समय पर किया जाता है तो ही अपनी खेती जो मुनाफे का सौदा हो सकती है, नहीं तो किसान भाइयों आपको नुकसान भी हो सकता है. अब जैसे मैं बताऊं जैसे आप वर्षा आधारित जो खेती करने वाले हमारे किसान भाई है बारिश शुरू होने से पहले वो खेत की जुताई करके अपने खेत को तैयार रखते हैं, बारिश होते ही बुआई का काम शुरू करना होता है, खरपतवार को समय पर हटाना होता है, फसल पर समय पर आवश्यकता अनुसार जो भी आपको मान लियो कीड़े वगैरह कीटे पतंगे कुछ भी लग गया हो कोई रोग लग गया हो तो ऐसे में कीटनाशक आदि का भी स्प्रे अपने करना होता है, फसल के पकने पर मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए कभी मौसम खराब हो सकता है तो हमें तुरंत फसल कटाई की व्यवस्था भी करनी होती है, फसल कटाई के बाद में फसल घाई का काम किया जाता है जिसमें फसल से दानों को अलग किया जाता है, फिर दानों को साफ और फिर उसकी ग्रेडिंग का काम किया जाता है, तब कहीं जाकर के हमारे किसान भाई अपनी फसल को बाजार में बेचने के लायक बना पाते हैं.
2: कौन सा यंत्र शुरुआती तौर पे किसान काम में लेवे है और किस तरीका से काम आसान हुआ है?

0: सबसे पहले बीज उपचार की बात आती है, जो पंचायतों में अपने जो एक सीड टिटिंग ड्रम अपना रखा हुआ है सभी जगह करीब करीब, उसमें अपने जो भी बीज हम ले रहे हैं उसको उसमें अपने जो निश्चित मात्रा में अपने जो केमिकल्स वगैरह जो भी हम बताते हैं, जो भी रिकमेंडेड है हर फसल के लिए, हर बीज के लिए अलग अलग, उनको डाल के उसमें मिला करके उसके बाद में फिर उसकी बुआई की जाती है। इसके अलावा जैसे मैं आपको बता रहा था, जैसे सारे जो भी यंत्र काम में लिए जाते हैं अलग अलग प्रक्रियाओं के लिए, संक्रियाओं के लिए, उसमें से जुताई के लिए जैसे जो मुख्यतः हमारे जो चल रहे हैं उसमें एमबी प्लाउ है, डिस्क प्लाउ है, रोटावेटर है, बुआई के लिए जो है सीड ड्रिल है, सीड कॉर्न फर्टिलाइजर ड्रिल है, मल्टी क्रॉप प्लांटर है, कटाई के लिए रीपर है, गहाई के लिए थ्रेशर और सीड क्लीनर ग्रेडर, ये सारे जो यंत्र हैं ये किसान भाइयों के लिए सारे कार्यों को बिना मजदूरों पर निर्भर रहते हुए अपनी खेती का काम करने के लिए पर्याप्त होते हैं और इनसे अपना काम अपना समय पे करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं।
1: बिल्कुल, आप बहुत बढ़िया बात बताई, लेकिन इतना यंत्र एक किसान के लिए तो खरीद वो तो आसान को ना, माना कि काम है बहुत आसान हुआ है, तो कई किसान आपको उपयोग किराया पे लेके करे, कई किसान सामूहिक तौर पे खरीद कर सके, कई सरकार की ओर से कोई व्यवस्था ऐसी है कि जगह जगह आप इन्हें काम में ले सको?
0: सबसे महत्वपूर्ण बात आपने पूछी है कि यंत्र खरीदना ही एक बहुत बड़ी अपना जो है ना खेती का एक पूरा कार्य जो है अपना नहीं हो गया है। यंत्र हम जब भी खरीदते हैं तो यंत्र की लागत बहुत ज्यादा होती है और एक हमारे जो किसान भाई लघु सीमांत जो छोटे किसान है वो क्या होगा कि जैसे एक फसल में वो ज्यादा ज्यादा दो दिन या तीन दिन काम आ सकता है, तो उस यंत्र में उन्होंने जो भी पैसा लगाया फिर उसको साल भर उसको संभाल के रखना यंत्र को अपना काम में लेने के बाद में, फिर एक ही खेती में एक ही यंत्र काम में आता नहीं है तो फिर कितने तरह के यंत्र वो लेने के बाद में उसको चलाने के लिए ट्रैक्टर भी चाहिए। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने पिछले वर्षों में भी और इस साल भी हमारे जो लघु सीमांत भाई है वो अपने खेती की जो अपनी ऑपरेशन संक्रियाएं हैं, वो बुआई जुताई सारी संक्रिया, फसल कटाई भाई, इन सब के लिए हमने एक कस्टमाइजिंग सेंटर, कृषि यंत्र किराए केंद्र जिसको बोलते हैं, उनकी एक योजना हमने शुरू करी थी सन 2020-21 से, वो शुरू है। और
1: बिल्कुल देखो, आप बात कर रहे हैं कृषि यंत्र की, तो मोबाइल को जमाना है, तकनीकी युग है, कई बार देखा कि विदेशों में जो खेती कर रहा है वाकई में यंत्र है, वो कटाई से लेकर के अनाज निकालबा से लेकर के सब चीजें, आज की बात करा आप अगर प्रदेश में बात करा तो कई चीजें यंत्र इतना महंगा है कि आप उपयोग में कम ले रहा है या बाकी किराए भी इतना ज्यादा लगे, और अगर आम किसान काम में ले वो चावे तो की तरीका सु और कटा सु ले सके?
0: देखिए, अगर खुद अगर वो खरीद के रखता अपने पास में तब तो उसकी मर्जी, तब अपना काम में ले सकता है या खुद अपने उसी पड़ोसी,
1: अगर वो सक्षम है तब तो खरीद सकता है,
0: तब तो खरीद सकता है, और अगर वो खरीद नहीं सकता है तो जो कस्टमाइजिंग सेंटर जो हमारे बने हुए हैं उन पर हम एक मोबाइल ऐप आधारित एक मॉनिटरिंग सिस्टम, उसमें राज किसान कस्टमाइजिंग सेंटर ऐप के नाम से एक मोबाइल ऐप बनाया है। उस ऐप पर जितने भी हमारे राज्य में कस्टमाइजिंग सेंटर जो भी स्थापित हो रहे हैं या हुए हैं वो सब उनकी पूरी उसमें डिटेल उनका विवरण होगा, उनके पास किस किस सेंटर पे कितने कितने कौन से कृषि यंत्र ट्रैक्टर सहित उपलब्ध है, वो कब आपने बुकिंग करा सकते हैं, किस तारीख में बुकिंग करा सकते हैं, कौन सी फसल के लिए बुकिंग करा सकते हैं, सारी फैसिलिटीज उसमें होगी। कंफर्म होने के बाद बुकिंग का उनके पास में रेस्पॉन्स भी आएगा, वापस जवाब भी आएगा कि आपकी तारीख इतनी तारीख को इतने बजे आपको ये मशीन आपके खेत पे पहुंच जाएगी, रेट लिस्ट भी उसमें फिक्स होगा, उसमें आपका लगभग बिल कितना आएगा वो भी बता दिया जाएगा। तो आप बहुत ही मतलब किसान भाई को सुविधा इससे हो जाएगी, इससे एक मॉनिटरिंग हो जाएगी किस कस्टमाइजिंग सेंटर ने किस एरिया में किस खेत में कितना काम किया, ये सभी चीजें ऑनलाइन होगी और हम सभी लोग इसको डैशबोर्ड पे भी देख सकते हैं, और कोई भी ऐसी समस्या है जिसमें माली किसान भाई को कोई दिक्कत आई तो उसमें जो है ग्रीवेंस अपनी शिकायत भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, अब बेटा बात कर रहे हैं कि किसान ये तकनीक से जुड़े, कृषि यंत्र से जुड़े जानकारी सवाल है, कौन कौन सा यंत्र ऐसा है जिसको उपयोग किसानों ने ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए जिसको कि समय की बचत भी हो और बाकी जो कृषि तकनीकी है, कृषि को जो उत्पादन है भी के मायने भी कोई ज्यादा फर्क कौन पड़े, और जो आप किराया की बात करो कि जितनी मजदूरी में काम करे बीसो कम लागत के मायने वहां को काम हो जाए?
0: सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको कि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन ये एकमात्र जो अपनी कृषि यंत्रीकरण की योजना भी चलाई जा रही है, और इसमें जो मैं आपको संक्रियों के हिसाब से बताता हूँ, जैसे खेत की तैयारी के लिए है, फसल बुआई के लिए, खरपतवार की सफाई के लिए, कीटनाशक के स्प्रे के लिए, फसल कटाई, गहाई, सफाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग से संबंधित लगभग सभी तरह के यंत्र इसमें किसान भाइयों को अनुदान पर उपलब्ध कराए जाते हैं। और जो अब आप बात कर रहे हैं कि कौन कौन से उन्नत कृषि यंत्र हैं जिनके उपयोग से वो अपने समय की बचत कर सकता है और बहुत अच्छे से खेती का काम अपना कर सकता है, तो मैं सबसे पहले जो एक जमीन को लेवल करने की जो बात आती है उसके लिए एक बहुत ही अच्छा यंत्र है, लेजर लैंड लेवलर के नाम से बोलते हैं इसको, ये हमारे कस्टमाइजिंग सेंटर्स पे सभी पे तो नहीं है लेकिन कुछ कस्टमाइजिंग सेंटर्स पे भी उपलब्ध है, और कुछ जगह किसान भाई अपने जो अपने काम में लेते हैं उसके बाद में अपने साथी लोगों को भी अपने किराए पे देते हैं। ये यंत्र जो है खेत की अपनी सटीक जो लेवलिंग है उसके काम में आता है, उसे पूरा स्लोप मेंटेन करता है, इससे समय की बचत, कम त्रुटि

0: रहित काम करके कम परिश्रम में भूमि को आराम से समतल किया जा सकता है। इसकी जो कार्य क्षमता है जैसे 700 से 850 वर्ग फीट प्रति घंटा प्रति बीघा होती है, इसकी लागत लगभग 3.5 लाख रूपये के करीब है, जो की किसान भाई नहीं ले पाते हैं, जो सक्षम नहीं होते वो कस्टमाइज सेंटर से ले सकते हैं
1: जी।
0: इसके बाद में जैसे एक उन्नत कृषि यंत्र एक और है अपना जुताई के काम आता है, 2 बॉटम या 3 बॉटम रिवर्सिबल मोल्ड वोट प्लाउ
1: जी।
0: इसको जैसे मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए, उसकी जो है मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए ये यंत्र काम में लिया जाता है। इसको मिट्टी पलट हल भी बोलते हैं। ये अपना 30 से 50 HP तक के ट्रैक्टर से चलाए जाते हैं। इसका जो प्रयोग है अपना जो प्राथमिक जोत है, शुरुआत में जो अपन जोत करते हैं, जुताई करते हैं, उसके लिए लिया जाता है
1: जी।
0: ये खेत में डेड फरो या जैसे असमान धसे हुए जो है ना स्थान ऐसे खड्डे वगैरह नहीं छोड़ता है, एक समान अपने मिट्टी पलटता है। और इसकी कीमत लगभग 60,000 रूपये से मॉडल के हिसाब से 1,20,000 रूपये तक होती है
1: जी।

0: कीमत लगभग 60,000 रूपये से मॉडल के हिसाब से 1,20,000 रूपये से होती है
1: जी,
0: और इसकी कार्य क्षमता 1 बीघा प्रति घंटा तक की होती है
1: जी।
0: इसके बाद मैं आपको बताता हूँ सबसे ज्यादा आज की तारीख में जो चलने वाला यंत्र है जो 3-4 तरह के ऑपरेशन एक ही बार में कर देता है, ऐसे यंत्र के बारे में आपको बताता हूँ, उसका नाम है रोटावेटर। ये यंत्र मैं आपको बताता हूँ कि लगभग 2010-11 के करीब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में ये हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, इसको लोगों के चलन में लाने के लिए। इसको पहले जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जीएसएस केवीएसएस के थ्रू हमने उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था आरकेवाई में और वहां पे रखवाया था और उसका डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था किसानों के खेतों पे। तो वो ये यंत्र इतना काम का है कि आपका जो सबसे पहले आपका मान लीजिए फसल अवशेष है उसके ऊपर में चलाए तो पहले तो फसल अवशेष को काट देगा, काट करके उसको पूरा मिट्टी में मिला देगा, जमीन को भूरा बना देगा, उसके बाद में उसके पीछे पाटा चलता है तो आपके पूरे खेत को भी लेवल कर देता है। तो यूं करने के बाद में आपका रोटावेटर जो है आपके 4 ऑपरेशन एक तरह से हो गए, उसके बाद में सीधे आपको सिर्फ बुआई करनी है। तो आप देखिए कितना बढ़िया उपकरण हो गया आपके लिए। ये हरी खाद को भी एक तरह से मिट्टी में मिला देता है और इसका प्रयोग गीली सूखी दोनों तरह की भूमि में किया सकता है, चावल में भी कर सकते हैं। और इसकी कार्यक्षमता जो 3 से 4 हेक्टेयर प्रतिदिन तक की होती है, इसकी लागत जो लगभग 70,000 से 1,25,000 रुपए तक की होती है।
2: ये यंत्र को उपयोग किसान किराए पर ले तो कहीं समय के आधार पर किराया लगे या खेती की आकार के आधार पर?
0: इसमें जो कस्टमाइजिंग जो हमारा मोबाइल ऐप बना हुआ है उसमें प्रति घंटा के हिसाब से भी उसमें किराए की दर है, प्रति एकड़ के हिसाब से भी है और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भी है
2: जी।
0: जितना उसका काम है, जितना जिस तरह से वो लेना चाहता है किराए पर, उसके उसी तरह से उसकी रेट्स होती है। तो वो मान लीजिए उसको 3 घंटे के लिए चाहिए तो 3 घंटे की रेट लग जाएगी, 2 एकड़ के लिए चाहिए 2 एकड़ के हिसाब से रेट लग जाएगी, जैसा वो चाहते हैं उस हिसाब से उनकी सुविधा के लिए अपन ने ये कार्रवाई कर रखी है।
2: बिल्कुल। और कौन कौन सा यंत्र है, की तरीका से काम कर?
0: अब देखिए अब सारे किसान भाई हमारे जो है ट्रैक्टर ले नहीं सकते, 6-7 लाख-8 लाख रुपए के आसपास का ट्रैक्टर आता है और कम क्षमता का अगर हमने ट्रैक्टर ले लिया तो वो काम भी नहीं कर पाएगा किसान भाई हमारा। तो इसके लिए एक सब्स्टिट्यूट है पावर टिलर। पावर टिलर है एक इस तरीके का इम्प्लीमेंट है जो कि आपको बिना ट्रैक्टर के भी छोटे जो अपने यंत्र है, रोटावेटर है, चाहे सीड कंफर्टर ड्रिल है, चाहे सीड ड्रिल है, चाहे कल्टीवेटर है, चाहे लेवलर है, सबको उस पर आप लगा करके अटैच करके ट्रैक्टर का काम करते आप उससे अपने खेत की जुताई अपना काम अपना खेती का कर सकते हैं
2: जी।
0: ये 1 से 2 बीघा तक प्रतिदिन काम करने में सक्षम है और लगभग 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में इसकी कीमत होती है।
2: अच्छा।
0: अब सीड कंफर्टाइल ड्रिल, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र है। लोबाग में जहां भी मैं जाता हूँ, मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि सीड ड्रिल को आप रिप्लेस कीजिए। सीड ड्रिल से आप खाली सीड ड्रिल कर रहे हैं, आप उससे खाली अपना सीड डाल रहे हैं, जबकि सीड कंफर्टाइल ड्रिल अब अपने को यूज करनी है। किसान भाई समझ भी गए और काफी आजकल प्रचलन में है। इसमें क्या होता है कि सीड और फर्टिलाइजर उर्वरक के लिए दोनों के लिए अलग अलग कक्ष बने होते हैं, अलग अलग उसकी पेटी बनी होती है। एक फल से उसमें बीज निकलता है और दूसरे फल जो उसके बगल में होता है उससे उर्वरक निकलता है।
2: अच्छा।
0: दोनों को हाथ की हाथ बीज के पास ही उसको उर्वरक मिलने से उसका बीज का जो फुटान है वो तुरंत होता है। तो ये किसान भाई जो है इसको रिप्लेस करें, रिसीट में फर्टिलाइजर को ज्यादा से ज्यादा काम में लें। इसकी जो है कीमत लगभग 25,000 से लेकर 40,000 रुपए तक की होती है। इसी तरह से जीरो टिल सीड ड्रिल है, इसमें क्या है कि अपने को खेत को तैयार करने की जरूरत नहीं है, पहले आपने जो फसल बो रखी है उसी पे सीधा अपन ड्रिल करके अपना सीड ड्रिल अपना अपना काम कर सकते हैं। इसको जीरो टिल बोलते हैं, इसमें कोई भी टिलेज की आवश्यकता नहीं होती है
2: जी।
0: इस तरह से हम बात करेंगे एक्स्ट्रा रिपर या एक्स्ट्रा कम्बाइन की। अब दाने वाली कंबाइन चलाने के बाद में हम जो भी बड़ा वाला जो कंबाइन चलाते हैं उसके बाद में पौधों के डंठल जो है खेत में छूट जाते हैं, उनसे भूसा बनाने के लिए स्ट्रा रिपर प्रयोग में की जाती है, जो कि आपके जो बचे हुए जो डंठल हैं उनको बिल्कुल जमीन के पास से काट देते हैं, जिससे खेत में आपके अनावश्यक अवशेष बाकी नहीं रहते हैं। ये ट्रिल टाइप की मशीन होती है, इसमें ट्रैक्टर की पीटियों से इसको चलाया जाता है
2: जी।
0: और ये इससे जो है आपके डंठल है एक्स्ट्रा कंबाइन के जो कटे हुए इकट्ठे होते हैं वो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बदल करके और इसमें तारों की जाली से भूसा आगे चलकर ट्रैक्टर के पीछे जो टोली होती है इसमें तारों की जाली होती है उसमें इकट्ठा कर लेते हैं। और इसके बाद में हम बात करते हैं एक्स्ट्रा बेलर की। अब दाने वाली कंबाइन चलाने के बाद जो पौधों के डंठल खेत में भी छूट जाते हैं, उनसे बेल बनाने के लिए, उसके बेल मतलब कि जैसे आपका भूसा अलग अलग पड़ा हुआ है उसको उठाने में ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी समस्या आती है, तो उसके बजाय ये एक्स्ट्रा बेलर को जब हम काम में लेते हैं तो उसकी एक प्रेस करके एक बेल ऐसी बना देते हैं कि आपके जो है ना आराम से उठा सकते हैं उसको, कोई भी आदमी उठा सकता है। ये बेल आती है आपकी कई तरह की आती है, रेक्टेंगुलर भी आती है मतलब आयताकार आती है, गोल भी आती है। रेक्टेंगुलर ज्यादा चलती है, इसमें एक्स्ट्रा का पिकअप असेंबली और एक्स्ट्रा को कंप्रेस करके बांधने की इकाई होती है। एक्स्ट्रा बेलर का इसका लगभग अनुमानित मूल्य जो अपना 6 से 8 लाख रुपए का होता है।
2: तो एक तरफ तो रोजगार की बात कर रहा है और दूसरी तरफ आदमी और जो मजदूर काम करे भी जगह हो मशीनरी काम में ले, हालांकि काम आसान बहुत ज्यादा हो जाए।
0: बिल्कुल।
2: हाँ। तो किसान ने कहीं कहनी चाहो क्योंकि कृषि को विकास जब आप कर सका, क्योंकि बिना कृषि यंत्र को जो योगदान

0: के या को विकास भी संभव बनी। कितना उपयोग किसानों ने लेना चाहिए यंत्र को और कितो में कृषि का विकास में यू योगदान दे रहा है।
1: देखिए आज की तारीख में तो कृषि जो है, कृषि की जो संक्रियाएं हैं, समय पर जो हमें अपना खेती का कार्यक्रम करना होता है उसके लिए यंत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। बिना यंत्रों के आज खेती को हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसे हम इसको कर पाएंगे। और खेती का जो भी काम है उसको करने के लिए हमारे यंत्र हैं वो सबसे पहली बात तो है कि उसकी लागत को कम करते हैं, मजदूरों पे जो हमारी निर्भरता होती है उसको कम करते हैं, हम ज्यादा उससे किसान भाई हमारे इतना लाभ कमा सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। और उसका जो फसल संवर्धन का और इसका कटिंग के बाद में जैसे सफाई का ग्रेडिंग का जो सिस्टम है उससे उसकी फसल का मूल्य संवर्धन, हमारे किसान भाई अपनी उसका जितनी भी अच्छी फसल का उस सफाई और ग्रेडिंग करेंगे उससे उनका मूल्य भी ज्यादा मिलेगा। इस तरह से किसान भाइयों के लिए और हमारे राज्य और हमारे देश के लिए कृषि विकास में हर तरह से कृषि यंत्रों का योगदान उसे कभी भूल नहीं सकते। बल्कि मैं तो ये चाहूंगा कि सभी किसान भाई इस चीज को ज्यादा से ज्यादा अपनाएं। तो मैं तो ये आप लोगों से अपील भी करूंगा कि आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा अपने यंत्रीकरण पे ध्यान देंगे उतना आपकी खेती का जो काम है आसान हो जाएगा।
0: बिल्कुल, कृषि विकास में कृषि यंत्र को योगदान इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत विस्तार से आप जानकारी दी। राजेंद्र कुमार शर्मा जी, उपनिदेशक कृषि अभियांत्रिकी कृषि आयुक्त जयपुर से पधारिया, इतनी बढ़िया जानकारी दी, आपको गुणों गुणों धन्यवाद।
2: बहुत चौकी जानकारी। और कृषि का विकास में न सिर्फ यंत्र बल्कि जो भी नित नया शोध हो रहा है, अनुसंधान हो रहा है और काश्तकार बने अपना रहा है, मोटी बात यह है जद कृषि को विकास हो रही है। वाकई बहुत बढ़िया जानकारी रही और दौलत भाई ने भी धन्यवाद है कि बहुत बढ़िया जानकारी भी दिलवाया। पर अब धन्यवाद कोरो को नहीं देवा तो मुजब चौपाल की रीत सुनाए एक प्यारो सो लोकगीत।

भाई बहुत फूट रो साथ रो गीत मिश्री को बाग। और मिश्री को बाग तो देखो कोई लगावे न लगावे, पर आजकल का जो अपना युवा काश्तकार है, और काश्तकार भी नहीं आपा बाने के वाला एंटरप्रेन्योर, जो लगावे है मशरूम की खेती का प्लांट, बाग तो नहीं कह वाला प्लांट, एक छोटा सा कमरा में लाग जावे है और बहुत बढ़िया मुनाफो देवे है, थोड़ी सी ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण और थोड़ो सो बाजार को जो माहौल है बिना आकलन करर, जद मशरूम की खेती करे है तो एक नवाचारी कदम उठावे है और छोटा सा कमरा में सो लाखों रूपा कमावे है। तो जो नवाचार है, और देखो मशरूम की खेती की एक खास बात काई है कि जब तो भी खेती को अपशिष्ट है, बचोड़ी चीजा है, बासू चाहे वो गेहूं की कड़बी वे, बाजरा की वे, आंसू ही चावल को भूसो वे, आंसू ही जो है मशरूम की जो बेडिंग है वह तैयार हो जावे है, और बी के पाछे जो है बहुत चोखो मुनाफो ईसु मिले है, और जो मशरूम है वो बहुत पौष्टिक हो गए, तो एक आयुर्वेदिक महत्व भी है, इसलिए भी बाजार में इसकी जो मांग है वह बनी रहे है। तो आप बहुत बड़ा स्तर पर भी नहीं बेचो ना, तो आपका आसपास का जो होटल है, छोटा ढाबा है, बट्ठे भी अगर आपकी जानकारी है थाने सामान बेचबो।

0: आवे है, मार्केटिंग करबो आवे है, तो आप आपका आसपास का क्षेत्र में भी आपने बाजार मिल जावे है।
1: और युवाओं के लिए एक नयो नवाचारी अवसर हो सके है जिसे वह छोटो छोटो कर अच्छो मुनाफो कमा सके है सर।
0: बिल्कुल, और देखो मुनाफा की जठे तक बात है और नया रास्ता की नया गैला की बात है, तो गैला तो खुद ही खोजना पड़े है। और जब आप कोई गैलो जो अगर मशरूम की खेती की आप बात करें आशो गैलो खोजो हो, तो कृषि विज्ञान केंद्र अशी एक जगह है जठे सु आपने मार्गदर्शन ही नहीं मिले है, प्रशिक्षण भी मिले है, बस सिखावे भी है खुद की तरफ सु भी। और आप जब सीख जाओ हो चोखो करवा लाग जाओ तो अशा जो नया नवाचारी काश्तकार हो बाने बे प्रोत्साहित करवा ताई समय सारू पुरस्कृत करे है, बाकी जो बाता चीता हुआ है और दूसरा काश्तकारा तक पुगावे है, बाकी जो प्रशिक्षण है बाकी प्रदर्शनियां लगाई जावे है ताकि और भी आपने प्रोत्साहन मिले और दूसरा भी आपसे प्रेरित हो सके।
1: अब आपने कार्यक्रम में स्टूडियो री घड़ी चंचल बहन आपने भी कई इशारों कर रही है,
0: प्रेरित कर रही है चालवा के ताई कि अब बाता चीता बहुत होगी तो अब चाला फिर मिलशा कोई कार्यक्रम में करशा बाता और गीत संगीत की महफिल जमाशा। अब आर तो दियो आज्ञा मैं कराला आपसू
1: राम राम सा।

सभी किसान भाई संगठन अपना कार्यक्रम खेती बाड़ी इसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमी चैनल से किया गया। और लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

जैकी रजनीक और बाबुल सुप्रियो की आवाजों में अभी आपने सुना हम तुम फिल्म का गीत, गीत प्रसून जोशी का था और संगीत जतिन ललित का।

तमाशा फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहित चौहान की आवाज में। इरशाद कामिल के बोलों को संगीत से संवारा था ए आर रहमान ने।

ये दिल लगी इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, अभिजीत और साथियों का गाया हुआ। समीर के बोलों को संगीत से सवारा था दिलीप सिंह समित सिंह ने।

कुछ कुछ होता है इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में समीर के बोलों को संगीत से संवारा था जतिन ललित ने।

वाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाजों में। गीत आनंद बख्शी का था और संगीत जतिन ललित का।

जो पागल है इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की आवाजों में गीत आनंद बख्शी का था और संगीत उत्तम सिंह का। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मुकाबला जारी। जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबला हरारे में खेला जा रहा है। ब्रेंडल टेनर ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। कॉमनवेल्थ क्यू स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के लिए भारत की 18 सदस्यीय टीम की घोषणा। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मिजोरम स्पोर्ट्स इकोसिस्टम की समीक्षा की। और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप पहली बार अफ्रीका में आयोजित होगी। केनिया को 2029 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी मिली।

0: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से, जहां भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला बृहस्पतिवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ही खेला जाएगा। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विशेष। क्या मौजूदा स्थिति है इस मुकाबले की विशेष?
1: प्रशांत, अगर मुकाबले की बात करें तो भारत का दबदबा एक बार फिर से देखने को मिला है। भारतीय टीम ने पहले गेंदबाजी का फैसला करके अफगानिस्तान को बिल्कुल बैक फुट पर रखा है। अफगानिस्तान ने 13.5 गेंदों में 97 रन पर 5 विकेट गंवा दिए हैं और अभी दारविश रसूली और मोहम्मद नबी क्रीज पर मौजूद हैं।
0: 97 रन पर 5 विकेट अफगानिस्तान के हो गए। और किन बल्लेबाजों ने कैसा किया है प्रदर्शन अफगानिस्तान का आज के मुकाबले में विशेष?
1: अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान ने अच्छी शुरुआत दिलाने की कोशिश करी, लेकिन अपने स्टार्ट को वो बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। उन्होंने 33 गेंदों पर 37 रन बनाए, जिसमें 6 चौके शामिल थे। इसके अलावा रहमान गुरबाज 0 पर आउट हो गए और सिदिकला अटल 12 ही रन बना सके। उसके बाद गुलबदीन नाइब भी 8 गेंदों पर 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अजमतुल्ला उमरजई, जिन्होंने पिछले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया था, वो भी इस मुकाबले में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर सके।
0: और अगर भारतीय गेंदबाजों की बात की जाए तो पिछले मुकाबलों में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। आज कैसा रहा है भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन?

0: अब तक।
1: प्रशांत जसप्रीत बुमराह की जो कसी हुई गेंदबाजी है उसका रिवॉर्ड मिला है अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई, नीतीश कुमार रेड्डी, इन सभी को। बुमराह ने दो ओवर में एक मेडन डाला है और नौ रन दिए हैं। केवल 4.5 की इकोनॉमी से उन्होंने गेंदबाजी की है। वहीं अर्शदीप की बात करें तो उन्होंने दो ओवर में 14 रन देकर एक विकेट हासिल किया है और अक्षर पटेल अपना स्पेल समाप्त कर चुके हैं। 4 ओवर में 28 रन देकर एक विकेट लिया उन्होंने। रवि बिश्नोई ने भी आज अपनी गेंदबाजी से काफी प्रभावित किया है, जिन्होंने 3 ओवर में 21 रन देकर एक विकेट लिया है। वहीं नीतीश कुमार रेड्डी भारतीय टीम की काफी सारी उम्मीदों को आगे लेकर जाते हुए 2 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट लिए।
0: कई खिलाड़ियों की वापसी हुई और श्रोताओं को बता दें कि अफगानिस्तान ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 100 रन बना लिए और विशेष अगर भारतीय टीम की बात की जाए, इस श्रृंखला से वरुण चक्रवर्ती चोट के कारण बाहर हो गए। कितना चिंताजनक है ये खबर भारतीय टीम के दृष्टिकोण से?
1: जाहिर तौर पर प्रशांत यह खबर भारतीय प्रशंसकों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि चोट के बाद जब वरुण ने श्रृंखला के पहले मुकाबले में वापसी की थी तो दमदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने 4 ओवर में महज 4 की इकोनॉमी रेट से 16 रन देकर एक विकेट लिया था। और प्रशांत मैं यह भी बताना चाहूंगा कि एशियन गेम्स में भी वरुण के खेलने पर अभी संशय बना हुआ है।
0: अब चलते हैं सीधे जिम्बाब्वे के हरारे में, जहां जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबला जारी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट पर 294 रन बनाए। मैट रनशो ने सर्वाधिक 109 रन की शतकीय पारी खेली। कूपर कॉनली ने 51 रन का अहम योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था। 3 मैचों के श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 18 सितंबर और तीसरा और आखिरी मैच 20 सितंबर को खेला जाएगा। विशेष पहले मुकाबले की अगर बात की जाए तो बहुत ही रोमांचक मोड़ पर है, और क्या हाल है इस वक्त मुकाबले का?
1: प्रशांत, अभी जिम्बाब्वे जो है उनको जीत के लिए 51 गेंदों पर 80 रन की जरूरत है। जब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर आई थी उनकी टीम, तो ऑस्ट्रेलिया की पारी लड़खड़ाती हुई नजर आई थी। 107 रन पर 4 विकेट उन्होंने गवा दिए थे, लेकिन मैट रेनशॉ ने अपनी शानदार शतकीय पारी से ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाला और साथ ही साथ उनको 294 रन के बड़े स्कोर तक ले जाने में अहम योगदान दिया। उनका साथ निभाया ओलिवर पीक ने और एलेक्स कैरी ने, जिन्होंने अहम साझेदारियां करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। अगर बात करें अभी हम जिम्बाब्वे की, तो वहां उनके जो मुख्य खिलाड़ी रहे उन्होंने ज्यादा कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। कप्तान सिकंदर रजा ने 76 गेंदों पर 57 रन बनाए। वो चाहते तो एक बड़ी पारी खेलने की और कोशिश कर सकते थे और जिम्बाब्वे को एक अच्छी स्थिति में ले जा सकते थे, लेकिन अभी ब्रेट इवांस और वेलिंगटन मसगाडजा क्रीज पर मौजूद है और एक तरह से औपचारिकता ही बची है इस मुकाबले में।
0: जी,
1: ऑस्ट्रेलिया जो है पूरी तरह से हावी है।
0: विशेष आज के मुकाबले में कई रिकॉर्ड बने हैं, सचिन का भी रिकॉर्ड टूटा है।
1: जी बिल्कुल प्रशांत, आज ब्रेंडन टेलर ने सचिन तेंदुलकर के सबसे लंबे वनडे करियर का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है।
0: जी,
1: टेलर ने 2004 में डेब्यू किया था और उनका वनडे करियर अब तक 22 साल 146 दिन का हो गया है।
0: जी,
1: सचिन का जो करियर रहा वो 22 साल और 91 दिन का था। टेलर जिम्बाब्वे के सबसे सफल बल्लेबाजों में से भी एक है। अपने वनडे करियर में टेलर 205 पारियों में 6704 रन बना चुके हैं। वहीं जिम्बाब्वे की ओर से दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उनसे आगे सिर्फ एंडी फ्लावर हैं, जिन्होंने सर्वाधिक 6786 रन बनाए हैं।
0: और विशेष मुकाबले में और कौन सा रिकॉर्ड ध्वस्त हुआ आज?
1: एक यूनिक रिकॉर्ड बना है प्रशांत। आज मैट रेनशॉ ने आज जो है अपने करियर का पहला वनडे शतक तो लगाया ही, साथ ही साथ जिम्बाब्वे की धरती पर ओडीआई का सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बन गए हैं और इसके साथ ही वह जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया सीरीज में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं।
0: अब देखना दिलचस्प होगा कि मुकाबला किस ओर रुख लेता है। अहमदाबाद पहली बार कॉमनवेल्थ क्यू स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए तैयार है। आयोजन भारत में होने जा रहा है, जिसके दूसरे संस्करण के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। ये चैंपियनशिप 7 से 10 अक्टूबर तक वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगी। एक रिपोर्ट।
2: इस प्रतियोगिता में इंग्लिश बिलियर्ड्स, स्नूकर, 10 बॉल पूल, हे बॉल और ब्लैक बॉल जैसे लगभग 46 कॉमनवेल्थ देशों के क्यू खिलाड़ी एक साथ आएंगे। वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड्स स्पोर्ट्स और कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के समर्थन से आयोजित यह टूर्नामेंट बीएसएफआई के 100 साल पूरे होने के समारोह का भी प्रमुख आकर्षण होगा। 2025 में मॉरिशस में पहले संस्करण में 5 मेडल जीतने के बाद भारत कॉन्फिडेंस के साथ चैंपियनशिप में उतरेगा, जिसमें विमेंस हेबॉल में विद्या पिल्लई का गोल्ड और मेंस हेबॉल में शिवम अरोड़ा और विमेंस 10 बॉल पूल में चित्रा मगीमाई राज के सिल्वर मेडल शामिल है। तीनों मेडलिस्ट को इस साल के चैंपियनशिप में डायरेक्ट एंट्री मिली है। भारत की सबसे बड़ी मेडल उम्मीदों में से एक विद्या

0: मलई हैं, जो मौजूदा कॉमनवेल्थ वेमेंस हेबॉल चैंपियन हैं, जिन्होंने पिछले साल मॉरिशस में साउथ अफ्रीका की मरीना जैकब्स पर एक शानदार शूटआउट में जीत हासिल करके गोल्ड मेडल जीता था। भारतीय टीम में जाने माने इंटरनेशनल परफॉर्मर और उभरते हुए टैलेंट का भी अच्छा मिश्रण है। महिलाओं के दल में मौजूदा IBSF महिला वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन अनुपमा रामचंद्रन रेवन्ना उमादेवी के साथ भारत के इंग्लिश बिलियर्डर्स चुनौती का नेतृत्व करेंगी, जबकि 2026 एशियाई महिला स्नूकर चैंपियन कीर्तना पांड्यान श्रुति लक्ष्मी नारायणन और इशिका शाह के साथ स्नूकर में देश के अभियान का नेतृत्व करेंगी। पुरुषों की टीम में सिद्धार्थ पारेख लक्ष्मण रावत और संदीप गुलाटी जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। इसके साथ ही युवा टैलेंट रियान रजमी और पारस गुप्ता भी हैं। चैंपियनशिप में पुरुषों और महिलाओं के 10 मेडल सेट होंगे, जिनमें बिलियर्ड्स इस साल कॉमनवेल्थ क्यू स्पोर्ट्स चैंपियनशिप प्रोग्राम में पहली बार शामिल होगा। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने आईजोल के अपने दौरे के दौरान मिजोरम में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का रिव्यू किया। इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, एथलीटों को सपोर्ट करने और नॉर्थ ईस्ट के स्पोर्ट्स टैलेंट के लिए ज्यादा मौके बनाने पर बल दिया।

0: पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस लक्ष्य के अनुरूप है जिसमें देश में मजबूत खेल संस्कृति विकसित करने और युवाओं को आगे बढ़ाने के ज्यादा मौके देने की बात कही गई थी। रक्षा खडसे ने आइजोल में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंटर का भी दौरा किया और एथलीटों, कोच और स्पोर्ट्स स्टाफ से बातचीत की। एथलीटों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने उनकी ट्रेनिंग, प्रतिस्पर्धी अनुभवों और उम्मीदों के बारे में सुना और खेल में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उनके समर्पण की सराहना की। और अब बात करते हैं एथलेटिक्स पर। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप पहली बार अफ्रीका में आयोजित होगी। केन्या के नैरोबी को 2029 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है। वहीं जर्मनी के म्यूनिक शहर को 2031 संस्करण की मेजबानी सौंपी गई है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आयोजन का फैसला बुडापेस्ट में हुई 242वीं वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल की बैठक में लिया गया। केन्या की राजधानी नैरोबी ने रोम, म्यूनिक और लंदन जैसी मजबूत दावेदारियों को पीछे छोड़ते हुए मेजबानी हासिल की। अफ्रीकी देश पहले भी कई मल्टीनेशनल इवेंट्स होस्ट करते रहे हैं। युगांडा के कंपाला ने 2017 में वर्ल्ड क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप होस्ट की थी। इससे पहले नैरोबी ने उसी साल वर्ल्ड अंडर 18 चैंपियनशिप की मेजबानी भी की थी। बोत्सवाना के गेबोरोन ने इस साल की शुरुआत में वर्ल्ड एथलेटिक्स रिलीज की मेजबानी की थी, जो अफ्रीका में होने वाला उस इवेंट का पहला एडिशन था। हालांकि ये पहली बार होगा जब ओलंपिक के बाद एथलेटिक्स का सबसे बड़ा इवेंट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप किसी अफ्रीकी देश में होगा। केन्या वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में दूसरा सबसे सफल देश है। जर्मनी 2031 में तीसरी बार वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का अगला संस्करण 10 से 19 सितंबर 2027 तक पेइचिंग में आयोजित होगा। स्पेशली स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात कार्यक्रम में एशियन गेम्स की। एशियन गेम्स की शुरुआत 1951 में भारत की मेजबानी में हुई थी। इस वर्ष एशियन गेम्स के 20वें संस्करण का आयोजन जापान के आईची नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक किया जाएगा। भारतीय टीम जापान में दमदार प्रदर्शन के लिए तैयार है। आइए जानते हैं एशियन गेम्स में कैसा रहा है भारत का सफर, किस खेल और खिलाड़ी के नाम सर्वाधिक पदक रहे हैं।
2: 1951 में आयोजित एशियन गेम्स में 11 देशों ने हिस्सा लिया था। अब वो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA के सभी 45 सदस्य देश नियमित तौर पर एशियन गेम्स में हिस्सा लेते हैं। कुछ विशेष आमंत्रित टीमें भी होती हैं। भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो एशियन गेम्स के हर संस्करण का हिस्सा रहा है। भारतीय एथलीटों ने एशियन गेम्स में अपने दमदार प्रदर्शन से देश का नाम रोशन किया है और पूरी दुनिया में अपनी क्षमता का लोहा मनवाया है। भारत ने 1951 में आयोजित पहले एशियन गेम्स में 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य सहित कुल 51 पदक जीते थे। वहीं हांगझोउ में आयोजित एशियन गेम्स 2022 में भारतीय टीम ने 28 स्वर्ण, 38 रजत और 40 कांस्य सहित कुल 106 पदक जीते और चौथी सफल टीम रही थी। हांगझोउ एशियन गेम्स भारत के लिए अब तक के सबसे सफल खेल रहे हैं। एशियन गेम्स के इतिहास में भारत

देशों की सूची में पांचवें स्थान पर है। भारत ने पिछले 19 संस्करणों में 183 स्वर्ण, 238 रजत और 357 कांस्य सहित कुल 778 पदक जीते हैं। भारत को एशियन गेम्स में सबसे ज्यादा पदक एथलेटिक्स में मिले हैं। एथलेटिक्स में 85 स्वर्ण, 102 रजत और 96 कांस्य सहित भारत ने कुल 283 पदक अपने नाम किए। इसके अलावा भारत को निशानेबाजी में 80, कुश्ती में 65,

0: और 791 कांस्य सहित 3570 पदक जीते हैं। जापान ने 1084 स्वर्ण, 1104 रजत और 1054 कांस्य पदक सहित कुल 3242 पदकों पर अपना कब्जा जमाया है। भारतीय दल हांगझोऊ एशियन गेम्स के सर्वाधिक 106 पदकों के रिकॉर्ड को भी और बेहतर करने की कोशिश करेगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: और चलते चलते श्रोताओं, आपको बता दें कि अफगानिस्तान ने 17वें ओवर में 6 विकेट पर 118 रन बना लिए। मोहम्मद नबी 14 और राशिद खान 4 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। और इस वक्त जसप्रीत बुमराह अपना तीसरा ओवर लेकर भारत के लिए लेके आए। और श्रोताओं, समय और आपसे विदा लेने गए। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत ने कहा, चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने कहा, खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया, लोगों से व्यापारियों को 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह जानकारी दी।
3: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
2: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग द्विपक्षीय साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने कहा कि दोनों देश परमाणु क्षेत्र में भी लंबे समय से सहयोग कर रहे हैं। सम्मेलन से अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सऊदी अरब के विदेश मंत्री की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों पक्षों ने हौसी विद्रोहियों के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। भारत ने सऊदी अरब पर हाल के हौसी हमले की निंदा की। भारत लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती स्थिति से बेहद चिंतित है। श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
3: 50 के लगभग आउटकम्स हैं अलग अलग क्षेत्रों में और ये सब विकास आधारित आउटकम्स हैं और इन सभी पे लोगों के लिए अवसर पैदा होंगे। जैसे अर्बन मोबिलिटी की बात कही है, वहाँ भी हमारे देश में कई एक और ब्रिक्स देश में ई मोबिलिटी पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी काम हो रहा है। तो ब्रिक्स देश आपस में अपने उनके जो उनका एक्सपीरियंस है उसको साझा कर सकते हैं और फिर ये एक प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव पर लोगों को अब ध्यान देना है और उसको देखना है किस प्रकार से इसको आगे ले जाया जाए।
2: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
3: लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उन्हें खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
2: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं और उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जाए।

0: सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
1: आज 2026 में डीआरडीओ ने मिसाइल से लेकर रडार तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए डीआरडीओ आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता।
0: देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पानी से जुड़ा ये 10वां विवाद है जो अब सुलझने वाला है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस समझौते का स्वागत किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि एक ऐतिहासिक समझौता है।
2: आज एक बहुत बड़ा समझौता 6 राज्यों के बीच में हुआ है, जिसका फायदा सिंचाई का भी होगा, पीने के पानी का भी होगा, पर्यावरण की दृष्टि से भी होगा। ये समझौता आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार देश के अंदर जल बंटवारे को लेकर के लंबित इन प्रकरणों का समाधान हो रहा है।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के प्रयासों से ये समझौता संभव हो पाया है।
3: किसाऊ परियोजना हस्ताक्षर हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की पहल और सक्रिय प्रयासों से ही कई वर्षों से लंबित इस विषय पर राज्यों के बीच आज सहमति बनाने का रास्ता साफ हुआ है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 रूपये तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2,000 रूपये से ज्यादा के व्यक्ति से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रूपये और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रूपये प्रति लेन देन होगी। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यवसायी या कारोबारी का ये शुल्क UPI से भुगतान करने वाले ग्राहकों पर न लगाएं। देश के माल निर्यात में इस वर्ष अगस्त में 26.12% की वृद्धि दर्ज की गई है और ये 43,81,00,000,000 तक पहुंच गया। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में उछाल से माल निर्यात में ये वृद्धि दर्ज हुई है। सोने के आयात में गिरावट से व्यापार घाटा कम होकर 5 महीने के निचले स्तर 26.86 करोड़ डॉलर पर आ गया। जून 2022 के बाद इस वर्ष अगस्त माह में निर्यात वृद्धि सबसे अधिक 30.12% रही। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैव E3 नीति और जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत पादप और मानव जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में एक साथ प्रगति देख रहा है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी को ऐसी तकनीकों में परिवर्तित किया जाना चाहिए जो कृषि संबंधी वास्तविक चुनौतियों का समाधान कर सके और किसानों को लाभ पहुंचा सके। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि खेलों में प्रगति राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मिजोरम में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्रीमती खड़से ने ये बात कही।
6: वी नीड टू डेवलप स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर।
7: हमें खेलों के बुनियादी ढांचे के साथ साथ युवाओं के विकास पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे युवा ही विकसित भारत का भविष्य है। केंद्र सरकार लगातार राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को तैयार करने का प्रयास

0: अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज राजस्थान के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। 16 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से ये स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। नई दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने कहा कि इन विद्यालयों के विद्यार्थी आईआईटी और नीट प्रवेश परीक्षा में बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं।
1: इस साल जितने भी हमारे 500 से ऊपर स्कूल हमारे ऑपरेशनल हैं, उनमें से 450 से अधिक बच्चे आईआईटी जेईई एडवांस क्वालिफाई किए हैं और 350 से अधिक बच्चे नीट करे हैं। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो बच्चे एडवांस क्लियर करे हैं और नीट क्लियर करे हैं, वो जरूर किसी न किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब ने आज मक्का, जेद्दा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यमन में नए सिरे से शुरू हुई इस लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका की सराहना की है। श्री ग्रीन ने क्वाड संगठन की बढ़ती सक्रियता पर बल दिया। श्री ग्रीन ने भारत के राजनयिक नेतृत्व, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की भूमिका की प्रशंसा की। भारत ने एचआईवी एड्स के उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सहायता के लिए आज बोत्सवाना को 10 टन एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इससे भारत के ग्लोबल साउथ साझेदारों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना गलत ट्रेड प्रैक्टिस, गलत अनुबंध और डार्क पैटर्न के लिए लगाया गया है। इसमें राइड कंफर्म होने से पहले राइडर्स से ज्यादा पैसे लेने के लिए कहा जाता था। केरलम के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने कहा है कि राज्य में बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार उच्च दरों पर बिजली खरीदने पर विचार कर रही है। उन्होंने बिजली कटौती की समस्या के तुरंत समाधान का भरोसा दिलाया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 74,004 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 23,119 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 41 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए पर बंद हुआ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुआखाई के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये पर्व किसान, फसल और भाईचारे का उत्सव है और ये सद्भाव की भावना को मजबूत करता है। ओडिशा के प्रमुख पर्व नुआखाई का अर्थ है नया खाना। इसे धान की नई फसल आने पर मनाया जाता है। दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 148 रन बना लिए हैं। पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही खेला जाएगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल के हिमालय क्षेत्र, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गरज चमक और तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम समेत पूर्वोत्तर भारत में भी कल तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है।

और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने कहा खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया लोगों से व्यापारियों को 2,000 रूपये से अधिक के यूपीआई लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले के अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी है। इसके साथ ही समाचार

सुरीली धड़कन प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। सभी सुनने वालों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं फिल्म प्रोफेसर प्यारे लाल के इस गाने के साथ। इसे गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। गीत राजेंद्र कृष्ण का है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: वो लिखती है रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती है जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती है सफर के स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती है मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए। तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी। अम्बिका
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं चिच्चोर फिल्म का गाना। येसुदास और हेमलता की आवाजों में गीत संगीत रवीन जैन का है।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आइए अब सुनते हैं मंजिल मंजिल फिल्म का गाना। आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में, गीत मजरू सुल्तानपुरी का है, संगीत आर डी बर्मन का।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए अनुराधा पौडवाल, सुरेश वाडकर और साथियों की आवाजों में लाल दुपट्टा मलमल का फिल्म का गाना। इसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत आनंद मिलिन का है।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: इसने कहा यशोधन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोधन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोधन आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

सुनने वालों को नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गीतकार की जो विज्ञापनों की दुनिया से फिल्मों की दुनिया में आया और जिसके गाने सुनना आपको

जी हाँ, आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं एक ऐसे गीतकार की जिसके शब्दों में लालित्य है, कविता है और है जज्बात का समंदर।

प्रसून जोशी का जन्म 16 सितंबर 1971 को हुआ था। बचपन से ही उन्हें लिखने पढ़ने का शौक रहा और आगे चलकर उन्होंने दिल्ली के एक संस्थान से एमबीए किया। आगे चलकर वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करने लगे। लिखने का शौक तब भी जारी रहा और उनकी कॉपीराइटिंग में लिखने का वो शौक झलकता रहा। तब तक प्रसून जोशी की किताब भी छप चुकी थी। इस किताब का नाम था मैं और वो। जब ये किताब छपकर आई तब प्रसून की उम्र केवल 17 साल थी। कई बरस तक प्रसून एडवर्टाइजिंग की दुनिया में सक्रिय रहे। उसके बाद उन्होंने गायिका शुभा मुद्गल के लिए कुछ एल्बम के गीत भी लिखे। फिल्मों में उनका पहला कदम था फिल्म लज्जा के जरिए। राजकुमार संतोषी की इस फिल्म के कुछ गाने प्रसून जोशी ने लिखे थे। इसके बाद उन्हें यश चोपड़ा प्रोडक्शंस की फिल्म हम तुम में गाने लिखने का मौका मिला। हम तुम के गाने बहुत चले।

जरिए उसे एक खास रंग दे देते हैं। उनके गीत दिल को छू जाते हैं। फिल्म फना का ये देशभक्ति गीत सुनिए, ये उस दौर का गाना है जबकि देशभक्ति के बहुत नगमे नहीं आ रहे थे। नई फिल्मों में ऐसे गानों की जगह ही कहां बनती है, पर प्रसून जोशी ने अपनी कलम के जादू से इस गाने को अनमोल बना दिया।

इसके बाद तो जैसे मुंबई फिल्म जगत में प्रसून जोशी के कदम जम गए। उन्होंने फिल्म फना के लिए भी गाने लिखे और इस फिल्म के सारे गाने बेहद लोकप्रिय हुए। प्रसून जोशी की सबसे बड़ी खासियत है वो जिंदगी के बहुत मामूली से जज्बात को पकड़ते हैं और अपने शब्दों के

प्रसून जोशी ने इसके बाद फिल्म रंग दे बसंती की पटकथा भी लिखी और इस फिल्म के गीत भी रचे। रंग दे बसंती अपनी तरह की एक अनमोल फिल्म थी, सबसे अलग, और इस फिल्म का असर भी बड़ा गहरा था। जरा इस फिल्म का ये गाना सुनिए जो आपके दिल की गहराई तक उतर जाएगा।

0: आमिर खान की फिल्म तारे जमीन पर जब बनी तो इसके गाने लिखने की जिम्मेदारी मिली प्रसून जोशी को, और इस फिल्म के लिए प्रसून जोशी ने कुछ अलग ही गीतकारी की।
1: खोलो खोलो दरवाजे पर।

इस फिल्म के इस गाने के लिए प्रसून जोशी को मिला सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार। आपको बता दें कि प्रसून जोशी कुल 2 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर चुके हैं। तारे जमीन पर के अलावा फिल्म चिटगांव के एक गाने के लिए भी उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था।

जुलाई 2013 में आई फिल्म भाग मिल्खा भाग, इस फिल्म की कथा, पटकथा, संवाद और गीत प्रसून जोशी ने लिखे थे। इस फिल्म का ये गाना सुनिए जो फिल्म का शीर्षक गीत तो है ही, साथ ही इस गाने में प्रसून जोशी ने फिल्म के पूरे मर्म को समेट दिया है।

0: सांस सांस तो भट्टी अब तू जाग मिलखा बस तू भाग मिलखा।
1: इस फिल्म में ये मौज मस्ती भरा गाना भी प्रसून जोशी ने लिखा जो शायद फौजी बैरकों में मौज मस्ती का सबब बन चुका है।

आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रसून जोशी के कुछ अनमोल नगमे। साल 2009 में आई फिल्म लंदन ड्रीम्स का ये गाना जो एक प्रयोग था, और ये प्रयोग बड़ा कामयाब रहा।

जैसा कि हमने आपको बताया, प्रसून जोशी ने गायिका शुभा मुद्गल के कुछ एल्बम्स के लिए नगमे भी लिखे। आपके सावन एल्बम का ये शीर्षक गीत सुनिए।

0: लगता है।
1: प्रसून जोशी का रचना कर्म अभी भी जारी है और उनके चाहने वाले उनसे नित नए नगमों की उम्मीद करते रहते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गीतकार प्रसून जोशी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात के 10 बजे हैं, आइए अब आपको लेकर चलते हैं गाते गुनगुनाते सदाबहार नगमों के सफर पर। गीतों के सफर का आगाज किया है फिल्म चांदनी के इस गीत के साथ, जिसमें आवाज है लता मंगेशकर और बाबला की। गीत में बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत शिव हरी का।

आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म याराना से। गीत में आवाज है किशोर कुमार की, बोल अनजान की और संगीत राजेश रोशन का।

ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म याराना से किशोर कुमार की आवाज में। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं, हसन कमाल का लिखा हुआ

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म नरगिस से, आवाज लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की। गीत में बोल है मजरू सुल्तानपुरी की और धुन है बासु चक्रवर्ती की।

ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म नरगिस से लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाज में। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म ईरा पन्ना से। आवाज गीत में बोल हैं आनंद बख्शी की और धुन है आर डी बर्मन की।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

मिदा फाजली का लिखा हुआ ये गीत आप सुन रहे हैं उषा खन्ना के संगीत में, आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, फिल्म स्वीकार किया मैंने।

आइए अब आज के कार्यक्रम फिल्म संगीत का अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म वो कौन थी से, आवाज लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की। गीत में बोल हैं राजा मेहदी अली खान की और संगीत मदन मोहन का।

0: इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी वासवाड़ा का माही चैनल है, FM बैंड 101.3 MHz पर। रात्रि के 11 बजने को हैं, आइए अब आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज ये जानकारी दी।
2: चर्चाओं

0: कई मुद्दे सामने आए दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे। प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गैला हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और सैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। होती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेदा और तरफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपए तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपए और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइलों से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता।
1: भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है, जो 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज 17वीं सदी के कवि संत मुकुल दास महाराज की स्मृति में भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट का विमोचन किया। श्री सिंधिया ने संत मलूकदास को आध्यात्मिक शक्ति का वाहक बताया और देश में मुश्किल दौर में भी सनातन धर्म की मूल भावना को बनाए रखने में उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि गहरा सांस्कृतिक आत्मविश्वास भी है, जो दूसरे देशों से उसे अलग बनाता है। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारत ने 14 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट खोकर 163 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM बैंड 101.3 MHz पर। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। अगली सभा हमारी कल प्रातः 5:53 पर आरंभ होगी। तब तक आज्ञा दीजिए रेडियो होशवाना परवीन को। शुभ रात्रि, शब खैर, जय हिंद।